आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में योगेश की ये देशभक्तिपूर्ण रचना अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए चंद्रो आत्मा के स्वर में रुक्मणी सुंदर की रचना।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनाम। आइए अब सुने लता मंगेशकर के स्वर में संत मीराबाई की रचना।

अभी आपने सुनी संत कबीर की शब्द रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के अंत में लीजिए सुनिए हरिओम शरण और नंदिनी शरण के स्वर में ये भजन।

0: इसी के साथ आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री विक्रम सिंह का है।
1: इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति श्रम की है। हमें ये कदाचित नहीं भूलना चाहिए कि अजंता एलोरा, चीन की दीवार, ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी अति सुंदर कलाकृतियों ने श्रमशील हाथों से ही आकार पाया है। लेकिन आश्चर्य की कहीं किसी कृति पर किसी भी कलाकार ने अपना नाम नहीं उकेरा, क्योंकि इसे तराशने वाले जानते थे कि असल में उनकी कला का योग्यता का ही मूल्यांकन होना है। वे तो समय के साथ कालकवलित हो जाएंगे, लेकिन उनका श्रम, उनकी कला हमेशा जिंदा रहेगी। वास्तव में निष्काम भाव से कर्मरत व्यक्ति अर्जुन की तरह सफल हो जाता है। काम की लगन और एकाग्रता का भाव रखते हुए लक्ष्य के प्रति सजग रहकर जो अनुकूल परिश्रम करता है वो कभी निराश नहीं होता, उसे सफलता जरूर मिलती है। निष्ठापूर्वक किया गया श्रम ही पुरुषार्थ है।

0: जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। दुनिया में जितने भी इतिहास पुरुष हुए हैं, उन्होंने कठोर परिश्रम कर जीवन को सार्थक बनाया है। उन्होंने जीवन को साधा है, साधना की है, संघर्ष किया है। श्रम साधना, श्रम शक्ति और लगन से सफलता की सीढ़ियां पार कर मंजिल तक पहुंचने का सौभाग्य उन्हें ही प्राप्त होता है जो इसके मर्म को समझते हैं। श्रम दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। ये अति आवश्यक है कि शारीरिक और मानसिक श्रम का संतुलन बनाए रखा जाए। दोनों के संतुलन में ही श्रम की पूर्णता निहित है। अकेला मानसिक श्रम अपूर्ण है तो शारीरिक श्रम भी मानसिक श्रम के अभाव में अपूर्ण रह जाता है। विचार करने और कार्य करने की सम्मिलित शक्ति से ही श्रम का पूर्ण स्वरूप बनता है और उसी से किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण सफलता भी अर्जित की जा सकती है। जीवन में सफलता की कुंजी दृढ़ इच्छा शक्ति और श्रम के प्रति आस्था है। जीवन को संवारने के लिए कठोर परिश्रम और लगातार प्रयास अत्यंत आवश्यक है। श्रम शक्ति ही जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास यह शक्ति है वो सदैव विजयी है। श्रम ही प्रगति का मुख्य आधार है। इसलिए जरूरी है कि निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हमेशा बनी रहे। जीवन को सफल और महान बनाने का मार्ग कर्मशीलता, कठिन परिश्रम और दृढ़ता से ही प्रशस्त होता है। इसीलिए कहा भी जाता है, श्रमेव जयते, यानी श्रम सदा विजयी होता है। मेहनत मशक्कत से व्यक्ति मनचाहा फल पा सकता है। सिर्फ श्रम ही तो है जो मिट्टी को सोना बना देता है। अकर्मण्य व्यक्ति कभी भी अभिष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता, वो जीवन भर दरिद्र बना रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मेहनत से ही जीवन को सार्थक और प्रेरक बनाया जा सकता है। गीता में भी कहा गया है कि फल की इच्छा किए बिना किया गया काम ही योग्य कर्म कहलाता है। सच है, श्रम जब सत्कार्यों का योग बन जाता है तो ये जीवन का परम पद प्राप्त कर लेता है। श्रम इसलिए भी वंदनीय है क्योंकि इसमें भाग्य को बदलने की शक्ति है। हाथों की लकीरों को भी श्रम से बदला जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो। श्रम ही है जो मुश्किलों को भी आसानी में बदल देता है। इसलिए कहा जा सकता है कि श्रम स्वयं का उद्धार तो करता ही है, साथ ही ये देश और समाज को भी उन्नति के शिखर पर आसीन कर देता है।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आलेख श्री विक्रम सिंह का था। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान,
2: एपिसोड नंबर 230।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थीं कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। स्वर श्रीकांत पारगांवकर का था और आकाशवाणी की इस संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए तिल की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर परमेश्वर साहू द्वारा दी गई जानकारी।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम खरीफ तिलहनी फसलों जैसे कि तिल, राम तिल एवं सूरजमुखी की उन्नत काश्त तकनीक के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। इसमें जैसे कि भारत सरकार का एक राष्ट्रीय तिलहन मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत भारत सरकार तिलहनी फसलों को बहुत अधिक मात्रा में किसानों को मध्य प्रसार करना चाहती है। उसी के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिल, राम तिल और सूरजमुखी इसको छत्तीसगढ़ में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है और इससे किसान अधिक से अधिक फायदा कमा सकते हैं। इसके लिए जो भूमि होती है वो बिना मेढ़ वाली उचहन भाटा एवं कन्हार भूमि जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, ये इन तीनों फसलों के लिए उपयुक्त होती है। और इसमें भूमि की तैयारी अगर करना चाहें तो 2 से 3 बार कल्टीवेटर और रोटरीवेटर चलाकर अच्छे से जुताई कर दें और उसमें भुरभुरा मिट्टी में इनकी बुआई की जा सकती है। जो तिल है इसके लिए अगर उन्नत तिल किस्में की बात करें तो RT 372 गुजरात तिल, 11 VRI उन्नत रामा, जवाहर तिल 14, ऐसे अलग अलग किस्में हैं जो लगभग 80 से 100 दिन के अवधि में पक करके तैयार हो जाती हैं। इसी प्रकार राम तिल की बात करें तो JNS 2016-11-15, JNS 2016-14-13, JNS 2017-13, JNS 2015-9, JNS 521, ये राम तिल की किस्में हैं जो लगभग 100 से 110 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। सूरजमुखी की बात करें तो SN H1 LSFH 171, KBSH 85, KBSH 85, KBSH 88, KBSH 44, KBSH 90, ये आदि संकर किस्में हैं जो कि 80 से लेकर के 95 दिन की अवधि में पक करके तैयार हो जाती हैं। अगर बीज की मात्रा की बात करें तो तिल के लिए 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, राम तिल के लिए 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सूरजमुखी की संकर किस्मों के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को अच्छे से बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करना चाहिए। तत्पश्चात एजोस्पिरिलम PSB और KSB का प्रत्येक का 2 मिलीलीटर मिलाकर उसमें 4 मिलीलीटर पानी मिलाकर कुल 10 मिलीलीटर तैयार करें और 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। बुआई का समय जो है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच उपयुक्त होता है राम तिल के लिए, 1 से 15 अगस्त के मध्य और सूरजमुखी के लिए 15 जून से 15 जुलाई का जो अवधि है उसमें अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। बुआई का तरीका कतार बोनी सबसे उपयुक्त होती है। इसमें तिल के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर बना करके रखना चाहिए। राम तिल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसी प्रकार से सूरजमुखी के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक की मात्रा की बात करें तो तिल के लिए 1 से 2 टन गोबर की मात्रा ये सभी फसलों में लगती है। इसके अलावा नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम तथा सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में डालना चाहिए। राम तिल के लिए भी गोबर की खाद 1 से 2 टन, नाइट्रोजन 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रदान की जानी चाहिए। सूरजमुखी की जो संकर किस्में हैं उनके लिए गोबर की खाद थोड़ा ज़्यादा लगती है, इसमें 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से देनी चाहिए। बीच बीच में निंदाई गुड़ाई एवं निंदा प्रबंधन का कार्य किया जाना चाहिए ताकि फसल को निंदा से प्रभावित ना होना पड़े। इसके लिए लगभग 45 दिनों तक फसल को मुख्य रूप से जितने भी निंदा है उनसे साफ सफाई बना करके रखनी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन के लिए क्विजालफॉप इथाइल जिसको टर्गा सुपर एवं अन्य समान उत्पाद के नाम से आते हैं, इनका 40 से 45 ग्राम सक्रिय तत्व 800 से 200 व्यावसायिक उत्पाद को बोनी के 15 से 20 दिन या खरपतवार के 2 से 3 पत्ती की अवस्था में 500 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इनमें बात करें तो बीमारियां जो हैं तिल में सर्कोस्पोरा पर्णदाग लगती हैं, इनके लिए बीज उपचार किया जाना बहुत जरूरी जैसे कि मैंने बताया था। धन्यवाद किसान भाइयों।
0: कृषि चर्चा में तिल की उन्नत खेती विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर परमेश्वर साहू द्वारा दी गई जानकारी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा रात 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा रूप कुमार सोनी का सितार पर बजाया राग कौनसी कान्हड़ा। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 7:05 पर पेश करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइया में सुबह 8:30 पर सुनिएगा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे श्री रामेश्वर वैष्णव, श्री डूमन लाल ध्रुव और श्री अशोक कुमार साहू। संपादक और प्रस्तुतकर्ता होंगे महेंद्र साहू। सुबह 9:00 आप सुनेंगे झलकी अजी सुनिए। आलेख अनुभा अग्रवाल का होगा और प्रस्तुति समीर शुक्ल की होगी। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर सुबह 10:00। दोपहर 12:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:00। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। सदाबहार नगमे पेश करेंगे दिन के 11:30 पर। महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में दोपहर 1:30 पर आज के गोट का विषय होगा हमर संस्कृति में जगन्नाथ रथ यात्रा। साथ ही सुनिएगा वार्ता, विषय होगा परिवार टूटे के कारण। वार्ताकार होंगी पुष्पा शर्मा और होंगे बहिनी मन के चिट्ठी और गीत संगीत। शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में आज अपन गोट का विषय होगा गांव ला घलो जरूरत है प्रतिभा के। साथ ही होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा हरियाली ले रोजगार पावन मानसून में नर्सरी लगावन। और किसान वाणी में फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। और इस विषय पर जानकारी देंगी मनीषा खापरडे। संचालन पूजा चंद्रवंशी का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे।

रात 10 बजे पेश करेंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और श्रोताओं, चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा सुबह 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2 बजे, 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं, पहले संस्कृत फिर हिंदी में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये

0: अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाई जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3:30 शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं नमस्कार। नमस्कार रायपुर सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। नमस्कार रायपुर के इस सफर में आज मैं हूं आपके साथ दीपा। श्रोताओं हर नया दिन चेहरे पर मुस्कान, दिल में उमंग और सुरों का खूबसूरत साथ लेकर आता है और इस सफर में जब साथ हो सूचना, जानकारी, मधुर संगीत और आप और हम तो हर पल और भी खास हो जाता है। तो दिल को गुनगुनाने दीजिए, कदमों को थिरकने दीजिए, क्योंकि आपका दिन बनाने आ गए हैं हम।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
2: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं, कुछ धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे पीढ़ियों की धड़कनों में बस जाती है। भारतीय सिनेमा के एक ऐसे ही मशहूर संगीत निर्देशक जिन्होंने शास्त्रीय संगीत और कव्वाली में अपनी बेमिसाल पकड़ बनाई। हम बात कर रहे हैं संगीतकार रोशन लाल नागरथ की, जिन्हें दुनिया सिर्फ रोशन के नाम से जानती है। आज 14 जुलाई को उनकी जयंती है। पंजाब के गुजरावाला में 14 जुलाई 1917 को जन्मे रोशन साहब बचपन से ही संगीत के साधक थे। वे एक खास वाद्य यंत्र बजाते थे, एसराज। पंडित एस एन रतनजंकर और उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दी। बाद में मुंबई का रुख किया, जहां करियर में संघर्ष के बाद फिल्म बांवरे नैन ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद रोशन ने एक से बढ़कर एक कालजयी धुनें रची। बरसात की रात, ताजमहल, ममता, बहू बेगम, चित्रलेखा, दिल ही तो है, भीगी रात जैसी फिल्मों का संगीत आज भी उतना ही ताज़ा लगता है। उनके संगीतबद्ध किए गीतों में जो वादा किया, रहे न रहे हम, निगाहें मिलाने को, दुनिया करे सवाल, ना तो कारवां, हम इंतज़ार करेंगे, लागा चुनरी में दाग और सारी सारी रात तेरी याद सताए जैसे कई बेहतरीन गीत और कव्वाली उनकी सुर साधना की पहचान है। 16 नवंबर 1967 को रोशन इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनका संगीत आज भी हर पीढ़ी के दिलों में जीवित है। उनके बेटे राकेश रोशन और राजेश रोशन और उनके पोते ऋतिक रोशन ने भी भारतीय सिनेमा में उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। रोशन नाम केवल एक संगीतकार का नहीं, बल्कि उन सुरों की रोशनी का नाम है जो आज भी दिलों को सुकून देती है। उनकी धुनें आने वाले समय में भी संगीत प्रेमियों के दिलों में यूं ही गूंजती रहेगी। रोशन साहब को उनकी जयंती पर याद करते हुए आइए सुने उनका संगीत बद्ध किया ये गीत।

ये मनमोहक संगीत, ये आवाज़ गज़लों के शहजादे और सुरों के जादूगर मौसिकार मदन मोहन की है, जिनकी धुनें भारतीय फिल्म संगीत के जरिए लोगों के कानों और दिलों में आज भी घुली हुई है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं।

मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं है। ये शब्द है संगीतकार मदन मोहन कोहली के, जिनका जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ। भारतीय सेना में सेवा करने के बाद उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और सेना छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ का दामन थाम लिया। यहीं उन्हें बेगम अख्तर, उस्ताद फैयाज खां और अनेक महान कलाकारों का सानिध्य मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनकी धुनों की पहचान बना।

1950 में फिल्म आंखें से उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में शुरुआत की। इसके बाद अनपढ़, वो कौन थी, हकीकत, मेरा साया जहां आरा, हंसते जख्म, दस्तक, हीर रांझा, दुल्हन एक रात की, देख कबीरा रोया, अदालत, मौसम जैसी कई कालजयी फिल्मों में उन्होंने गीत दिए, जो आज भी संगीत प्रेमियों के लिए धरोहर है।

लता मंगेशकर उन्हें प्यार से मदन भैया कहती थी। उन्होंने एक बार कहा था, दूसरे संगीतकारों ने मुझे गाने दिए लेकिन मदन भैया ने मुझे संगीत दिया। ये उनके संगीत की सबसे बड़ी पहचान थी। मदन मोहन की धुनों में गजल की नज़ाकत, शास्त्रीय संगीत की गरिमा और भावनाओं की गहराई एक साथ सुनाई देती है। उनकी इस जुगलबंदी ने 1950, 1960 और 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा को कई अमर गजलें और रोमांटिक गीत दिए।

0: मोहम्मद रफ़ी के साथ संगीतकार मदन मोहन का विशेष जुड़ाव रहा। कर चले हम फिदा तेरी आँखों के सिवा, तुम जो मिल गए रंग और नूर की बारात, ये दुनिया ये महफिल जैसे कई गीत आज भी सदाबहार है।
1: कर चले हम फिदा जानत।

गजलों और नज़मों की रूहानी तर्जों के सृजन के लिए अपना लोहा मनवाने वाले संगीतकार मदन मोहन के निधन के लगभग 30 वर्ष बाद बेटे संजीव कोहली को उनकी अप्रयुक्त धुनें मिली। यश चोपड़ा ने इन्हें फिल्म वीर जारा में इस्तेमाल किया। जावेद अख्तर ने उन पर शब्दों केरे और लता मंगेशकर ने अपने मदन भैया से किया वादा निभाते हुए उन्हें स्वर दिया और इस फिल्म के संगीत के लिए उन्हें उनके जाने के बाद सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए आईफा अवार्ड से नवाजा गया।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में ऐसे विरले कलाकार कभी अपनी उम्र से नहीं, अपनी रचनाओं से जिया करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हैं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम सो गए दास्तां कहते कहते, सुरों की दुनिया का एक पंछी उड़ गया और आज तक कांपती है वो डालियां। संगीतकार मदन मोहन साहब की ये दास्तां भला कैसे खत्म हो सकती है। उन्हें शायद हमसे बहुत दूर जाना था, रुखसती तो एक बहाना था।

श्रोताओं, देश के एक हिस्से में बारिश बाढ़ बनकर तबाही मचा रही है तो दूसरे हिस्से में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति का ये विरोधाभास हमें चेतावनी देता है कि पानी की हर बूंद अनमोल है। यदि आज हम वर्षा जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जल संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है। देश भर में मॉनसून सक्रिय है। बारिश अपने साथ हरियाली, खुशहाली और नई उम्मीदें लेकर आती है। किसान खेतों में बुआई शुरू करते हैं, जलाशय भरने लगते हैं और पेयजल के स्रोत को नया जीवन मिलता है। लेकिन विडंबना ये है कि जब अच्छी वर्षा भी होती है उसके बावजूद भी हर वर्ष देश के अनेक हिस्सों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण वर्षा जल का समुचित संचयन न होना है। श्रोताओं, वर्षा जल संचयन भू जल स्तर बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय है। यदि बारिश के पानी को तालाबों, कुओं, बावड़ियों और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से धरती में उतारा जाए तो भविष्य में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। कभी भारत की पहचान उसके परंपरागत जल स्रोत से होती थी, लेकिन समय के साथ इनकी उपेक्षा ने जल संकट को और भी गंभीर बना दिया है। आज देश के करोड़ों लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। ऐसे में जल की अनावश्यक बर्बादी को रोकना, वर्षा जल का संचयन करना और हर घर, हर संस्थान और हर गांव में जल संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाना समय की मांग है। श्रोताओं, हम जानते हैं कि जल है तो कल है। आज बचाई गई पानी की हर बूंद आने वाले पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा है। आइए इस मॉनसून संकल्प ले कि वर्षा की हर बूंद को सहेजेंगे और जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएंगे, क्योंकि आप और हम सब चाहते हैं हमारे देश की धरती यूं ही सोना उगलती रहे। इसके लिए जरूरी है हम वर्षा की हर बूंद को सहेजे, क्योंकि पानी बचेगा तभी तो खेत लहलाएंगे, अन्न उगेगा और जीवन मुस्कुराएगा।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं, 16 जुलाई को रथ यात्रा का पावन पर्व हम मनाएंगे। ये पर्व भारतवर्ष के जगन्नाथपुरी के साथ साथ कई राज्यों में मनाया जाता है। पर श्रोताओं, क्या आप जानते हैं हमारे प्रदेश में इस पर्व को गोंचा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्य रूप से मुख्यालय जगदलपुर में मनाया जाने वाला एक 600 साल पुराना और बेहद अनोखा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। ये पर्व भी भगवान जगन्नाथ की उपासना से जुड़ा है, जिसमें आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय मिलकर हिस्सा लेते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत 1408 ईस्वी में काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा की गई थी। इस त्योहार का सबसे बड़ा आकर्षण तुपकी यानी बांस से बनी एक पारंपरिक नकली बंदूक है। लोग इसमें गोंचा या पेंग नामक जंगली फल को गोली की तरह इस्तेमाल कर एक दूसरे पर चलाते हैं। साथ ही तुबकी को रंग बिरंगे ढंग से सजाया भी जाता है। ये आपसी भाईचारे और आनंद का प्रतीक है। और श्रोताओं, ये उत्सव रथ यात्रा के दौरान 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है और इस उत्सव को देखने देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं और इस अनोखे पर्व का आनंद लेते हैं। और महोत्सव की सांस्कृतिक छटा में आइए हम भी खो जाते हैं।

0: श्रोताओं, समय के साथ बदलती तकनीक जब पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी साथ लेकर चलती है, तब विकास की रफ्तार और प्रकृति का संतुलन एक साथ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे भी अब ऐसे ही एक नए और हरित सफर की शुरुआत करने जा रहा है। देश में 17 जुलाई को पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। ये ट्रेन हरियाणा में जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। शुरुआत में इसकी गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिसे आगे चलकर बढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ये ट्रेन डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जा रही है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये ट्रेन यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगी। भारतीय रेलवे का ये कदम हरित परिवहन और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। हर नई मंजिल एक नए सफर की शुरुआत करती है। हाइड्रोजन ट्रेन केवल रेलवे की उपलब्धि नहीं है, बल्कि उस भारत की पहचान होगी जो प्रगति की तेज रफ्तार के साथ प्रकृति को की जिम्मेदारी भी निभा सकता है। आइए इस पहल का स्वागत करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें। तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपको खुश देखकर हमें भी खुशी मिलती है।
1: तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुमको खुश देख

कौन सी शाख पर कौन सा गुल खिले, यारो ये तो नसीबों के हैं फैसले। किस लिए फिर करे कोई शिकवा गिला, तुमको खुश देख कर मैं बहुत खुश हुआ। ये आँख भर आई तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तुमको खुश

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले संलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, प्रकृति हर मौसम में अपने रूप बदलती है और हमेशा से मनुष्य इन बदलावों को बड़े चाव से निहारता है, फिर चाहे वो फूल हो, पौधे या आसमान। मानसून के आते ही प्रकृति का रंग रूप खिल उठता है, नदियों का वेग बढ़ जाता है तो झरनों की आवाज भी बढ़ जाती है, हरियाली अपने चरम पर होती है तो आसमान से धरती पर आता संगीत मन को लुभा जाता है। लेकिन प्रकृति की इस खूबसूरती को देखने तो हमें उसके नजदीक ही जाना होगा। तो यही बात होती है मॉनसून टूरिज्म की, यानी पर्यटन की। और इस मौसम में आप बादलों को झूम कर छाते और बरसते देख सकते हैं, तो जल प्रपातों को अपने शबाब पर देख सकते हैं। इस मौसम में सफर भी बड़ा खूबसूरत होता है और सुहाना हो जाता है, बशर्ते कि वो सावधानी से किया जाए। श्रोताओं, हर मौसम में हमारे प्रदेश के पर्यटन स्थल भी बेहद खूबसूरत हो जाते हैं, जैसे चित्रकूट, तीरथगढ़, कांकेर वैली, सरगुजा के साथ ही और भी बहुत से पर्यटन स्थल। तो आप भी समय निकालिए और निहारिए प्रकृति को करीब से, बसा लीजिए अपनी निगाहों में और चुरा लीजिए इन हंसी वादियों को।

श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आपको हमारी प्रस्तुतियां पसंद आ रही होगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए। और नमस्कार रायपुर के सफर से अब दीपा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

0: कीपिंग हैज बीन अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: अक्रॉस 10 ऑफ द 11 एक्टिव मिशंस।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
3: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान ना हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा

0: यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, SIT से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमरीका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। इंडिया ऑफिशियली लॉन्चेस इट्स कैंपेन फॉर इलेक्शन एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2028-29 टर्म। Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. US launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
2: Highlighting India's credentials, Dr. Jaishankar said India has contributed nearly 3 lakh personnel to about 50 UN peacekeeping missions since the organization's inception.
3: Peacekeeping has been a crucial element of maintenance of international peace and security. Since

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू को तिले। श्रोता साथी हो, आज के अंक में आप मल्ला सुनवाथन एक कवि गोष्ठी, और एक कवि गोष्ठी के संचालन करत हैं श्री डुमन लाल ध्रुव। तो आवा सुनाथन एक कवि गोष्ठी ला।
1: मोर भुइयां कार्यक्रम सुनैया संगवारी और श्रोता मल्ला हार्दिक जय जोहार। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में पधारे हवे छत्तीसगढ़ी के सुप्रसिद्ध गीतकार कवि श्री रामेश्वर वैष्णव जी, जौन रायपुर ले पधारे हवे। श्री अशोक कुमार साहू आकाश जी, जौन बालोद ले पधारे हवे। और मैं डुमन लाल ध्रुव आप सबके हार्दिक स्वागत करत हूँ। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कवि अशोक आकाश जिला कविता पाठ करे बर सादर आमंत्रित करत हूँ।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ध्रुव जी। ये कार्यक्रम में पहली मोर कविता है दंदियावत रही से दिन भर। दंदियावत रही से दिन भर संझा द मोरे हे सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झूरे। सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झूरे।

अंदर फोरे हे सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे हे सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे हे जैसे बदरा घूंघट खोले चर चर चर चर घाम करे जैसे बदरा घूंघट खोले चर चर चर चर घाम करे कड़ कड़ करा पड़ पड़ पानी रुम झुम बांध भरे कड़ कड़ करा पड़ पड़ पानी रुम झुम बांध भरे सतरंगी धनुष देखे बर लैका सियान लोरे हे सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे हे सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे हे सुर सुर सुर सुर पवन झकोरा बेराला बिजरावत हे सुर सुर सुर सुर

0: पहिराए कंगन रुख फुनगी इतरावत हे, नावा दुलहिन हरियर कथरी ओढ़े गाथे कोरे हे, सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे हे, सुखा नंदिया पूरा चढ़ गे रंग झाझर झोरे हे। और मोर अगला कविता है पानी द मोर दे। पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे, अगती तिहार मना के बादर बंधना छोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे। होरा कस भूंजा थे जेठ के महीना, होरा कस भूंजा थे जेठ के महीना, बेरा के ढरकत ले तलप ते जीना, नौ टप्पा घुरुर घागर नौ टप्पा घुरुर घर अर भुइया पाटी कोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे। किसानी के बेरा आगे खपरा छानी छाओ जी, किसानी के बेरा आगे खपरा छानी छाओ जी, काटा खुटी बीनों पर द पलानी बंधाओ जी, पै डगरी रेंगत छिपिर छापर भर का पानी लोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे। और सर सर सर सर चलत हवे धूकी गरेरा, सर सर सर सर चलत हवे धूकी गरेरा, धर धर धर धर पानी गिरा जुड़ा जीवन डेरा, बिजबौनी टुकनी बिसा बिजबौनी टुकनी बिसा बीजा भात जोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे, पानी द मोर दे नांगर बैला जोर दे।
1: अभी भाई श्री अशोक कुमार साहू जी आकाश छत्तीसगढ़ी में काव्य रचना करत रहने, और मैं छत्तीसगढ़ के माटी के सुगंध ला अपन लेखनी में समेटने वाला आदरणीय श्री रामेश्वर वैष्णव जिला काव्य पाठ खातिर सादर आमंत्रित करत हूँ।
2: स्वागत। आकाशवाणी रायपुर है छत्तीसगढ़ी के समृद्धि ला, छत्तीसगढ़ी के ताकत ला और छत्तीसगढ़ी के शब्द भंडार ला सामने लाए में बहुत बड़े योगदान दे है। आज जो छत्तीसगढ़ी है भाषा के दर्जा पाए के लायक बने हैं
1: जी,
2: तेकर पिछू में आकाशवाणी रायपुर के भी
3: बहुत बड़े
2: बहुत योगदान है
3: जी। सही बात।
2: अब मैं हास्य व्यंग लिखने वाला हूँ। अब विषय के कमी पर गए हास्य पर, कहाँ से विषय लाया जाए
3: जी।
2: हास्य कवि मन अतका विषय अतका सब खोदाल खोदाल के लिख डालीन है कि बचीस नहीं, तो मैं हर करुणा ला विषय बनात हूँ। तो अच्छा। डोकरा मन के जीवन में जो करुणा है
3: अच्छा।
2: तेला हास्य के माध्यम से
1: जी।
2: पेश करे के मोर उदिम ल देखा
1: जी।
3: जी जी। स्वागत।
1: बहुत बढ़िया।
3: स्वागत।
2: छाती महा मुरु दिल है जी डोकरा हवन तका हो गे, छाती महमरो दिल है जी डोकरा हवन तका हो गे, गोठिया एक महफिल है जी, गोठिया एक महफिल है जी, भोभला हवन तका हो गे, छाती महमरो दिल है जी डोकरा हवन तका हो गे, छाती महमरो दिल है जी डोकरा हवन तका हो गे। दुनिया किंदर के बैठे हन अनभो टमर के बैठे हन,
1: वाह वाह।
2: दुनिया किंदर के बैठे हन अनभो टमर के बैठे हन, सेहत भले गवा डारेन संसोला धर के बैठे हन, सेहत भले गवा डारेन संसोला धर के

0: जांगर अभी चलत है जी, जांगर अभी चलत है जी, बपरा हवन तक हो गे, घाटी में हमरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे, छाती में हमरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे, एक कोठी दांत नहीं बाचिस, अब खून तात नहीं बाचिस,
1: बहुत बढ़िया,
0: एक कोठी दांत नहीं बाचिस, अब खून तात नहीं बाचिस, हम जे माने गए हो वो कोनो बरात नहीं बाचिस, हम जे माने गए हो वो कोनो बरात नहीं बाचिस, सब सूट बूट पहिरेन अब, सब सूट बूट पहिरेन अब, उघरा हवन तक हो गे, हमरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे, छाती में हमरो दिल है जी, डोकरा हवन तक हो गे, और डोकरा मन के सबसे बड़े पीरा, पारा मुहल्ला नहीं पूछे, बस्ती हमला नहीं पूछे, पारा मुहल्ला नहीं पूछे, बस्ती हमला नहीं पूछे, भगवान के भरोसा हन अब लोग लैका नहीं पूछे, भगवान के भरोसा हन अब लोग लैका नहीं पूछे, बस जाए के तैयारी है, बस जाए के तैयारी है, खोरवा हवन तक होगे, छाती में हमरो दिल है जी, डोकरा हवन तक होगे, गोठिया के महफिल है जी, गोठिया के महफिल है जी, भोबला हवन तक होगे, छाती में हमरो दिल है जी, डोकरा हवन तक होगे, छाती में हमरो दिल है जी, डोकरा हवन तक होगे। आओ,
2: बहुत अच्छा लगे।
0: मोर कविता के बाद आज जो ये कवि गोष्ठी के संचालन करत हैं डुमन लाल जी ध्रुव, रहे बर तो नवा नेवरिया लगते हैं, हालांकि 50 साल की उम्र तक पहुंचत हो ही, लेकिन एकर बहुत बढ़िया हाल ये है कि ये नई कविता लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी में नई कविता लिखते हैं, ये लिखना बड़ा बौद्धिकता के बात है, और मैं ऊकर से आग्रह करूँ कि नई कविता के रंग में छत्तीसगढ़ी के ढंग ला पेश करें भाई डुमन लाल जी ध्रुव।
1: मोर कविता के शीर्षक है अपन जिंदगी बचाना। जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, पेड़ मन खड़े रही थे ओकर छाव मा,
0: वाह,
1: जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, पेड़ मन खड़े रही थे ओकर छाव मा, थकान बैठे बर जगह नहीं बाँचे, जंगल अब पहले जैसे नहीं बोले, पेड़ मन खड़े रही थे ओकर छाँव में, थकान बैठे बर जगह नहीं बाँचे, लकड़ी बन के निकले है जंगल,
0: वाह,
1: लकड़ी बन के निकले है जंगल, और माटी अपन हरियर सिंगार भर खोजत फिरत है, और माटी अपन हरियर सिंगार भर खोजत फिरत है,
0: वाह वाह,
1: तो धुआं हम हवा ले आगू भगत है, तो धुआं हम
2: हवा
1: ले आगू भगत है, मनखे अपन सांस ला हाथ ले टटोला थे, जैसे ऑक्सीजन घलो अब बाजार के चीज हो गए, नदी के पानी मा आगास के रंग कम है,
0: वाह वाह,
1: नदी के पानी मा आगास के रंग कम, कारखाने के छैया ज्यादा दिखते,
0: वाह वाह वाह,
1: गोड़ेला चिड़ई पड़की मैना कोयली सबके गीत धीरे धीरे चुप होवत जात है, लैका मन किताब में चिड़ई ला देखते,
0: वाह वाह वाह,
1: लैका मन किताब में चिड़ई ला देखते, अंगना में नहीं फिर धरती है कोनो शिकायत नहीं करे, सिर्फ चुपचाप सुखात रही थे, धरती है कोनो शिकायत नहीं करे, सिर्फ चुपचाप सुखात रही थे, ओकर चुप्पी सबले बड़े सवाल आए, ओकर चुप्पी के सबले बड़े सवाल आए, अगर आज एक ठन बीज बो है तो काली कोनो डार है हवाला जन्म दे, आज अगर एक ठन बीज बो है तो काली कोनो डार है हवा ला जन्म देही, कोन्हो चिड़ै फिर अपन घर बनाही और मनखे समझी जंगल बचाना सिर्फ पेड़ बचाना नहीं, अपन जिंदगी बचाना आए जंगल बचाना सिर्फ पेड़ बचाना नहीं अपन जिंदगी बचाना है।
2: बहुत सुंदर।
1: दूसर कविता है बिहान ला जगाही।
0: वाह।
1: आज बिहान के हवा थके थके ऐस।
0: वाह वाह वाह।
1: आज बिहान के हवा थके थके ऐस, ओकर संग फूल के महक नहीं धुआं के गंध रहिस। आज बिहान के हवा थके थके ऐस, ओकर संग फूल के महक नहीं धुआं के गंध रहिस। आज मनखे हा मास्क पहिर के चलत है। आज मनखे हा मास्क पहिर के चलत है, फिर पेड़ मन बिना शिकायत सबो ला सांस दे के कोशिश करत रहते हैं। कटत जंगल ला देख के, कटत जंगल ला देख के सूरज नारायण घलो कभू कभू उदास लगते। कटत जंगल ला देख के सूरज नारायण घलो कभू कभू उदास लगते, ओखर अंजोर मा पहली जैसे चमक नहीं है। ओखर अंजोर मा पहली जैसे चमक नहीं है। गोड़ेला चिड़ई अपन नान कुन घर ला छोड़ के कहाँ उड़ गए कोनो ला पता नहीं है। गोड़ेला चिड़ई अपन नान कुन घर ला छोड़ के कहाँ उड़ गए कोनो ला पता नहीं है। ओकर घोंसला हा हवा में डोलत रहते, ओकर घोंसला हा हवा में डोलत रहते, धरती के सीना मा जेन हरियर सपना रहिस होला कुदारी है कुटी कुटी काट डालिस।
2: बहुत सुंदर चित्र।
1: ओकर घोंसला हवा में डोलत रहते, धरती के सीना मा जेन हरियर सपना रहिस होला कुटी कुटी काट डालिस। अब जरूरत है नवा कारखाना ले पहली, अब जरूरत है नवा कारखाना ले पहली नवा जंगल बनाए के।
0: वाह।
1: अब जरूरत है नवा कारखाना ले पहली नवा जंगल बनाए के, नवा सड़क ले पहली पुराना पेड़ बचाए के। जेन दिन हर घर एक ठन पेड़ लगाही, जेन दिन हर घर एक ठन पेड़ लगाही, ओ दिन ऑक्सीजन बिसाए ला नहीं पड़ही। हवा फेर मुस्काही, हवा फेर मुस्काही और चिड़ई मन अपन गीत ले बिहान ला जगाही। और चिड़ई मन अपन गीत ले बिहान ला जगाही।
0: वाह वाह वाह बहुत बढ़िया।
1: और अब मैं काव्य पाठ के लिए श्री अशोक कुमार साहू आकाश जिला सादर आमंत्रित करत हूँ।
2: धन्यवाद ध्रुव जी। आज ये दूसरा दौर में मोरे कविता है काकरो बर ठाढ़े नहीं बेरागा। काकरो बर ठाढ़े नहीं बेरागा, चलत रही थे सर लग ढेरागा। काकरो बर ठाढ़े नहीं बेरागा, चलत रही थे सर लग ढेरागा। काकरो सपना अधिया थे, काकरो सपना मरिया थे। काकरो सपना अधिया थे, काकरो सपना मरिया थे। ओकरे जिंदगी फुरना थे, जहर पूरे बर अड़िया थे।
0: वाह वाह।
2: बेरा के हाथ झपट खा ले के रागा, काकरो बर ठाढ़े नहीं बेरागा। कतरो जांगर पीराय तो भोले नहीं ठीराय, घानी नांगर पंदाय तेल बेचे नहीं सिराय। कतरो जांगर पीराय तो भोले नहीं थीराय, घानी नांगर फंदाय तेल बेचे नहीं सिराय। ओकरे तनियाय रही थे डेरागा, ककरो बर ठाढ़े नहीं बेरागा।
1: वाह वाह वाह।
2: जेहर रही थे अलाल पर थे ओकरे बर अकाल, जेहर रही थे अलाल पर थे ओकरे बर अकाल। ओला हीरा मिल के रही थे जेहर कोड़ थे पताल।
0: वाह वाह।
2: बड़े बड़े को कर गे कर फेरागा, ककरो बर ठाढ़े नहीं बेरागा।
1: वाह वाह बहुत बढ़िया।
2: ककरो बर ठाढ़े नहीं बेरागा। अब और अगला कविता है जिंदगी खुआ।

0: गे, ननपन पढ़ई खेलई में गवागे, जवानी नींदा बोझई में पहागे।
1: वाह वाह वाह।
0: ननपन पढ़ई खेलई में गवागे, जवानी नींदा बोझई में पहागे, पठौनी आते चूल्हा फूके बपुरी, जिंदगी खुआर हो गे नून तेल लकड़ी। जिंदगी खुआर हो गे नून तेल लकड़ी, पानी भरे अंगना दुआर लिपत है।

0: लकड़ी।
1: बहुत बढ़िया।
0: जिंदगी खुवार हो गए नून तेरे लकड़ी।
1: अभी काव्य रचना पढ़त रही ने श्री अशोक कुमार साहू आकाश जी, जेकर कविता में छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, गांव गवई के संवेदना, समाज के यथार्थ और जागरण के गहिर चित्रण देखे बर मिलिस। और अब मैं हम आमंत्रित का करत हूँ जौन रायपुर ले पधारे हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गीतकार श्री रामेश्वर वैष्णव जी।
2: छत्तीसगढ़ी में एक गजल परोसत हूँ
0: जी।
2: बहुत पहली 7 नवंबर 1970 के यही आकाशवाणी रायपुर से मोर छत्तीसगढ़ी के पहली गजल
1: जी
2: प्रसारित हो रही से। और बीच बीच में कई ठन कवि गोष्ठी में मैं गजल सुनाए हूँ। आज एक विशेष गजल सुनाना चाहत हूँ
0: जी। जी स्वागत स्वागत।
2: गजल के मतला है
1: जी,
2: दिल हजत के उजर हो ही, दिल हजत के उजर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही।
0: बहुत बढ़िया।
2: दिल हजत के उजर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही, मेहनत के अचरा झन छोड़ो,
1: मेहनत
2: के अचरा झन छोड़ो, किस्मत खुदे मंगे तर हो ही।
1: वाह वाह।
2: दिल हजत के उजर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही, जेन पसीना रोज बोहाही, रोज बोहाही हो, जेन पसीना रोज बोहाही, जेन पसीना रोज बोहाही, खेत वो करे हरियर हो ही। दिल हजत के उजर हो ही, जेन पसीना रोज बोहाही, खेत वो करे हरियर हो ही, दिल हजत के उजर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही। टुकना भर दुख परे हवैता, टुकना भर दुख परे हवैता, टुकना भर दुख परे हवैता, खुशी घलो गाड़ा भर हो ही। दिल हजत के उजर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही, दिल हजत के उजर हो ही, छैहा के सपना देखत हो, छैहा के सपना देखत हो।
0: बहुत बढ़िया।
2: छैहा के सपना देखत हो, कोनो दिन तुहरो घर हो ही, दिल हजत के उजर हो ही, पर के धन लौले जीलत है, पर के धन जौने लीलत है, पर के धन जौने लीलत है, पन के धन जौने लीलत है, घर में वो कर अजगर हो ही, दिल हजत के उजर हो ही, करनी उत के सुघर हो ही। और आखिरी शेर है
0: जी जी,
2: बड़का मान उही लामिन ही, बड़का मान उही लामिन ही, बड़का मान उही लामिल ही, जेकर जौहर जांगर हो ही, दिल हजत के उजर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही, दिल हजत के उजर हो ही, करनी ओत के सुघर हो ही। आओ मैं अब फिर से डुमन लाल जी ध्रुव ला कविता पढ़े बार आमंत्रित करा था। पहली बार कविता में उन छत्तीसगढ़ी में नई कविता सुनाई और नई कविता के जतका तेवर है ते सब ला आप देखे हो। अब मैं ऊकर से गेलौली करत हूँ कि वो अपन काव्य पाठ शुरू करें।
1: कविता के शीर्षक है धरती के भुखार।
0: वाह अच्छा शीर्षक।
1: धरती ला हल्का भुखार रहीस, धरती ला हल्का भुखार रहीस, मनखे ध्यान नहीं दिस। धरती ला हल्का भुखार रहीस, मनखे ध्यान नहीं दिस, भुखार बाढ़त गिस, नदी सुखाते गई, भुखार बाढ़त गिस, नदी सुखाते गिस, जंगल घटिस, गर्मी चढ़िस, फिर एक दिन सूरज नारायण घलो कड़क लगिस।
2: वाह।
1: फिर एक दिन सूरज नारायण घलो कड़क लगीस,
0: बहुत बढ़िया,
1: धरती कहिस मोर दवाई पेड़ हवे।
2: वाह,
1: धरती कहिस मोर दवाई पेड़ हवे।
0: बहुत बढ़िया,
1: मनखे सुनिस, फिर दूसरैया दिन फिर एक पेड़ कट गए। धरती कहिस मोर दवाई पेड़ हवे, मनखे सुनिस, फिर दूसरैया दिन फिर एक पेड़ कट गए, फिर एक पेड़ कट
2: गए।
1: दूसरा है आखिरी महुआ। महुआ के बूढ़ा पेड़ गांव के छोर में खड़े हैं। महुआ के बूढ़ा पेड़ गांव के छोर में खड़े हैं। वो जानते कि ओकर संगवारी मन एक एक करके जावत हवे।
2: वाह,
1: महुआ के बूढ़ा पेड़ गांव के छोर में खड़े हैं। वो जानत है कि ओकर संगवारी मन एक एक करके जावत हवे। फिर महुआ हर साल फूल झर रहते, धरती ऊपर सफेद चादर बिछ जाते। फिर महुआ हर साल फूल झर रहते, धरती ऊपर सफेद चादर बिछ जाते। पेड़ कही थे जब तक मैं हवा हूँ, पेड़ कही थे
0: जब तक
1: मैं हवा हूँ तब तक जंगल की कहानी जिंदा है। पेड़ कही थे जब तक मैं हवा हूँ तब तक जंगल के कहानी जिंदा है। हवा ओकर बात ला दूर ले जाते, काबर की कहानी बचाना अब पेड़ बचाए जिसने कठिन हो गए है। काबर की कहानी बचाना अब पेड़ बचाए जिसने कठिन हो गए।
2: वाह वाह,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो अभी अपन मोर भुइया कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ करत रहिन हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गीतकार आदरणीय श्री रामेश्वर वैष्णव जी जौन रायपुर ले पधारे हवे, श्री अशोक कुमार साहू आकाश जी बालोद ले पधारे हवे, और मैं डुमन लाल ध्रुव जौन धमतरी ले आकाशवाणी में मोर भुइया कार्यक्रम के तहत काव्य पाठ करे बर हा हूँ। और आप सबके उपस्थिति ला मैं सादर नमन का करत हूँ। जय जोहार।
3: अभी आप मन सुनत रहो कवि गोष्ठी, और एक कवि गोष्ठी के संचालन करत रहिन श्री डुमन लाल ध्रुव, और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां अभी आप सुन रहे थे। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स कैन सुनिएगा रात 8:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा रूप कुमार सोनी का सितार पर बजाया राग कौन सी कान्हड़ा। शाम 5:10 पर युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में आज अपन गोट का विषय होगा गांव ला घलो जरूरत है प्रतिभा के। साथ ही होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है झलकी अजी सुनिए, आलेख अनुभा अग्रवाल का है और प्रस्तुति समीर शुक्ल की।
1: अजी सुनिए, अजी सुनिए,

0: हाँ, कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। ये पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या होता जा रहा है, कुछ याद ही नहीं रहता। कौन सी चीज कहाँ रखकर भूल जाती हूँ। अब ये चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। उफ, तंग आ चुकी हूँ।
1: अरे भाई, ये सुबह सुबह क्या भुन भुन कर रही हो? भाई मुझे तो लगा भजन गुनगुना रही हो।
0: तुम्हें तो सुबह सुबह भी मजाक सूझता है।
1: अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ।
0: होना क्या है, मेरा चश्मा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा।
1: अरे भाई, इतना क्या जरूरी हो गया चश्मे का मिलना? क्या काम रुका है तुम्हारा उसके बिना?
0: काम ये है कि मुझे अखबार पढ़ना है।
1: अखबार? ओहो, आज तुम्हें अखबार पढ़ने की क्या सूझी? भाई देश दुनिया की खबरों से तुम्हारा क्या वास्ता? भाई तुम्हें तो मोहल्ले की गासिप से ही फुर्सत नहीं है ना?
0: तुम भी ना मेरी दुखती रख पर हाथ मत रखो। एक तो दिन भर घर में खाली पड़े पड़े बोर होती हूँ, तो सोचा आज से अखबार पढ़ के कम से कम सुबह का समय तो पास करूं, तो ये कम्बख्त चश्मा ही नहीं मिल रहा।
1: अरे भाई, ये सब बुढ़ापे की निशानी है मेम साहब, भूलने की, बड़बड़ाने की।
0: हाँ, सच में मुझे बुढ़ापा आ गया है। तुम तो दफ्तर में अपना समय निकाल लेते हो, पर बच्चों के बाहर पढ़ने जाने के बाद जैसे मेरे पास तो कोई काम ही नहीं रह गया है। एकदम खाली हो गई हूँ, समय काटे ही नहीं कटता है।
1: अरे अरे अरे, मायूस क्यों होती हो? तुम अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में या शॉपिंग करके अपना टाइम पास कर लिया करो।
0: रहने दो रहने दो, ये सब रोज रोज नहीं होता। अरे पहले चश्मा तो ढूंढ लूं, कहाँ गया? अच्छा हाँ, ये रहा, मिल गया। चलो अब पेपर पढ़ा जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है।
1: अच्छी खबर? अब ऐसी कौन सी अच्छी खबर पढ़ ली तुमने?
0: मुझे ना मेरे सपने सच होते हुए नजर आ रहे हैं।
1: अब बताओगी भी कि ऐसी क्या अच्छी खबर है जो तुम्हारे सपने सच हो गए?
0: देखो जी, हमारे बच्चे तो पढ़ने बाहर चले गए हैं और तुम भी अपने ऑफिस में बिजी रहते हो। बच्चे थे तो उनके साथ मैं व्यस्त रहती थी, पर अब मेरे पास ढेर सारा खाली समय है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अपने इस खाली समय को कुछ रचनात्मक कामों में लगाऊं।
1: रचनात्मक काम? और तुम?
0: मेरा मजाक बनाने से पहले मेरा प्लान तो सुन लो, हैरान रह जाओगे।
1: यदि ऐसी बात है तो सुनाओ जरा, क्या प्लान है तुम्हारा?
0: अब देखो, अखबार में प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के बारे में विस्तार से आया है।
1: प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना? अबे ये क्या है भाई?
0: अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। देखो, ये एक ऐसी योजना है जिसमें लघु और घरेलू उद्यमियों को कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा दी जाती है, जिससे वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर स्वावलंबी बन सकें। और इस योजना में 50,000 से 10,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। और
1: रंजना रंजना, सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये मुद्रा बैंक योजना, ये लघु उद्यम, अरे भाई इन सब से तुम्हें क्या लेना देना है?
0: देखो भाई, बात ये है कि इन दिनों मेरे पास काफी सारा खाली समय रहता है, और मैंने शादी से पहले अपनी मम्मी से सिलाई बुनाई कढ़ाई बहुत अच्छे से सीखा था, और बाद में इन सब का विधिवत कोर्स करके सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया था।
1: तो क्या कहना चाहती हो तुम?
0: तो मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से कम ब्याज दर पर लोन लेके मैं अपने घर पर ही एक छोटा सा बुटीक खोलूं, जहाँ अपने हाथ से बनी हुई सारी चीजें बनाकर रखूं। तो इस तरह मेरे समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और मेरे सीखे हुए हुनर को एक नई दिशा भी मिल जाएगी।
1: रहने दो रंजना, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है।
0: क्यों, मेरे बस का क्यों नहीं है?
1: अरे तुम कहाँ इन सब चक्रों में पड़ोगी? रहने दो, कुछ नहीं होने का तुमसे।
0: देखो, देखो ऐसा बोल के ना गुस्सा मत दिलाओ मुझे, क्यों नहीं होगा मुझसे बताना जरा।
1: सुबह सुबह पता नहीं क्या फितूर सोचता है तुम्हें। छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
0: हाँ हाँ रहने दो, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी।
2: अरे भाई रंजन, कहाँ हो? घर में कोई नहीं है क्या? कहाँ भाई, सब हो कहाँ? अरे भाभी जी नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते रमेश भैया, आइए आइए।
2: गुड मॉर्निंग रंजन भाई।
1: अरे गुड मॉर्निंग, आओ रमेश यार आओ। वाह भाई वाह,
2: क्या बात है यार रंजन, सब ठीक है ना? घर में बड़ी शांति है।
1: अरे कुछ नहीं यार, बस बैठे बिठाए रंजना को कुछ ना कुछ उठपुटांग सूझता रहता है। मैंने मना किया तो नाराज हो गई।
2: अरे पर बात क्या है, जरा विस्तार से बताओ ना।
1: ये रंजना कुछ प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के बारे में कह रही थी। अरे यार ये सब फालतू की बातें हैं, तुम ही बताओ कौन इस सब चक्रों में फंसे। यही बात मैंने रंजना को समझाना चाहा तो नाराज हो गई।
2: नाराजगी वाली बात तो तुमने की है भाई रमेश।
0: वही तो।
1: क्यों, ऐसा क्या कहा मैंने?
2: तुम्हें मैं बाद में बताता हूँ, पहले भाभी जी की बात तो सुन लो। भाभी जी, रंजन कह रहा है कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से कुछ खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं?
0: रहने दीजिए भैया, क्या फायदा, मेरी बातों की अहमियत ही कहाँ है यहाँ पर।
2: अरे भाभी जी ऐसा मत कहिए, आपने बहुत ही अच्छा सोचा है, आप फिक्र मत करिए, आपके सपने जरूर साकार होंगे।
0: सच में?
2: अरे भाई रंजन तुम समझो तो सही, भाभी जी कहना क्या चाह रही हैं? बिना पूरी बात जाने तुम बिगड़ जाते हो यार, ये सही बात नहीं है।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब तुम भी मुझे ही समझाओ, है ना?
0: देख लिया ना भैया, इसीलिए मैं कह रही थी कि रहने दीजिए।
2: अरे नहीं भाई, पहले तो तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो रंजन, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई बहुत ही उपयोगी योजना है, जिसमें छोटे उद्यमियों को कम ब्याज दर पर 50,000 से 10,00,000 तक का लोन दिया जाता है। और इसमें 3 स्तर पर लोन दिए जाते हैं। आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो शिशु स्तर का लोन जो 50,000 तक का होगा, दूसरे स्तर पर यानी किशोर स्तर पर 50,000 से 5,00,000 का लोन, और तीसरे स्तर को तरुण स्तर का नाम दिया गया है, जिसमें 5 से 10,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है।
1: सुन ली तुम्हारी बात भाई रमेश, सब ठीक है, बहुत अच्छा है, पर ये सब काम क्या रंजना के बस का है?
2: ये तुम्हारी गलत फहमी है रंजन, इस योजना का लाभ उठाकर तो गांव की महिलाएं भी खुद के व्यवसाय चला रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। फिर हमारी भाभी तो पढ़ी लिखी है और स्मार्ट है। वैसे भाभी जी आपने क्या सोचा है, लोन लेकर आप क्या करना चाहेंगी?
0: मैंने तो भैया अपना बुटीक खोलने का सोचा है, जिससे मैं अपनी सीखी हुई कला को निखार सकूं और मेरा समय भी बीत जाएगा।
2: बहुत ही अच्छा सोचा है आपने भाभी जी, आप प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना में शिशु स्तर पर लोन के लिए आवेदन कर दें।
0: अच्छा।
2: और बस अपना बुटीक खोलने की तैयारी शुरू कर दीजिए। रंजन यार अब तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना?
1: भाई दिक्कत तो नहीं है, पर यार रमेश जरा और विस्तार से बताओ।
2: ये एक बहुत ही सीधी सरल योजना है, जिसमें दिए जाने वाला ऋण का लोन अल्पवित्त संस्थाओं जैसे वित्त संस्थाओं, MBFC और अन्य कई बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। और तो और इसमें महिला उद्यमियों हेतु महिला उद्यम निधि नामक एक विशेष योजना संचालित की गई है, जिसमें हर तरह की महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है, आपको आपके शुरू किए गए व्यवसाय में जब कभी धन की अच्छी आय हो तब आप लोन की राशि लौटा भी सकते हैं। ताकि ब्याज का बोझ कम हो।
1: अच्छा, ऐसा क्या? भाई सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है यार।
2: अरे सुनने में ही नहीं, ये कारगर रूप में भी अच्छा है, समझे?
1: रंजना सुनो, अब मैं इस योजना को पूरी तरह समझ गया हूँ और चाहता हूँ इस योजना का लाभ उठाकर तुम अपना बुटीक खोलकर अपने समय का सदुपयोग करो।
0: क्या सच में तुम्हें मंजूर है ना?
2: अरे भाभी जी, इसमें ज्यादा मत पूछिए, इसके मूड का कोई भरोसा नहीं है।
0: पर अब मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है, तो सबके लिए गर्मा गर्म चाय तो बनती है ना?
1: बिल्कुल भाई बिल्कुल। सिर्फ चाय ही नहीं, बल्कि तुम्हारे एक बुटीक खुलने की खुशी में सबका मुंह भी मीठा करवाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: भाभी जी, पर एक बात है।
1: क्या बात है?
2: बुटीक खुलने के बाद आपके पास तो समय ही नहीं होगा, इसलिए आप अभी हमें चाय के साथ साथ अपनी स्पेशल पकौड़े भी खिला दीजिए।
0: अच्छा।
2: पता नहीं फिर कब मौका मिले, है ना?
0: जरूर जरूर, अभी लाई, अभी लाई, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े।

0: अजी सुनिए, अजी सुनिए,
1: अजी सुनिए। ये झलकी अभी आप सुन रहे थे, आलेख अनुभा अग्रवाल का और प्रस्तुति थी समीर शुक्ल की। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

श्रोताओं, अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, आज यानी मंगलवार 14 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन, और इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे मनीषा खापरडे, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 14 जुलाई यानी आज 2026 को दिन के 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज यानी मंगलवार को शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 9:15 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन और फिल्म है ममता।

0: हाँ ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए हकीकत फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। कैफी आजमी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है, कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। किशोर कुमार के स्वर में आइए अब सुने परवाना फिल्म का गीत। नगमा निगार कैफी आजमी, मौसिकार हैं मदन मोहन।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मनपसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

अनपढ़ लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। राजा मेहदी अली खां के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आशा भोसले की आवाज में साहिर लुधियानवी की रचना, तर्ज रोशन की, फिल्म है दिल ही तो है।

0: चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। चित्रपट संगीत आप इसी सभा में 10:30 पर भी सुन सकते हैं। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं महत्तर राम साहू और साथी। आइए श्रोताओं, पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में पहले सुनिए महत्तर लाल साहू और साथियों के स्वर में ये गीत।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए महतर लाल साहू, लेखुराम, सुखीराम और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थे महतरलाल साहू और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने चलाया जा रहा है राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्ति का डिजिटल सटीक रिकॉर्ड तैयार करने के साथ ही भूमि स्वामियों को उनके भूमि और मकान का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राजस्व विभाग ने प्रदेश में कुल 20,551 राजस्व ग्रामों में से 19,805 ग्रामों का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से भूमि संबंधी आपसी विवादों और मुकदमों में कमी आएगी। वहीं किसानों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने, फसल बीमा और शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सुगमता होगी। प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से 31 जुलाई तक धान, मक्का, सोयाबीन सहित 11 अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। मौसम विभाग द्वारा अलनीनो के प्रभाव से अनियमित या कम वर्षा की आशंका जताए जाने के बीच कृषि विभाग ने कहा है कि फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। कृषि विभाग ने किसानों से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना संबंधित विभाग, बैंक, बीमा कंपनी या टोल फ्री नंबर 1-4-4-4-7 पर देने की अपील की है। भारतीय सेना ने आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह परीक्षा 1 से 12 जून तक राज्य के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अपना परिणाम भारतीय सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रायपुर के सूचना पटल पर देख सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण सहित भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। हवलदार और जूनियर कमीशन्ड अधिकारी पदों के लिए भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित की जाएगी। बिलासपुर जिले के सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में 4 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या कर फरार हो गए। ये चारों बाल अपचारी हत्या, दुष्कर्म, चोरी जैसे मामलों में बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध थे। फरार होने के दौरान ये अपचारी बाल संप्रेक्षण गृह में लगा CCTV का DVR भी अपने साथ ले गए। बिलासपुर जिले में बिलासपुर उर्गा के बीच बन रही सड़क पर देर रात हुए हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ढेंका के पास निर्माणाधीन पुल से एक कार करीब 30 फीट नीचे जा गिरी। कार सवार सभी युवक कोरबा से बिलासपुर की ओर आ रहे थे। इस दौरान अरपा नदी पर बन रहे अधूरे पुल से कार हवा में उछलकर नीचे जा गिरी। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को की OMR शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी कर दिए हैं। एजेंसी ने बताया कि उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर लॉग कर इन OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। गृह विभाग ने 3 रिक्त DCP पदों पर ASP तारकेश्वर पटेल, रचना झा और दीपमाला कश्यप की पदस्थापना की है। तारकेश्वर पटेल को सेंट्रल जोन, दीपमाला कश्यप को नॉर्थ जोन और रचना झा को ट्रैफिक और प्रोटोकॉल का DCP बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने चलाया जा रहा है राजस्व ग्राम सर्वेक्षण अभियान। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ की लोक कल्याणकारी सरकार जनहित में लोक सेवा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। यही कारण है कि यहाँ जनता के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए सर्वोपरि है अपने नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करना। इसीलिए शासन द्वारा नित नए संसाधनों को विकसित किया जाता है और उन्हें प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचाया जाता है। हितग्राहियों तक शासकीय सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अपना आधिकारिक पोर्टल सेवा सेतु आरंभ किया है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के नागरिक जन केंद्रित योजनाओं और सेवाओं के लाभ आसानी से निर्धारित समय सीमा में उठा सकते हैं। इससे कागजी कार्यवाही और दफ्तरों के चक्कर लगाने के झंझटों से मुक्ति मिली है। छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं अब सबके लिए सुलभ हो गई हैं।
1: मेरा नाम सुनील कुमार दुर्गम है। मैं ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ स्टेट। सेवा सेतु के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सेवा सेतु एक छत्तीसगढ़ के नागरिकों तक सरकारी डिजिटल सेवाओं को मतलब सरल, सुलभ और पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण पहल किया गया है। इसके माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति और निगरानी कर सकते हैं तथा जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे सेवा वितरण में पारदर्शी, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित होती है। हम ये बोल सकते हैं कि सेवा सेतु पोर्टल को पारदर्शी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी आवेदन, जितने भी आवेदन हमारे सेवा सेतु पोर्टल में आते हैं, सभी आवेदन ऑनलाइन दर्ज किया जाता है, जिसकी रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहती है और आवेदन की वर्तमान स्थिति, एप्लीकेशन स्टेटस और नागरिकों द्वारा ऑनलाइन मतलब देखी जा सकती है, उनका कौन से लेवल में पेंडिंग है और सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा भी तय किया होता है और प्रत्येक आवेदन संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन आवंटित होता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। आवेदन की निरंतर मतलब मॉनिटरिंग जिला स्तर से भी की जाती है ताकि समय पर तरीके से कोई भी आवेदन निराकरण हो सके और आवेदन के निस्तारण का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है, जिससे अनावश्यक हस्ताक्षेप और त्रुटियां की संभावना भी कम होती है और नागरिकों को सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट और समान रूप से उपलब्ध होती है। इसमें लगभग सभी सेवाओं को जो पहले से चले आ रहे हैं और अभी जैसे आई जाति निवास हो गया, अभी रिसेंटली जो सेवाएं चालू हैं जैसे मैरिज, विवाह प्रमाण पत्र ग्रामीण स्तर पर जो नहीं थे उन लोगों को बहुत परेशानी करना पड़ता था ऑफलाइन, क्योंकि माने नहीं कर रहे थे, जैसे आधार कार्ड में नाम परिवर्तन किए जैसे शादी के बाद महिलाओं का। तो जब ये सेवाएं ग्रामीण स्तर पर भी आ गए हैं, सचिवों के माध्यम से जारी होता है, तो ऑनलाइन उनको आवेदक जो भी आवेदन करता है उनको ऑनलाइन ये सर्विस प्राप्त हो जाता है, मतलब सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है। और इसके अलावा अभी जो रिसेंटली चालू है राशन कार्ड में जैसे नाम जोड़ना और नाम हटाना, तो ये भी ग्रामीण स्तर पर ये भी सेवाएं अभी चालू की गई है।

0: शासन द्वारा शुरू किया गया सेवा सेतु पोर्टल एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुशासन पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों की कई सरकारी सेवाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अक्सर आम जनता को जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए जिस परेशानी से जूझना पड़ता था, वे सभी दस्तावेज अब बड़ी आसानी से कम खर्च और सीमित समय में बन रहे हैं। अब आय, जाति, निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र और खसरा भू नकल जैसी सभी प्रमुख सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध हैं।
1: मेरा नाम अनुपेन प्रधान है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिला रायगढ़ से हूँ। मैं सेवा से तो हमारे ऑनलाइन सेवाएं हैं, जिसमें हमारे 400 से अधिक सर्विसेज हम लोग डिलीवर करते हैं। इसमें आय, जाति, निवास से लेकर राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र सेवाएं इसमें है, 400 से अधिक सेवाएं हैं। हमारे सभी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के पास में हमारे चॉइस सेंटर हैं। अब जिस भी आवेदक को उनके आवश्यकता अनुसार उनके प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा या लाइसेंस चाहिए रहेगा, वो हमारे चॉइस सेंटर को जाते हैं और फिर वहाँ से वो एप्लीकेशन अपना चॉइस सेंटर से लेते हैं, या फिर अगर चॉइस सेंटर न चाहें जाना चाहें फिर भी वो नागरिक सेवा पोर्टल है जो स्वयं ही आवेदन कर सकते हैं। इस माध्यम से वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। ये आवेदन सीधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होते हुए संबंधित अधिकारी के पास पहुंचता है और वो लोक सेवा गारंटी के अधिनियम के अधीन इसका निराकरण होता है। निराकरण होने के पश्चात हमारे जो आवेदक हैं उनके मोबाइल नंबर पर यह मैसेज चला जाता है, आपका आवेदन स्वीकार्य है और उनका सर्टिफिकेट या लाइसेंस उनको जारी हो जाता है, जिससे उनको कहीं किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सिंगल विंडो पर जाने नहीं पड़ती। वो खुद अपने घर में बैठकर या अपने वॉकिंग डिस्टेंस अपने पास में किसी भी चॉइस सेंटर में अपना आवेदन वो कर सकते हैं और करने के साथ ही उनका जो ट्रेकिंग नंबर होता है उससे वो ट्रेक कर सकते हैं कि उनका आवेदन कहाँ पे किस ऑफिस में वो अभी लंबित है, तथा वो जो आवेदन है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी इसका समीक्षा होता है कि वो आवेदन लोक सेवा गारंटी का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ यहाँ से भी मॉनिटरिंग हमारे टीएल जो वीकली टीएल रिव्यू मीटिंग होता है इसमें रिव्यू होता है, जिससे हमारे आवेदक हैं उनको सही समय पर उनको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इसमें आपका नगरीय निकाय के हैं, आपके आपके ग्राम पंचायत के विवाह प्रमाण पत्र हैं, राशन कार्ड है और आपके तहसील से जो राजस्व से हैं, आपके आय, जाति, निवास हैं और ई कोर्ट के भी सर्विसेज हैं, समानता नामांतरण के भी सर्विसेज हैं। इसमें हमारे 400 से अधिक सेवाएं इसमें चल रही है। इसमें फॉरेस्ट की भी सेवाएं हैं, हमारे कल्चरल डिपार्टमेंट की भी सेवाएं हैं, SSG खादी ग्रामोद्योग की भी सेवाएं हैं। इसमें ऑनलाइन दो तरीके से होते हैं, एक आवेदक जो है वो स्वयं कर सकता है या तो वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने चैटबोर्ड के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। अब चैटबोर्ड का भी हमारे सेवा सेतु में फीचर है, चैटबोर्ड से भी आवेदन कर सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से। दूसरा वो पोर्टल में वो स्वयं अपना लॉगिन आईडी बना सकता है, सिटीजन लॉगिन के माध्यम से खुद लॉगिन करके उसमें आवेदन कर सकता है। तीसरा अगर आवेदक को किसी की जरूरत पड़ती है तो वो हो सकता है कि वो मैं अपना कंप्यूटर के जानकार नहीं हूँ या मोबाइल से जानकार नहीं हूँ ऐसा सोचता है, तो वो हमारे निकटतम ग्राम पंचायत के पास में हमारे जो चॉइस सेंटर होते हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है, प्रशिक्षण दिया हुआ है, उनका हेल्प लेकर उनके माध्यम से वो आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने का शुल्क मात्र 30 रुपया होता है, तो वो उनके माध्यम से वो आवेदन करते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रशासनिक सेवाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी और जन सुलभ बनाने की दिशा में सेवा सेतु पोर्टल को आम जनता के लिए मुहैया कराया है।

0: डिजिटल सुशासन की अभिनव पहल के तहत प्रदेश के नागरिकों को 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत स्तर तक इन डिजिटल सेवाओं को पहुंचाया जाए ताकि नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें।
1: मैं आशीष स्वर्णकर, सहायक प्रबंधक, जिला कलेक्ट्रेट, जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। सेवा सेतु परियोजना शासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और एक महत्वपूर्ण सेवाएं है, जिसमें वर्तमान में पूर्व में 80 से 82 प्रकार की सेवाएं ही आम आदमियों को प्रदान की जा रही थी। इसको अभी फिर से रिवाइज करके इसमें लगभग 440 प्रकार की बहुत सारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। मुख्य रूप से इसमें जो ग्रामीण स्तर पर होने वाले विवाह प्रमाण पत्र, नजुल पट्टा, नामांकन, हौती नामांतरण, इस टाइप की जो और पंचायत स्तर की, जैसे नल कनेक्शन के लिए हो गया, साफ सफाई के लिए हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें राशन कार्ड परियोजना। राशन कार्ड के अंतर्गत जो आम आदमी जो होता था, उन्हें पहले पंचायत स्तर पर मैनुअली आवेदन करना पड़ता था, फिर विभिन्न प्रकार के ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे। उन सब चीजों से हितग्राहियों को फायदा मिला है। राशन कार्ड APL BPL, नाम परिवर्तन करना, जोड़ना, संशोधित करना, नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना, ये सारी सेवाएं आज सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आम लोगों को प्रदान की जा रही है। और इस चीज का व्यापक प्रचार प्रसार भी शासन के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस परियोजना में विशेष ध्यान देते हुए अत्यधिक अनेक प्रकार के विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। इसका पूरा पूरा लाभ आम आदमी को मिलना चालू हो चुका है। लोग नित प्रतिदिन इसका उपयोग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सेवा सेतु परियोजना सिर्फ और सिर्फ सरकारी ऑफिस तक सीमित न रहकर ग्राम गांव गांव में जो CSC या कॉमन सर्विस सेंटर है उसके माध्यम से प्रदाय की जा रही है और इसका वृहद पैमाने पर लोग उपयोग कर रहे हैं। यह एक ऐसी सुविधा है, यदि कोई कंप्यूटर का जानकार है तो स्वयं नागरिक अपने स्वयं के नागरिक पोर्टल से भी इन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। और यदि हितग्राही पढ़ा लिखा नहीं है तो नजदीकी सामान्य सेवा या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से इसमें आवेदन किया जा रहा है और लगातार आवेदन हमको प्राप्त हो रहे हैं। राजनांदगांव में भी अनेक हितग्राहियों के द्वारा इसका लाभ लिया गया। विशेष रूप से अभी जो मई और जून में जो विवाह का सत्र चलता है, सीजन चलता है, उसमें कई आवेदकों के द्वारा अपना विवाह किया गया। संबंधित पंचायत में ऑनलाइन करने के बाद उनका ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र संबंधित सचिव के द्वारा जारी किया जा चुका है। इसी प्रकार राशन कार्ड के लिए भी अब आवेदन आने प्रारंभ हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार जनता के बहुत ही नजदीक पहुंच रही है और उनके घर तक पहुंच रही है। और जिस प्रकार की इनकी सोच रहती कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस सेवा का लाभ पहुंचाया जाए, तो यह सेवा का लाभ पहुंचाया जा रहा है और इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है आम लोगों के द्वारा। छत्तीसगढ़ में इस सेवा के प्रारंभ किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को भी धन्यवाद और हम एक कर्मचारी की हैसियत से यहाँ पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक हितग्राही और सभी को इस चीज का प्रॉपर नॉलेज देते हैं। और आज ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना से या लोक सेवा केंद्र से इसका नाम हटाकर सेवा सेतु परियोजना कर भी दिया गया है और यह एक बहुत अच्छी सुविधा है जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं।

0: छत्तीसगढ़ सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से जरूरी प्रमाण पत्र और पंजीयन जैसी सुविधाएं तो आसान हुई ही हैं, साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े आवेदनों की प्रक्रिया और श्रम एवं राजस्व विभाग की सेवाएं भी जनसुलभ हो गई हैं। सेवा सेतु के आ जाने से अब नागरिकों को अलग अलग सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सारी सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन जो हो गई हैं।
1: मेरा नाम शांतनु शुक्ला है, मैं जिला कोंडा गांव में जिला प्रबंधक हूं और सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से समस्त नागरिकों को लगभग 400 से अधिक सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं उनके लोक सेवा गारंटी अंतर्गत की जो सेवाएं हैं उसको आवेदन कर सकते हैं सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से। तो इसके लिए उनको पोर्टल ओपन करके जो भी सेवाएं हैं उनको सारी लिस्ट है सेवाओं की, उनमें वो सर्च के ऑप्शन से खोज भी सकते हैं किसी स्पेशल सेवा को अगर खोजना चाहे तो, या फिर सारी सेवाओं की लिस्ट देख सकते हैं उसमें सेवाओं से संबंधित क्या विवरण है, क्या क्राइटेरिया होता है, उन सब सेवाओं के बारे में सहायक दस्तावेज क्या लगाने चाहिए, कैसे फॉर्म भरना चाहिए, उन सब के बारे में जानकारी दिया गया है। तो उसको पढ़ के वो अप्लाई कर सकते हैं, खुद से आईडी बना के खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं चाहे तो, या उनको लोक सेवा केंद्र के माध्यम से या किसी सेवा सेतु मैनेजर के संपर्क करना चाहें तो उससे भी संपर्क करके वो आवेदन डाल सकते हैं। आवेदन डालने के बाद क्या है, फिर संबंधित विभाग की वेबसाइट में वो उनके आईडी में वो आवेदन प्रदर्शित होता है और उसके निराकरण की स्थिति को देखने के लिए वो आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं पोर्टल के माध्यम से कि किस स्थिति में है उनका आवेदन, कि भाई अभी अगर तहसील में आवेदन किए हैं तो तहसील में भी अग्रसित हो गया है, कि अगर कुछ समस्या होगी तो उनको आईडी में वापस भी होता है वो कि भाई ये कुछ आपत्ति होती है तो उसका निराकरण करके भी दोबारा आवेदन प्रेषित किया जा सकता है। और अगर सर्टिफिकेट अगर उनका बन गया है, आवेदन अगर अनुमोदित हो जाता है तो उस आवेदन संख्या के माध्यम से वो अपना डिजिटली सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं जिसको कि वो अपने अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुविधा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

0: छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सेवा सेतु ने पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए नागरिकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन मुहैया कराया है। पहले प्रमाण पत्र बनवाने जैसी मूलभूत सेवाओं में श्रम, समय और आर्थिक संसाधनों की काफी खपत होती थी, लेकिन सेवा सेतु के आ जाने से अब कई मुश्किलें आसान हो गई हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सेवा सेतु इसी अधिकार को व्यावहारिक रूप से मजबूत कर रहा है।
1: मेरा नाम देवेश कुमार सिंह है, जिला कबीरधाम से, ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। तो जैसे अभी मान के चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ग्राम पंचायत विवाह प्रमाण पत्र, तो उसमें क्या सिस्टम हो गया है, पहले क्या है जो जारी होता था?

0: विवाह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत स्तर पे वो ऑफलाइन रहता था। तो ऑफलाइन रहने के कारण क्या हो रहा था कि एक तो कई लोग मिसप्लेस कर ले रहे थे, दूसरा उनको अगर जैसे शादी के बाद लड़की को अपना नाम चेंज करवाना तो वो ऑफलाइन वाला वेरीफाई नहीं हो पा रहा था यूआईडीआई से, तो वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। तो फिर इसको जैसे ही सेवा सेतु में ये चालू हुआ, अब वो ऑनलाइन सर्विस हो गया, उसमें क्यूआर कोड भी जनरेट हो गया। तो अब जैसे मेरे को अपना चाहिए विवाह प्रमाण पत्र, मैं उसको ऑनलाइन अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन इसमें पेमेंट का भी सिस्टम है, जैसे अगर मैं एज अ नागरिक लॉग इन करूंगा तो नागरिक लॉग इन करके फॉर्म भरूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो डालूंगा, ऑनलाइन चालान जो होगा अगर मैं लेट है, अगर 1 साल 2 साल बाद बनवा रहा हूँ तो 500 रुपए का चालान पटा दूंगा ऑनलाइन। उसके बाद वो पेमेंट होके डायरेक्ट सचिव की आईडी में चला जाता है, सचिव क्या करता है उसको वेरीफाई करके तुरंत जारी कर देता है। तो अब वो एक डिजिटली हो गया है, मेरा घूमेगा नहीं, अगर मिसप्लेस भी हो जाएगा तो मैं पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर डाल के निकाल सकता हूँ। अब वो डिजिटली हुआ तो उसमें क्यूआर कोड भी है, लड़की को अपना नाम चेंज करवाना है अगर आधार कार्ड में सरनेम, तो उसके बेस पे उसको अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद आधार वेरीफाई करेगा क्यूआर कोड के थ्रू, अब वो जारी हो जाता है। तो जैसे एक एक साथ दो दो सर्विस इजिली अवेलेबल हो गई है। सर्विस में तो बहुत सारी सर्विस है, आय है, जाति है, निवास है, विवाह प्रमाण पत्र है, आपका गुमास्ता लाइसेंस है,
1: जी
0: पेंशन की सर्विसेज है, तो जो भी ये तो मैं अभी जो रिसेंटली अभी राशन कार्ड भी सर्विस ऐड हो गया है, तो जो नया राशन कार्ड बनाना हो गया, राशन कार्ड में नाम जोड़ना हो गया, राशन कार्ड में नाम हटवाना हो गया, ये भी सर्विस चालू हो गई है। भूमि मतलब क्या भूया पोर्टल में चलता है वो भी ऑनलाइन है, लेकिन वो सेवा सेतु से अभी लिंक कर रहे हैं उसको भी, तो जैसे वो लिंक हो जाएगा ना, जैसे बाकी रीडायरेक्ट सर्विस ऐड हुए हैं तो वो भी प्रोसेस में आ जाएगा।

सेवा सेतु एक डिजिटल पोर्टल नहीं बल्कि शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने वाला एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनी है। छत्तीसगढ़ वासी सेवा सेतु पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करके डिजिटल सेवाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और सुशासन की पारदर्शी और सरल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहभागी बन रहे हैं। राज्य शासन की ये पहल केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का भी संकेत है। छत्तीसगढ़ में प्रशासन और जनता के बीच की मजबूत कड़ी है सेवा सेतु। इस सरल और सुगम सेतु पर अपने कदम रखकर प्रशासन और नागरिक अब एक साथ बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए, पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में, रचना इरशाद कामिल की, संगीत युवान शंकर का, फिल्म है राजा नटवरलाल।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है।
3: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए
4: कहिए कहिए

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यंगिस्तान। लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाज अरिजीत सिंह की। गीत के बोल लिखे हैं कौसर मुनीर ने, तर्ज जीत गांगुली की है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में यंगिस्तान फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार कौसर मुनीर और संगीतकार थे जीत गांगुली। श्रोताओं, अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। शनिवार 18 जुलाई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 15 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स इस प्रकार हैं: 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूले। हमें आपके फोन कॉल्स का

श्रोताओं, ये है मर्डर 3 फिल्म का गीत, आवाज़ शफ़ाकत अमानत अली खान की, बोल सईद कादरी के और संगीत प्रीतम का है।

शफाकत अमानत अली की आवाज़ में अभी आपने सुना मर्डर 3 फिल्म का गीत। गीतकार सईद कादरी, संगीतकार थे प्रीतम। लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आतिफ असलम को, रचना दिनेश प्रिया की, संगीत सचिन जिगर का। फिल्म है बदलापुर।

इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। वियतनाम के फोक वोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन सिटी से मुंबई लाए गए। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अब भी लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2,00,000 रूपये और घायलों को 50-50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। झारखंड में लातेहार जिला पुलिस प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के क्षेत्रीय कमांडर रविंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। नक्सली रविंद्र गंजू पर 20,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार गंजू 22 नवंबर 2019 को चंदवा के लुकुया मोड़ के पास पुलिस दल पर हुए माओवादी हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रिक्वेंसी

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह गान शिक्षा का कार्यक्रम। आज इसमें आप सुनेंगे उड़िया भाषा के गीत। बोल है केऊ बियामा धारी। रचनाकार हैं के सी पाणिग्रही।

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा, सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
1: श्री
0: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: क्यों नाम धरी,
1: क्यों नाम धरी,
2: डाकी भी तुमको,
1: डाकी भी तुमको,
2: तुमे जे सर्वनाम,
1: तुमे जे सर्वनाम,
2: क्यों
1: नाम धरी,
2: डाकी भी तुमको,
1: डाकी भी तुमको,
2: तुमे जे सर्वनाम,
1: तुमे जे सर्वनाम।
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
2: आलोक
1: तुमको
2: नपारे
1: देखाई तुमे जे देखाओ ताहरे आलोक तुमको नपारे देखाई
2: तुमे जे देखाओ ताहरे
1: तुमे जे देखाओ ताहरे
2: तुमे जे बेढ़ी च
1: कोटि विश्वर सबुरी भितरे बाहरे तुमे जे बेढ़ी च कोटि विश्वर सबुरी भितरे बाहरे।
0: ये हुआ पहला अंतरा। अब दूसरा अंतरा।
2: लुहा होई तुमे झरी पड़ा परा
1: झरी पड़ा परा
2: केते नयनर कोणरु
1: केते नयनर कोणरु लुहा होई तुमे झरी पड़ा परा केते नयनर कोणरु हस होई पुणी फुला परी फुटा केते जे नरम अधरु हस होई पुणी फुला परी फुट
2: केते जे नरम अधरु
1: केऊ नाम धरी डाकी भी तुमकु तुमे जे सर्वनाम।
0: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।
2: एक दुई।
0: अब हम गाना सीखेंगे।
2: One, two, three, four.

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: समूहगान शिक्षा में अभी आप सुन रहे थे उड़िया भाषा के गीत। रचनाकार थे केसी पाणिग्रही। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

समूह स्वर में भीष्म सिंह की रचना अभी आपने सुनी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए के परेश के स्वर में ये पारंपरिक रचना।

के परेश के स्वर में ये पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, प्रेम कहानी। आइए श्रोताओं, अब सुने इस फिल्म का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

देख सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण सहित भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। हवलदार और जूनियर कमीशन्ड अधिकारी पदों के लिए भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 नवंबर को आयोजित होने जा रहे राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह के दौरान डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में कृषकों से 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संयुक्त संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक कृषक जो खेती में नवाचार, जैविक कृषि, उत्पादन में वृद्धि, कृषि यांत्रिकरण या जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं, वे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। कल 13 जुलाई को प्रयागराज संगम में पद्म विभूषण डॉ. तीजनबाई के पुत्र दिलहरण पारधी ने उनकी अस्थियों का विसर्जन किया। इस दौरान उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के उपनिदेशक डॉ. मुकेश उपाध्याय और अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में तीजनबाई के लिए फ्रांस और जर्मनी से भेजे गए शोक संदेश का पाठन भी किया गया। वहीं आज गनियारी में विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बिलासपुर जिले के सरकंडा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में 4 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या कर फरार हो गए हैं। ये चारों बाल अपचारी हत्या, दुष्कर्म, चोरी जैसे मामलों में बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध थे। फरार होने के दौरान ये अपचारी बाल संप्रेक्षण गृह में लगा सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। वन्य जीव संरक्षण और वन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम ट्रायल शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत 70 से 80 फीट ऊंचे टावरों पर पीयर टू पीयर मॉड्यूल और AI कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसकी मदद से दूरस्थ और दुर्गम वन क्षेत्रों में वन्य जीवों और संदिग्ध गतिविधियों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे ही प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ाबम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके

0: बारे में कई रोचक बातों को जाना था।
1: अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
2: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
1: जी।
2: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही हैं।
1: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
2: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
1: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
2: जी हाँ श्रोताओं, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है।
1: जी,
2: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
1: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
2: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
1: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
2: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
1: जी,
2: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
1: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
2: जी,
1: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
2: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
1: जी,
2: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
1: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
2: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
1: जी,
2: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
1: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
2: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
1: जी,
2: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
1: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
2: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
2: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
2: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
5: धन्यवाद सर।
3: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
6: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
4: यस मैम।
6: वाह, क्या बात है
7: मैम।
6: हाँ बेटी,
7: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
6: बिल्कुल कहा।
7: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
6: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
7: जी, पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
6: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
4: यस मैम।
6: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
4: अच्छा।
6: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
4: अच्छा।
6: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
4: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
6: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
8: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
6: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
4: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
6: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम,
7: हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
6: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
8: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
6: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
4: सॉइल इरोजन,
6: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
6: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
5: जी मैम।
7: यस मैम।
6: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली

0: न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान, दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
6: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
7: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमि

0: पत्रिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
1: जंगल के साथी।
2: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
3: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ एक हिरन।
1: शाबाश।

0: भी वही साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
1: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों, क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना? क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?

0: शेर, चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर
0: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
1: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आप मन के गीत।

आप उनके गीत कार्यक्रम सुनैया जब मौसंगवारी मल्ला प्रीति के जय जोहार संगी होए दे फिर आगे हैं आप मन के पठोए ईमेल औ पाती संग ता कार्यक्रम के शुरुआत करथन विजय जांगड़े औ रूपवंती बघेल के गाए गीत ले औ ए गीत बर पाती पठोई हवाई हमर ए संगी बन भांटापारा ले राधे श्याम औ जितेंद्र साहू पावर हाउस भिलाई जामुल ले विकास वर्मा खुशी वर्मा ग्रंथ वर्मा संजय प्रधान रामनगर रायपुर ले हवें राजेश अंबादे शशिकला अंबादे पूजा अंबादे कोरदा लवन ले भूधर प्रसाद वर्मा घनश्याम प्रसाद वर्मा गुलशन कुमार वर्मा और शिव कुमारी वर्मा भरी टोला डोंडी बालोद ले हवें नमित कुमार गौतम पीहू नीतू और मुरली गौतम बंगला मटिया बालोद ले शिव कुमार अंगारे अंजनी औ त्रयंबिका औ इही गीत बर ईमेल भेजैया संगी हवें पथरिया दुर्ग ले बलदाव साहू एवन साहू कन्नेवाड़ा ले देवेंद्र सोनवानी आशीष टेमरे राहुल साहू वेद प्रकाश करही भदर ले पुरुषोत्तम निर्मलकर श्रद्धा निर्मलकर गीतिका औ लोचन विद्यार्थी हजदा नंबर दो ले हवें कमलेश साहू जितेंद्र साहू पायल साहू मड़ौदा राजनांदगांव ले पारकदास साहू किरण रेशमा औ गुनीता साहू सलोनी घूमका ले देवचरण साहू हेमा वेदांत औ वैभव साहू कोल्हापुरी दुर्ग ले सूरजभान साहू कमलाबाई साहू मेघापारा चिल्फी ले रामकुशल पटेल संतोषी पटेल दीपांशु पटेल औ दिव्या पटेल रोहासी पलारी ले श्याम साहू युवराज साहू हिच्छा महासमुंद ले अदालत दास वैष्णव मानस दास शांति वैष्णव रिचा औ गायत्री वैष्णव भानपुरी मुसरा ले आत्माराम यादव सुखदेव विदेशी औ होमेश्वर।

कार्यक्रममा अब आप मलाई सुनवाथन श्यामदास मानिकपुरी और संगी मन के गाए गीत अब गीत बर पाती भेजे हमें पटपट डोंगरगढ़ ले राम गोपाल ध्रुव नरेंद्र कुमार ध्रुव कविता और जयंती ध्रुव अमली पदर देव भोग ले हमें निकुंज तिवारी लाची तिवारी ममता तिवारी धवलपुर गरियाबंद ले हमें गेंदलाल मिश्रा चंद्रकांति प्रतीक्षा और अर्चना मिश्रा भांटापारा ले नारायण यदु पुनिया यदु राकेश यदु गंडई पंडरिया ले दरियाना मल अनीता मोटवानी राजेश औ मुकेश मोटवानी नागपुर ले हमें अशोक कुमार सावलानी भांटापारा ले राम कुमार राउत अमरीका राउत गणेश राउत औ कार्तिक राउत भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले हमें रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन औ डिम्पल देवांगन औ यही गीत बार ईमेल भेजे हमें तखतपुर ले मिश्रलाल विश्वकर्मा मीरा देवी खैरागढ़ राज लालपुर ले मोतीलाल भीमटे सुशीला भीमटे मेघा औ नेहा भीमटे माटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेन्द्र साहू दुष्यंत साहू औ राघवेंद्र साहू रिंगनी ले हमें दिनेश वर्मा करुणा वर्मा पुराना भिलाई तीन चरोदा ले नौशाद अहमद सिद्दीकी हमीदुन सिद्दीकी बनियापारा धमतरी ले रामचंद माखीजा सविता माखीजा स्वाति माखीजा अवमाही सुंदरपारा रोहासी ले हमें डगीसर राम साहू गौरव साहू घनश्याम साहू नूतन साहू औ अलका साहू देवरी भांटापारा ले कन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री पथरिया भरेवा ले चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल नोमेश सिंगरौल औ नेहा सिंगरौल लोहारी डी कवर्धा ले हवें अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी साहू खुशांत साहू औ निशांत साहू भांटापारा ले विष्णु साहू पूरब साहू वीरा साहू औ हर्ष साहू पोटियाकला दुर्ग ले संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू औ सीमा साहू खल्लारी भीम खोज ले जी एल साहू सरोज साहू छोटी औ पिंकी सिवनी खुर्द रेंगा खाल ले मनशाराम पटेल बुधियाबाई पटेल भानु प्रताप पटेल औ पायल पटेल।

गए थे छत्तीसगढ़ माँ भुइयां के भगवान भैया भुइयां के भगवान भुइयां के भगवान भैया भुइयां के भगवान सबला भरोसा है तोरी ऊपर।

कार्यक्रम आप मन के गीत आप मन सुनत हो आकाशवाणी के रायपुर और सरायपल्ली केन्द्र ले कार्यक्रम में अब मा पलमला सुनवाथन डीमन सेन और मेरी नंद के स्वर में ये गीत जिला सुने बर पाती भेजे हमें धरसीमा ले छेदूलाल यादव सीता यादव अर्चना और अरुणा यादव दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक और अलका यादव सिमगा ले सविता जैन प्रदीप जैन मोनिका जैन और देवेंद्र जैन दरचूरा ले हवें फिरंता साहू दुलौरिन साहू कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू मगरलोड ले पुनू राम साहू तेजेश्वरी साहू राजश्री और राजवीर साहू पटपर भाटा पारा ले मोतीलाल पटपरिहा संतोष कुमार यादव मुंडुल यादव धुरा बांधा ले हमें प्रमोद साहू देव कुमार साहू नवीन कुमार साहू और युवराज साहू बेमितरा ले भरतलाल सिन्हा लव कुमार और लक्की सिन्हा और यही गीत बर ईमेल भेजैया संगी हमें दतरेंगी भाटा पारा ले हीरा मणि वर्मा पारस मणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा पलारी ले प्रकाश वर्मा प्रिंस वर्मा निखिल वर्मा यशस्वी वर्मा सुंदरनगर बिलाईगढ़ ले जगदीश देवांगन पुष्पांजलि देवांगन जया और जाह्नवी पारा अहिवारा ले पोषण बंछोर चंद्रकिरण बंछोर प्रीति औ छाया बंछोर चिरमिरी कुरासिया कालरी ले इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर भाटापारा ले बचकामल मोतीलाल यादव बसंत भृगु औ विनय कुमार ठाकुर बिनौरी फिंगेश्वर ले टीकम राम साहू राम अवतार यादव रसेड़ा ले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश कुमार संध्या साहू यवतमाल विदर्भ ले हमें संतोष खड़से विनोद खड़से पलारी ले नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग और पुनाराम देवांगन पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता भाटापारा ले दान सिंह रावत पद्मिनी रावत शुभम और सौरभ रावत अडार नानघाट ले हमें माखन वर्मा चांदी वर्मा राहुल और भूपेश वर्मा अम्बागढ़ चौकी ले रिजवान खान आयशा सबीहा अनस और रेहान भाटापारा ले शीला यादव गुनगुन यादव अदिति यादव और खुशी यादव बम्बूडी बावनकेरा ले डिगेश महिलांग रमाकांत चंद्रकांत महिलांग पथरिया भरेवा ले चंदुलाल सिंह रौल नारायणी सिंह रौल नोमेश और नेहा सिंह रौल सोंगामगर लोड ले फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी चंदन मोहित कुमार चंदन और देविका रानी चंदन लोरमी तिलकपुर ले चंद कुमार मरावी चंद्रेश कुमार मरावी मालती मरावी मयंक मरावी बागबहरा भदरसी ले पन्नालाल सेन खुशबू सेन तारा सेन कौशल सेन धरदेई सरगांव ले चंदूलाल पटवा सुनीता पटवा हर्ष कुमार पटवा विनीत कुमार पटवा बलेसर महासमुंद ले बलराम सेन इंदु सेन छगन सिन्हा द्वारिका सिन्हा आप सबके फरमाइश मां आप मल्ला सुनवाथन ये गीत

कार्यक्रम के आखिरी गीत परसराम राकेश और संगी मन के स्वरमा और जिला सुने पर पाती पठवई हवई कोटा रायपुर ले योगिता वर्मा रुचि वर्मा खुशी वर्मा और ओजल वर्मा सिमगा ले हवें रमेश कुमार यादव माया यादव रिंकू सन्नी और कोमल यादव बुड़गहन ले राम दुलारी प्रजापति राम शरण प्रजापति चंद्रेश कुमार प्रजापति चंद्रकला प्रजापति अहिवारा ले हवें डबल कुमार धीवर डब्बू धीवर जतिन और हेमनराज कटोरा तालाब रायपुर ले मोहनलाल देवांगन प्रभा देवी देवांगन बंदा कोरबा ले सम्मीलाल कुर्रे सावित्री देवी कुर्रे सरकबुंदिया ले गब्बर साहू और निर्मला देवी साहू डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका गजभिये अनिष्का और तन्मय गजभिये सिमगा ले हवें लवकुश तेन प्रहलाद सेन आदित्य और आशीष शांतिनगर भाटापाला ले हवें रमजान खान सिकंदर अशरफ खान नासिर खान और अयाज खान और यही गीत पर ईमेल भेजे हमें सहजपुर लोहारा ले छुटकू साहू मोहित राम साहू लोकेश साहू और राम किशन साहू ददरेंगी ले भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा लच्छनपुर ले रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम और सतीश साहू कोहका भिलई ले उत्तम सिंह जंघेल मोरज जंघेल अनिल कुमार अजीत कुमार पीपरपारा पालजुआ मुंगेली ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी दिवाकर भानुप्रिया दिवाकर और योगिता दिवाकर कन्या बालाघाट ले हमें अखिलेश कुमार यादव ज्योति यादव अंकित यादव और श्रद्धा यादव कोयलारी कवर्धा ले कैलाश चंद्राकर मुकुंद चंद्राकर पुणेन्द्र चंद्राकर और साहिल चंद्राकर लोरमी करुहा नार ले गोमती रजक काजल रजक भांटापारा ले हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू और चंपा साहू सेहा मालगी ले सुखरंदन चंद्रवंशी शिवरानी चंद्रवंशी आकाश और प्रतिभा चंद्रवंशी बागामुड़ा कोमा खान ले प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी देवांगन प्रकाश देवांगन और गायत्री देवांगन।

यही गीत संग सिरावत है आज के आप मन के गीत कार्यक्रम ए कार्यक्रम में जब मुसुघर गीत ला जोड़े रहन बीर भान साहू तब कार्यक्रम ले बिता देव प्रीतिला जय जोहार।

आप मन के गीत ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है, आइए समाचार सुनें।

0: 20 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: उन्होंने कहा कि 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई स्पीडबोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें 1 नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में 1 भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं बेनी दयाल और सायुनारा की आवाजों में। गीत अब्बास टायर वाला कहे, संगीत यार रहमान का, फिल्म है जानी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम का अगला गीत टू स्टेट्स फिल्म से, आवाज़ बेनी दयाल और साथियों की गीत।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। शनिवार 18 जुलाई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन एंड फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार यानी कल 15 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स इस प्रकार हैं: 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से। कार्यक्रम का अगला गीत हीरोपंती फिल्म से, आवाजें अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की, गीत कौसर मुनीर का, संगीत है साजिद वाजिद का।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कार्यक्रम फेफरेंड।

आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे आज रात 8:30 पर। अब से थोड़ी ही देर बाद 1:30 पर होगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। इसमें आज के गोठ में होगी चर्चा हमर संस्कृति माँ जगन्नाथ रथ यात्रा और होगी पुष्पा शर्मा की वार्ता परिवार टूटे के कारण। साथ ही पढ़ी जाएंगी बहनी मन की चिट्ठी और होगा गीत संगीत।

संध्याकालीन सभा में 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:10 पर। इसमें अपन कोट में आज होगी चर्चा गांव लघलो जरूरत है प्रतिभा के और होंगे क्रम सवाल जवाब और माटी के गीत। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान होगा शाम 6:30 पर। किसानों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात होगी हरियाली ले रोजगार पावन मानसून मा नर्सरी लगावन। साथ ही 7:30 पर किसानवाणी में सुनिएगा फॉरेन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। इसमें सुनेंगे नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगी मनीषा खापड़े कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे महित्तराम साहू और साथी।

आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोकसुधा में आज रात 9:30 पर सुनिएगा हल्बी गीत। कलाकार होंगे सहदेव कश्यप और साथी।

श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अपनी पसंद प्रसारित होगा आज रात 10 बजे। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा रूप कुमार सोनी का सितार पर बजाया राग कौसी कान्हड़ा।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुई हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम घर आंगन।

आगे हवय असाड़ गिरत रझारस पानी, किसिम किसिम के नार लमेरा पिके फूटे आनी बानी, हरियर हरियर टी डोंगर प्रकृति मया बगरावय, नजर जिहाँ तक जाए धरा बस्थानी लागय, धरा बस्थानी लागय। यही भाव संग घर आंगन सुनैया जम मो बहनी मल्ला संगीता वर्मा के राम राम। बहनी हो, असाड़ के घनघोर बदरा उमड़ घुमड़ के छावा थे, रिम झिम फुहार ले खेत खार हरियावा थे, किसान के चेहरा में मुस्कान झलका थे और मेज का झिंगरा मन आरो देवा थे। और यही पावन बेरा माँ जब प्रकृति अपन सुघरे बगरावा थे, भगवान जगन्नाथ रथ में सवार होके जैसन धरती दाई के सुघरे और अपन भक्त मन के उल्लास देखे बर निकल थे, पूरा वातावरण भक्तिमय जय जगन्नाथ के जयकार ले पूरा वातावरण गुंज उठते। हाँ बहनी हो, काली के आड़े है तहाँ पढ़ने दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल ही, जेखर तैयारी जोर शोर से ले चलत है। और ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर न है, बल्कि ये हमार संस्कृति आस्था एकता और लोक जीवन के बड़ सुघर उत्सव है। ऐसे पौराणिक मान्यता है कि एक दिन देवी सुभद्रा द्वारिका घूमे के इच्छा जतेस, तो उनकर बड़े भैया बलभद्र और भगवान जगन्नाथ अपन बहनी सुभद्रा संग अलग अलग रथ में बैठ के भ्रमण करे बर निकलेस और अपन मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर गेन, जिहां बड़ अवभगत संग 7 दिन रहें। और यही प्रसंगला सुरता करत हर साल अषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के दूस तिथि में बड़ भव्य रूप में रथ यात्रा निकाले जाते। बहनी हो, और एखर यही संदेश है कि भगवान घलो अपन भगत के बीच आके सबके सुख दुख में सहभागी बनते, रथला हजारों भक्त के हाथ मिलके खींचते। ये देख के मन में एक ही बात उठते कि जब सबो के हाथ जुड़ जाते तब बड़े बड़े काम तको सरल हो जाते। महाप्रसाद के रूप में मूंग उचना के गजा मूंग के प्रसाद बांटे जाते, ये दिन ला बड़ शुभ माने जाते, जगह जगह पूजा पाठ होते, कई झिन मन यही दिन ले अपन नवा काम की शुरुआत तको करते, कई जगह मेला भराए रहते। बहनी हो, हमार संस्कृति के असली सुघरे यही आए कि हर परब मन खिला मन खिले जोड़ते और हर परब में कहीं ना कहीं संदेश लुकाए रही थे। ये परब हमला ऊंच नीच के भेद मिटा के सेवा अपनापन और भाई चारा के संग रहे के पाठ पढ़ो थे। और यू बात है बहनी हो, हम अपन संस्कृति परंपरा के निर्वाह करबो तभी तो अपन पीढ़ी दर पीढ़ी ये पहुंची है ना।

0: जोन गीत आप मन सुनत रहे तेन ला स्वर दे रही भगत साहू और ओखर संगवारी। बहनी हो, सुख हो या दुख, परिवार हमार सबले बड़े सहारा है। अपन परिवार संग रहना, एक दूसरे के सम्मान करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना, यही परिवार के असली पहचान है। और जब ये बंधन कमजोर होते तो सिर्फ मन नहीं टूटे और घर तक को टूट जाते। परिवार टूटे के और का कारण हो सकत है, यही विषय में आज हमन वार्ता सुनबो। क्रम वार्ता में और विषय है परिवार टूटे के कारण। वार्ताकार बहनी है श्रीमती पुष्पा शर्मा।
1: बहनी हो, आज हमन बात करबो हमार समाज में घर परिवार के टूटे के का कारण है और उपाय। बहनी हो, आजकल देखे सुने में आते कि हमार समाज परिवार में तलाक के मामला बहुत बढ़त जावत है और साथ में घला परिवार तको टूटा जावत है। जौन बहुत दुख के बात है कि जे समाज परिवार में बिहावला जन्म जन्म के रिश्ता मानते उही समाज में दिनों दिन तलाक के मामला बढ़त जाते और परिवार मन टूटा जाते। एकर का कारण हो सकत है, एकर बारे में आज हमन चर्चा करबो। घर परिवार समाज के लइका मन अपन महतारी बाप गुरुजी अपन उम्र के संगी साथी मन ले जीवन के माया प्रेम संस्कार ला सीखते। फिर ये बात के भी जरूरत है कि ओ मन ला लइकापन से ही जिंदगी जिए के सही ढंग ला सिखाए जाए बताए जाए। लड़कपन में लइका मन जौन चीज ला सीखते उही ओकर जिंदगी भर साथ रही थे। हम अपन आपला पूछन कि आजकल समाज के जौन हाल है ओकर जिम्मेदार कौन है। बोलचाल मा आज समाज मा जिन बदलाव है तेकर कारण का है। बहनी हो, आजकल जौन बदलाव आए है समाज मा तेन हा सही बदलाव है, ओकर बाद भी परेशान कावर है आजकल के मनखे मन। आवो बहनी हो, एक बार अपन मन के अंतस मा झांकन। मोर मानना है कि ये जेन प्रश्न है तेकर जवाब हमी मनला निकाले पढ़ी। बहनी हो, अपन अंतस मा झांके बर पढ़ी, काबर की समाज परिवार हा ये हाल के हमन खुद जिम्मेदार हावन। एक दूसर ले आगे बढ़े के फोकट के दिखावा मा हमन सिर्फ अपन स्वार्थ भरे जिंदगी ला जियत हन और हमन भुला गए हन बने जिंदगी जिए बर। जौन आधार की जरूरत है हमन वो बात ला अनदेखा करथन जे बात ले जीवन ला सुघर ढंग ले जिंदगी जिए बर काम आही। पाछू कुछ बरस ले ये बात देखे पढ़े सुने मा आवत है कि हमन हा अपन परिवार ला समय और महत्व नहीं दे पावथन। तेकर कारण बड़े बुजुर्ग मन के मान सम्मान मा कमी आवत है और लइका मन के अनदेखी होवत है और संयुक्त परिवार हा टूटा जावत है। आपसी रिश्ता मा खटास आवत जावत थे। मनखे मन स्वार्थी हो गए बहनी हो और स्वार्थ के खातिर संयुक्त परिवार ला छोड़ के एकल परिवार बना के रहा थे। बहनी हो, संयुक्त परिवार मा जहाँ दाई बाबा काका काकी बड़े दाई दादा परिवार के सबे झन मिलजुल के एक ठन घर मा राहत रही से खावत पीवत सुख दुख मा एक दूसर के ख्याल तको राखे। माँ मेर एक ठन बड़े थाली रहाए, चारों तरफ गोल घेरा बना के सब्बो लइका मन खाए बैठे रहाए और डोकरी दाई अपन हाथ ले एक एक कौरा सब्बो लइका मन ला खवा जावे। जेकर ले लइका के मन मा एक दूसर के संग बाट बाट के खाए के आदत बनत रहीस, लेन देन एक दूसर के मदद करत रहीस और एक दूसर के ध्यान भी राहत राखत रहीस, जेकर से जीवन जिए मा आसानी हुवत रहीस। बहनी हो, दिखावा ले परिवार हा कोसो दूर रहाय, घर परिवार मा दिखावा के कोनो चीज भले ही नहीं रहीस लेकिन एक दूसर बर परिवार मा सपर समर्पण रहीस। संयुक्त परिवार मा सियान मन के एक खास जगह रहीस, जेकर से घर परिवार के प्रत्येक सदस्य हा मान गुल्ला बनाए राखे और ओकर मन के कोनो भी गोटला मान देवै औ सम्मान देवै। यही ले नीव ह पड़ीस जेकर से समाज मा सुघर संस्कार के नीव पड़ीस औ समाज मा सुघर होय से समाज व राष्ट्र हा आगे बढ़ीस। जी हाँ, एकल परिवार हा अपन आप मा एक ठन विडम्बना है। लइका मल्ला तो छोड़ सियान मल्ला घर के बड़े मल्ला लगाम लगाए बर बरजे बर कौन बात सही है कौन बात गलत है तेला बताए बर कोनो नहीं है। जिन परिवार मा बहनी हो अनुशासन और संस्कार की कमी है तेन परिवार ला टूटे मा बेरा नहीं लागे। घर घर मा रोज रोज के लड़ाई झगड़ा में लइका में उदंडतापना आचरण और बहुत ज़्यादा संख्या में होए वाले तलाक के मामला या मुकदमा एकर बहुत बड़े उदाहरण हैं। दाई बाबा के माया और छत्र छाया मिले के बाद तो दूर लइका मन के मन मा ओकर मन बर कोनो माया कोनो सम्मान घला नहीं जागे। काबर की आजकल के महतारी बाप मन हा वो मल्ला अपन साथ मा रखे बर नहीं चाहे काबर ओकर आज़ादी मा खल पड़ी अपन मन के करे बर नहीं मिले। ऐसे आजकल के महतारी बाप की सोच है बहनी हो और ओकर साथ ये बात भी है जौन मन हा समाज के पारिवारिक दबाव में आके अपन बड़े बुजुर्ग ला रख ले है वहाँ ज़्यादातर मामला सुने और देखे में आते कि ओ मल्ला जौन मान सम्मान मिलना चाहिए वो समाज परिवार में नहीं पावे। बहनी हो लइका मन हा कतको मोहले समझा ले जल्दी समझ में नहीं आवे। जौन चीज ला आदत व्यवहार ला घर के बड़े बुजुर्ग मन के संस्कार ला आँखी देखत वही सीख जाते। एकल ले यही बात साबित होते जौन ला देखते तेन ला सीखते। अपन करनी ला दूसर मा दोष थोपे से काम नहीं चले। बहनी हो माता पिता व अभिभावक मल्ला आपसी रिश्ता बनाए के खातिर और देखे के नजरिया बदले के खातिर बहुत कुछ त्यागे बर पड़ी। ये बदलाव के दौर मा हमार नवा पीढ़ी के भविष्य ला गड्ढा में जाए ले बचाए के खातिर ओकर मन मा अच्छा चरित्र के निर्माण करे बर माता पिता मल्ला अपन सोच मा बदलाव लाए बर पड़ी। बहनी हो और वो मल्ला अपन समय मया प्रेम ले सही ढंग ले दे बर पढ़ी। आजकल के लइका मन हा कुछ भी काम ला सिखाए ले नहीं सीखे देख के सीखते। एकर बर एक ठन उदाहरण मैं आप मन ला बतावत हूँ जौन ला आप मन भी कहूँ न कहूँ सुने हो। एक घर मा सियान सियनहिन रहा है और ओकर महतारी बाप रहा है। वो लइका हा रोज रोज देखा है अपन मन सबो जन बढ़िया बढ़िया बर्तन मा खातिन बढ़िया बढ़िया पहनतीन और ओकर महतारी हा अपन सियान सियनहिन मन ला माटी के बर्तन मा खाए बर देवे और माटी के बर्तन मा पानी पिए बर देवे। बहुत दिन ले ये बात वो लइका हा देखत रहा है। फिर धीरे धीरे बोला वैसे लगीस कि सियान मन ला ऐसने रखे जाते तो माटी के बर्तन मल्ला सकेले बर लगीस। एला देख के ओकर माँ ला ताजुब हुईस और माँ पूछते बेटा ते ये बर्तन मल्ला काबर सकेला थस। तब वो लइका कहते कि माँ जब तो हुमन सियान हो जाहू ना तब महू हा तुमल्ला ऐसने बर्तन माँ खाए बर दूहू और पानी पिए बर दूहू। देखे बहनी हो कैसे सीखते लइका मन देख के जैसने व्यवहार हम अपन बड़े मन संग करबो ता वैसने व्यवहार हमर लइका मन करही आगू के आगू पाछू के पाछू। जौन जौन रिश्ता आपस में खराब हो गए है वो रिश्ता ला आपसी संबंध ला परिवार समाज के आगू मा मान सम्मान पूर्वक गोट बात करे बर पड़ी। बहनी हो पहली के समय मा महिला मन के काम सिर्फ घर तक सीमित रहा है लेकिन आजकल जरूरत के मुताबिक महिला मन तको कामकाजी हो गए है। तेकर सेती महिला मन हा घला अपन घर परिवार मा जौन समय देना चाहिए वो समय नहीं दे पावे। तेकर सेती परिवार के बाकी सदस्य मल्ला एक दूसर के काम ला महत्व दे के आपस मा साठगांठ बना के घर परिवार और समाज ला टूटे से बचायला पढ़ी। संयुक्त परिवार टूटे के मुला दो ठन कारण और समझ आवत है। पहली तो रोजगार की समस्या और दूसर सोशल मीडिया। जी हाँ, एक तरफ युवा पीढ़ी हा रोजगार के समस्या से जूझत हुए अपन गांव घरला छोड़ा थे। मोबाइल, टीवी, आजकल के सिनेमा ये सबो परिवार ला तोड़े मत जिम्मेदार हावय। साथ ही साथ सेहत हा घलो खराब हुआ थे। आपस में चार जन घर मा बैठे है और चारों के हाथ मा मोबाइल है। आपस मा बातचीत नहीं हुआ थे। बहनी हो, घर मा कोनो समस्या है तो काकरो पास समय नहीं है कि आपस मा गोठियाए बर, जेकर चलते आपसी संबंध मा दुराव आवा जावत है। घर मा मोबाइल चलाए बर कड़ा से कड़ा निर्णय ले बर पड़ही। ये नियम ला लागू करे बर पड़ही। लेकिन ये जब हो ही बहनी हो, जब घर के बड़े मन हा ये नियम ला अपन ऊपर सख्ती से लागू करही। सबो बात के सार यही कहे जा सकते कि आज के बेरा मा हमला फिर अपन जड़ कोती लौटे बर पड़ी और ये जिम्मेदारी हम नारी पराने के ऊपर ज़्यादा आ जाते। काबर की नारी ला नारायणी तको कहे जाते। हम नारी मा क्षमा, सहनशीलता, दया के जो गुण रही थे और अपन परिवार ला जोड़ के रखे मा मदद करते। लइका मन ला शिक्षा देवन, संस्कार देवन, बेटा बेटी दोनों ला पढ़ावन और शिक्षा के संगे संगे संस्कार जरूर देवन कि बेटी जिहाँ भी जावे घर परिवार ला जोड़ के रखे। सियान मन के आदर करे, सम्मान करे। जेकर छैया में फहम फलतन फूलतन तमान सम्मान ये सबो बात ला तीर में रख के हम अपन परिवार समाज ला जोड़ सकत हन। ये सबो बात मा हम नारी पराने मन के ज़्यादा जिम्मेदारी बनते। काबर जब नारी पराने मन हा लइका मन ला शिक्षा दी ही, संस्कार दी ही, त घर के विकास हो ही और घर के विकास हो ही त परिवार के साथ समाज के विकास हो ही और जब समाज के विकास होगे त देश के विकास होए बर कोनो नहीं रुके। राम राम।
0: बहनी हो, अभी आप मन सुनत रहो बड़ सुघर वार्ता। विषय रहिस परिवार टूटे के कारण और वार्ताकार बहनी रहिन श्रीमती पुष्पा शर्मा। और हम यही आशा करत हैं कि ये वार्ता आपन के मन ला जरूर छुई सोही। अपन विचार जरूर बताहो बहनी हो। अब आवो एक रे संग एक ठन गीत के तको आनंद लेलन जौन ला अपन स्वर मा सजा के लाने हैं पंचराम मिर्जा और कुलवंतीन बाई।

बहनी हो, अब बेरहे आप मन के मन पसंद कार्यक्रम बहनी मन के चिट्ठी के। और चिट्ठी तो भाई बहुत अकन आ है, तो झटकुन देखन कहाँ कहाँ ले चिट्ठी आ है। ग्राम गंडे टिकरी पारे श्रीमती कचरीबाई जयश्री कुमारी हिमांशी देवांगन, ग्राम निवई उतैले उर्वशी कुनिका दीपसिका देवांगन, ये बहनी मन लिखे है 20 जून शनिवार के घर आंगन सजा के लाने रहीन रोशनी राठौड़ जी हा, जेन अपन गुड़तुर बोली माँ कार्यक्रम करत जोहार बहनी माँ श्रोता संगी मन के हाल चाल व्यवसाय खेती किसानी और पर्यटन संबंधी गोट बात करीन और सुघर सुघर गीत सुने बर थको मिलिस। बड़ सुघर मनमोहक प्रस्तुति पर रोशनी दीदी संग पूरा घर आंगन प्रभागला गाढ़ा गाढ़ा बधाई पठो है। और इही दिन के कार्यक्रम पर यूहू बहनी मन ल निकला गे हैं ग्राम गणेश धाम परसुली जिला बालोदले, मोतीम्बाई धनवंतीन योगिता मानिकपुरी अमरपुर पेंड्राले रेखा देवी श्वेता सुरुचि अंजुलता दिशा रूही लवी श्रीवास्तव, आप सबो बहनी मल्ला ये दिन के कार्यक्रम बढ़ निकला गे स्तेकर पर अंतसले आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है। बहनी हो जोहार बहनी माँ, आप मन संग सीधा फोन ले जुड़ के आप मन के हाल चाल जाने के मौका मिलते, तेकर सेती ये कार्यक्रम हमू मल्ला बढ़ निकलाक थे जेकर अगोरा हमू मन करथन। तब बहनी हो आप मन के काली तको अगोरा रही, काबर 18 तारीख जोहार बहनी कार्यक्रम बर काली 15 तारीख बुधवार के मंझनिया 12 बजे ले 12:30 बजे तक जोहार बहनी के रिकॉर्डिंग करे जाहि, जेकर बर फोन नंबर है 4003482, 4003483, 4003484 और रायपुर के बाहर रहे या मन बर एसटीडी कोड नंबर है 0771। तब फोन करे बर झन बुलाहु बहनी हो, आप मन की बधाई संदेश ला रेडियो के माध्यम ले रोशनी बहनी जरूर झोंक दरे हो ही पाती पठो तेकर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दूसरैया पाती आ है ग्राम तेंदुभाटा मगर रोड जिला धमतरी ले श्रीमती महेश्वरी देविका नूतन लक्ष्मी निषाद, ग्राम कुटेना पांडुका जिला गरियाबंद ले झामेश्वरी पुरवा कुसुम गेंदी जीतू पुष्पा साहू के, ये बहनी मन लिखे है 23 तारीख मंगलवार के घर आंगन कार्यक्रम ला हमर मायारू दीदी संगीता वर्मा धर के लाए रहीस और बड़ सुघर गोट बात करत कार्यक्रम के शुरुआत करीन, जेन बहुते बढ़िया लागिस। और ही दिन डॉक्टर के सलाह माँ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में डॉक्टर योगिता टिकरिया ले संगीता वर्मा के गोट बात बड़ सुघर लागिस, जेन हमारे स्वास्थ्य पर बड़ लाभ के रहीस। ए नियम के हमन पालन तको करे बर धरले हन। बड़ सुघर कार्यक्रम पर डॉक्टर योगिता जी और संगीता दीदी ला अंतसले धन्यवाद और बधाई है। यही दिन बहनी मन के चिट्ठी माँ हमरो चिट्ठी शामिल होइस सुन के बड़ खुशी लागिस। सुघर मन भावन प्रस्तुति पर प्रस्तुतकर्ता दीदी ला कोरी कोरी धन्यवाद और बधाई। यही दिन के कार्यक्रम यूहू बहनी मन ला पसंद आए भिलाई ले रश्मि वर्मा उपासना प्रीति कामिनी परगनिया तारिणी आशा दुर्गा मधु वर्मा आवा बहनी हो, एकरे संग एक ठन गीत के तको आनंद लेलन जौनला अपन स्वर्मा सजा के लाने हैं केदार यादव भीखम धर्माकर और उखर संगवारी मन।

बहनीहो, ये पाती आहे रानीगाव नगरीले चित्ररेखा उर्वशी राधाबाई चंदा वीणा कुमारी सेजलसा होके लोरमी ग्राम चचेडीले प्रमिला नेहा रिंझा तनुराही मरावे के सिमगाले भारती सेन सुनंदा ललिता रामेश्वरी सेन के ये बहनी मन लिखे है 27 जून के घर आंगन के फुलवारी ला सजा के लाने रही समर बहनी संगीता वर्मा जिन कार्यक्रम के शुरुआत पर्यावरण संरक्षण जीवन के आवश्यकता कर रही जिल बड़ ज्ञानवर्धक रही से और यही दिन वार्ता दरकत सामाजिक मूल्य जिम्मेदार कौन एक ज्वलंत मुद्दा ऊपर डॉक्टर सरिता साहू के वार्ता बड़ सुघर उपयोगी लागिस गीत संगीत तको मन भावन रहीस बड़ सुघर रोचक कार्यक्रम पर संगीता वर्मा संग डॉक्टर सरिता साहूला अंतसले गाढ़ा गाढ़ा बधाई है। बहनियों हमर ये पूरा प्रयास रही थे कि हमर घर आंगनला सुंदर सुंदर जानकारी प्रद कार्यक्रम ले सजावन संवारन और आप मन के विचार पाती ले हमर प्रयास सफल हो जाते। आपके बधाई संदेश ला तो हम झोंक डरे हन डॉक्टर सरिता साहू तक आपके बधाई ला अमृत हन अतका सुखर पाती पर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाती है धरसीवा बस स्टैंड ले सीता यादव अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना और राधिका। यही दिन भर यू बहनी मन की पाती है दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर पुष्पलता नीतू अर्पिता राजेश्वरी यादव। ये बहनी मन लिखे है 30 जून के कार्यक्रम ला लेके आए रही मयारू दीदी संध्या परगनिया। ये दिन के कार्यक्रम गीत ले भरे कहानी वसीयत सुने जेकर आलेख और वाचन संध्या परगनिया संपादन और परिकल्पना बीर भानसाहू और प्रस्तुति रमा शंकर के रहीन बड़ सुघर संतेश प्रस कहानी लसुन के मन गदगद हो गए। कार्यक्रम के सुघर प्रस्तुति पर संध्या दीदी संपादन पर बीर भानसाहू और प्रस्तुतकर्ता रमा शंकर सरला बहुत बहुत बधाई है। बहनियों आप मन के ऐसन सुघर पातीला देख के हमार मेहनत सफल हो जाते। आप मल्ला ये दिन के कार्यक्रम बड़ निक लागिस तेकर बर सबो बहनीला अंतसले आभार। आप मन के बधाई संदेश ला हम सबो करा रेडियो के माध्यम ले अमृत हन। ऐसने अपन माया दुलार बनाए रखो बहनी हो और अपन विचार जरूर पठोवत रहो आपके विचार के हमला अगोरा रही। आज के कार्यक्रम आप मन ला कैसे लागे जरूर बताऊ। आप मन स्वस्थ रहो खुश रहो और मौसम के आनंद लेवत रहो। एक संग कार्यक्रम ले जाए के बेरा हुआ थे अवैया कार्यक्रम में फिर भेंट हो ही इही वादा संग अपन सखी संगीता ला दो बिता और लेवा मोर माया ले भरे राम राम।

बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत जख्म फिल्म से, आवाज अलका याग्निक की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत एम एम करीम का।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: जिद्दी फिल्म का गीत सुनिए ए हरिहरन और चित्रा की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का है।

जिद्दी फिल्म का ये गीत था ए हरिहरन और चित्रा की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर, संगीतकार दिलीप सेन समीर सेन। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को ही दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय

0: शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया।

0: है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। अब पेश है चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का। फिल्म है आई मिलन की बेला।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
5: सुनिए।

ज्वेल थीफ फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार शैलेंद्र संगीतकार एस टी परमन।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अधिकार फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। रमेश पंत के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है RT बर्मन ने।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए पर पढ़ते फिर पढ़ के भुला जाते।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब थोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: त काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हाँ।

0: संझा कुन 5:10 ले जेन शुरू होते ना वर्षा तेना 6 बजे तक चलते, जेमा तह मंगलवार गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
0: एक संग युवाणी।

अभिलाषा फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था, संगीत था आर डी बर्मन का। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ब्लैकमेल फिल्म का गाना, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।
1: विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्यीय चालक दल में से 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। इससे पहले अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरु मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावों को खारिज किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का दोबारा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जा रहा है। ये अब से कुछ देर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India has expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Albahya and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. The Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the External Affairs Ministry, and a strong protest against these attacks was lodged with him. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. The External Affairs Ministry said in a statement that of the 12 Indian nationals on board MT Albahya, one has lost his life and another has been injured. Of the 18 Indian nationals on board MT Mombasa, 9 have sustained injuries, including 2 who are reported to be seriously injured. The ministry extended condolences to the family of the deceased Indian national and wished speedy recovery to those injured. The Indian mission and post in the UAE are closely monitoring the situation and are in touch with the UAE authorities to ensure all possible assistance to the affected Indian seafarers. New Delhi has strongly condemned these attacks and acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India has also reiterated deep concern on account of the resumption of attacks and escalation of hostilities in the West

0: कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां ये समय है मन भावन प्रोग्राम का। मन भावन वही प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी पसंद के गीत लेकर आते हैं, आपको सुनवाते हैं और आप ढेरों मैसेजेस से अपने रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाते हैं। तो इस शो में अपनी रिक्वेस्ट मुझ तक यानी कि एफएम गोल्ड के स्टूडियो तक भेजने के लिए आपको करनी है एक ईमेल, fmgoldair@gmail.com। ये है वो ईमेल आईडी जो आपकी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाएगा और फिर हम आपकी पसंद के गाने आपको सुनवाएंगे आज अब से लेकर 4 बजे तक 100.1 एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए

बिल्कुल, मुझे लग रहा है आप लोगों को चैन जरूर आ रहा है ईमेल करने के बाद। और कुछ हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बहुत सारी ईमेल्स कर देंगे तो ज्यादा चैन आएगा या ज्यादा आपकी पसंद के गाने बजाए जाएंगे। अब जवाब तो आप भी जानते हैं, लेकिन खैर बहुत

एक ही लिसनर से ईमेल आते हैं तो एक पूरा ईमेल का पेज भर जाता है। अच्छा, आप लोगों को ये लगता होगा कि शायद ऐसा करने से हमारा नाम शामिल होगा, लेकिन ये भी एक गलत फहमी है। कोशिश की जाती है कि सबके नाम एक बार तो शामिल हो जाएं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बार ईमेल भेजेंगे तो उतनी ही बार आपका नाम शामिल होगा। हाँ, कई बार ये हो जाता है कि हम जिस नाम को पढ़ चुके हैं हम उसे दोबारा पढ़ देते हैं, क्योंकि आप अलग अलग नामों से ईमेल भेजते हैं, उसमें सेंडर नेम चेंज हो जाता है, तो उस धोखे में ईमेल वो खुल जाती है। खैर, तो अब आपके ईमेल्स की बात करते हैं। तो पहला ईमेल गुरमीत सिंह का आया हमारे पास साउथ एक्सटेंशन से, और आप नमस्कार लिखकर भेजते हैं, आपने रिक्वेस्ट कोई नहीं लिखी है, तो भाई बहुत बहुत आपको भी हमारी नमस्ते और शुभकामनाएं, आपका दिन अच्छा जाए आप सभी का। नीटू मल्होत्रा हमारे साथ हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और एक गाने की फरमाइश आपने लिख भेजी है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। और पानीपत से आप लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा के साथ इस गाने को सुनना चाहते हैं, और आपके साथ पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का ने भी इसी गाने की रिक्वेस्ट लिख भेजी है। हरजिंदर सिंह भाटिया प्रोग्राम सुन रहे हैं, सिंदूर फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया के साथ जमशेदपुर से। और रविंद्र मोहन दास भी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में, इसे पसंद करने वालों में, तो आप मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना, आप सबने भी इसी गाने की रिक्वेस्ट लिख भेजी है जो आपसे पहले एक लिसनर ने भेजी थी, आप तो ऐसे न थे इस फिल्म से, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। तो अगला गाना आप मनभावन में यही सुनेंगे। विजय सुरलकर ने भी हमें ईमेल किया, याराना फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ है रतनमाला सुरलकर और मुताला महाराष्ट्र से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। फैज़ अहमद खत्री का भी मैसेज हमें मिलता है, प्यार ही प्यार फिल्म से आपने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है, और आपके साथ हैं शाकिर मुलाजी, साबिर रफीक मुलाजी, और आप हुबली कर्नाटक से हमें ये ईमेल भेजते हैं। मैसेज मिलता है हमें रामेश्वर का, और आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, नमस्कार सदा खुश रहिए, ऐसा लिखकर भेजते हैं, और धरती कहे पुकार के से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ हैं उमा कांति कठेरिया, कमलेश पुत्र बधु, निशा कठेरिया और प्रज्ञा प्रतिमा बेद बाबू, आप सब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और इस गाने की रिक्वेस्ट आपने हमें लिख भेजी है। नईम खान विष्णु गार्डन से प्रोग्राम सुन रहे हैं, मुजस्सिम अकरम असलम निसार आपके साथ हैं, और अगला मैसेज हमें मिलता है ताज मोहम्मद का, आप हरिद्वार से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपके साथ है गुलाम साबिर राही मेरा जहां, और आज़ाद नगर से प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सुंदर इमोजीज के साथ ईमेल सजाकर हम तक भेज रहे हैं आप। मोहम्मद यूनिस खत्री का भी ईमेल हमें मिलती है, और आप मोहम्मद सादिक खत्री, आयूब खत्री और यूसुफ खत्री के साथ खंडवा से प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं। अहमद फूल वाले भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आरजू फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ है दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल और इमरान अहमद, कापसेड़ा बॉर्डर से आमना नसरीन, आसमा राबिया, मंतशा आशू अहमद और समस्त आपका परिवार।

देखते हैं अगली ईमेल किसकी आई है और कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं। तो अगली ईमेल बोधराज खोरवाल की हम तक पहुंचती है। पहचान फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। उत्तम नगर से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के साथ। परमिंदर सिंह रंधावा आपका भी मैसेज हमें मिला। पारसमणि फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं लता जी की आवाज में और आपके साथ लखनपाल रंधावा भी है। सुमेरा परवीन प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं। नसीब फिल्म से आप जॉन जॉनी जनार्दन ये गाना सुनना चाहती हैं और आपने हमें मैसेज भेजा है अपनी फरमाइश के साथ। प्रकाश वर्मा हैं प्रोग्राम सुनने वालों में। कुमकुम जी का भी मैसेज मिला है। कुमकुम जी के साथ आरती आराध्या माला सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। सावन भादो फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट लिखकर भेजी है। साथ ही प्रकाश वर्मा का भी मैसेज हमें मिला है। पिघलता आसमान से आप गाना सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से आपके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा भी। पीएस नवांकर हैं प्रोग्राम सुनने वालों में। असली नकली फिल्म

आपने एक रिक्वेस्ट की है हमसे गाने की, और नरवेल महाराष्ट्र से आपके साथ निर्मला नवांकर, विशाल नवांकर हैं। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आयुष मोहेकर, आप सब ने भी अपनी रिक्वेस्ट इनके साथ लिख भेजी है। सोहेल शेख प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपके साथ हैं शेख वजीर, सोहेल शेख, बबलू ठेकेदार, शेख शगीर और सैयद तहमूर, और शामिर भी हैं आपके साथ। आफ्ताब अंसारी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, और कोई भी गाना सुनना चाहते हैं आप गंज डुंडवारा से, आपके साथ है रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। तो मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान बुलंदशहर से सुनना चाहते हैं ससुराल फिल्म से ये गाना।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आप सुन रहे हैं मन भावन अपराजिता के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 में।

कहत्स पर और आप ही की रिक्वेस्ट के गाने हम सुनवा रहे हैं आपको, आपकी ईमेल्स जो हम तक पहुंच रही हैं। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो मैं बता दूं कि आप अपनी रिक्वेस्ट यानी कि जो गाना अब आप सुनना चाहते हैं उसे लिखकर भेजें fmgoldaiadelhi@gmail.com पर, जैसे हमारे लिसनर्स ने भेजा है। तो अगली रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है होली चौक उत्तम नगर से राम खोरवाल, सचिन, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल की, जो महुआ फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। लेकिन कुछ और साथियों के नाम मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ, उसके बाद आपकी पसंद का गाना बिल्कुल सुनवाऊंगी। गणेश सूतर प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं कोल्हापुर से, आपके साथ है चेतन, सारिका और राधिका। फूल और कांटे फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। केहर साहू हैं हमारे साथ, खामोशी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं भाटापारा से, आपके साथ हैं आकाश, कमलेश, गन्नू लाल, रजक, मुरली क्षत्रिय। और जाकिर साहब का भी मैसेज मिलता है हमें मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में, आपने नीला आकाश फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी। आपके साथ है निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी, जाकिर मंसूरी, कमरून, आप सब हैं इस गाने की रिक्वेस्ट भेजने में। और तुलसी मस्किन का भी मैसेज हमें मिलता है, वीना मस्किन, आशीष, चैतन्य, मेघा मस्किन के साथ। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। धर्मेंद्र चींपा का मैसेज मिलता है हमें, दिल ही तो है से आप एक गाना सुनना चाहते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से। और आपके साथ है कपिल, ईशान, पूजा परिहार, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है ऐसा आपका ईमेल हमें बताता है। अब्दुल गफार का मैसेज मिलता है हमें और खूबसूरत इमोजीज जिसमें माइक, रेडियो और फूल शामिल हैं। तो आप सोहन जोशी, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, अब्दुल गफार, ये सब हमें मैसेज करते हैं और सुनना चाहते हैं हमारी पसंद का कोई भी गाना। तो लीजिए अभी बस कुछ और नाम और हमारी पसंद का और आपकी पसंद का गाना आप तक पहुंचने वाला है। महेंद्र प्रसाद मोदी प्रोग्राम सुन रहे हैं रामगढ़ कैंट से, आपके साथ हैं डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर तस्मीन और जी। इसके बाद मैसेज मिलता है अनूप कौर का, अनूप कौर सफ़र फिल्म से गाना सुनना चाहती हैं, आपके साथ सरोज बंसल भी हैं गुरुग्राम से। और दिग्दर्शन गौर का मैसेज मिलता है हमें, कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई आपके साथ हैं मेरठ कैंट से, आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। मौसम फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट आपने हमें लिख भेजी है। और साथ ही मैसेज आता है संदीप मक्कड़ का, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत मक्कड़, कमल सहनी, पिंगा वाला चौक, गौरैया, जालंधर, पंजाब से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं।

0: फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर जानेंगे कि किसकी पसंद का होगा अगला गाना मन बहावन प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अगला मैसेज मिलता है हमें अशोक दले, सविता अनिकेत दले ऋषिकेश और जीविका दले का, और पुनावले पुणे से आपके साथ हैं अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, विशाखा। और आप कोई भी गीत सुनना चाहते हैं, ये बढ़िया बात कर दिया आपने। नवाब अहमद का मैसेज हमें मिलता है, कोई भी गीत आप भी सुनना चाहते हैं। अशरफ अली, सिराज मिथुन, सलीम अख्तर, बबलू कश्यप, आप सब दिल्ली से हमें ये ईमेल भेजते हैं। और उग्रसेन यादव प्रोग्राम सुन रहे हैं, और शकुंतला यादव गरिमा के साथ आप रेशम की डोरी कहाँ जइयो ये गाना सुनना चाहते हैं। और अनिल मोहन प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से।

आपके साथ हैं। उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक और बबलू ठेकेदार का भी मैसेज हमें मिलता है और मुझे ऐसा लगता है नाम पढ़ते ही कि मैं आपका मैसेज शामिल कर चुकी हूँ। सतीश अनेजा का भी मैसेज आया है हमारे पास और आप वो कौन थी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, बिमला अनेजा के साथ मनाली से आप मैसेज भेज रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है। और मनाली से आपने ठंडी ठंडी हवा हम तक पहुँचा दी है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मैं पिछले मंगलवार आपसे मिलने आई थी यानी कि ट्यूसडे को, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और हालत कुछ ऐसी थी कि बाहर ठंडी थी यानी कि बहुत ही ठंडा माहौल हो रखा था, ठंडा मतलब अच्छा प्लेजेंट, और भीगने के बाद स्टूडियो के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही थे और मैं हिदायत दे रही थी कि आप अदरक वाली चाय पिए अगर आप भीग चुके हैं तो। और आज देखिए कैसा माहौल है, बारिश को हम एक बार फिर से जो है बुलाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है, गुरु फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं बरसो रे मेघा, माहिरा मलिक, हीबा, आयशा, जोया, जैनब और मरियम। आप नॉट प्लेस यानी कि बहुत ही पास से हमें मैसेज कर रहे हैं, तो आपकी पसंद का होगा अगला गाना। सतीश अनेजा प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, रविंद्र मोहन दास शहनाई फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं किशनगंज बिहार से, और आशा देवी भी आपके साथ हैं। अगला मैसेज आता है सुधाकर जाधव का, आपके साथ है प्रशांत राजे, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख और प्रणाली देशमुख, कुमार सरवर देशमुख, सानवी और कल्पना देशमुख भी आपके साथ हैं। और जगदीश कुमार का भी मैसेज हमें मिलता है, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, राहुल रितिका के साथ नांगलोई से। और नवी हसन अब्बासी का मैसेज हमें आता है एटा से, आपके साथ हैं शहनाज, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम यशफ, रसीद वारसी और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सबीहा, अंजुम खान, अंजुमन खान। और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, दो रास्ते फिल्म से अपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है, स्वरूप आनंद सरजल का मैसेज हमें मिलता है और साजन की बाहों में ये गाना आप सुनना चाहते हैं। आपके साथ छत्तीसगढ़ से हैं पीपल अंबिकापुर से, अच्छा स्वरूप आनंद सरजल आपने मैसेज हमें भेजा है और सिंगर्स के नाम भी आपने लिख भेजे हैं। राशिद हुसैन अंसारी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके साथ आपके परिवार के लोग हैं आसना नौसी नौरीन नसरीन, राशिद हुसैन अंसारी, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी और कुरावली से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं।

अब देखिए, अगर मैं बाहर देखूं स्टूडियो से तो अच्छी खासी धूप आज खिली हुई है और सब लोग चाहते हैं कि वर्षा जो है वो फिर से हो, बारिश फिर से हो जाए। तो गांधी चौक बाड़मेर से एक रिक्वेस्ट हमारे पास आई है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की, और आपके साथ दिनेश चौहान भी हैं। खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा हैं और दिनेश चौहान रामदेवरा से प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपने हरिश्चंद्र तारामती से गाना सुनने की रिक्वेस्ट लिख भेजी है लता जी की आवाज़ में, मेघवा गगन बीच झांके। तो इस गाने को हम आपको सुनवाएंगे, कुछ नाम और शामिल कर लेते हैं। अल्तमश खत्री प्रोग्राम सुन रहे हैं, फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये गाना आप सुनना चाहते हैं समीना मुदस्सिर फिरदौस हसन लला के साथ खंडवा से। और साथ ही मैसेज ओम कुमार का आता है हमारे पास, आपके साथ विद्या गौरी वैष्णवी महाराष्ट्र से हैं, सावन भादो फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। मोहम्मद फारूक भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और ओ बेवफा फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ है शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। गंज डुंडवारा से आपने हमें ईमेल की है और साथ ही मैसेज आता है पंकज कुमार का, आप दिल्ली से प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बबलेश पवार भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। मोहम्मद फारूक का मैसेज हमें मिलता है और आपके साथ है शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। और अगला मैसेज हमारे पास अनिल मोहन का आया है, उषा मोहन, टिल्लू नायक आपके साथ है, रमेश चंद्र कांबड़े प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और शोर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। साथ ही मैसेज आता है हमारे पास जॉन डिकोस्ट्रो का और आपके साथ हैं रोजी डिकोस्ट्रो, पर्ल और विलिस, जनकपुरी सहारनपुर से आपने हमको ये ईमेल लिख भेजी है। भारत भूषण भी हैं प्रोग्राम सुनने वालों में और खूबसूरत फूल की यानी कि गुलाब की इमोजी आपने हमें बना भेजी है। बेंगलुरु से द ट्रेन से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, आपके साथ है अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष। साथ ही शमशूल कमर राही का गंज टुंडवारा से मैसेज मिलता है, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान आपके साथ हैं और निगाहें फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। साथ ही मैसेज मिलता है हमें राजवीर सिंह का, आप के साथ हैं चौधरी अवियाना कंचव और आप आवारा फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। आरएल देवांगन का भी मैसेज हमें मिलता है, उजाला फिल्म से आप कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन के साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं।

मोहसिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ और मोहम्मद कलीम का संदेश हमें गंज डुंडवारा से मिलता है। सुधाकर जाधव, सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं सोनीपत से। साई गायकवाड़ का भी मैसेज मिलता है हमें, बरसात फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ के साथ, और किशन वंजनी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आनंद फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। और मैं बता दूं कि जाने से पहले आनंद फिल्म से ही हम अगला और इस प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको आज सुनवाएंगे। और ये सभी प्रोग्राम पसंद करने वालों के लिए है जिनका नाम ना चाहते हुए भी आज छूट गया है, आप सब के लिए ये गाना होगा। लेकिन जाने से पहले कुछ और नाम शामिल करती हूँ। ओम कुमार, उत्तम कुमार भगत, यूनिस खत्री, नवी हसन, हाजी मजहार, लालगिरी

भारत भूषण, इशाक मोहम्मद, फारूक अली खान, सुरेश नारंग और आपके साथ हैं सोनाली नारंग भी, उत्तम कुमार भगत, नवाब अहमद भारती, मुकेश कश्यप और आपके साथ हैं रामपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। आप सब प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और लालगिरी के साथ हैं हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी, गोस्वामी। और मैसेज मिलता है हमें हाजी मजहार का, आपके साथ है रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। प्रोग्राम आप सब पसंद कर रहे हैं, आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। मैसेज मिलता है हमें यूनिस खत्री का और सुधाकर जाधव भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, प्रशांत, राजे कुमार, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख प्रणाली के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय दो जहाजों एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा पर हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने आज सुबह नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को बुलाकर इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोनों जहाजों पर सवार 46 सदस्यीय चालक दल में से 30 भारतीय नाविक थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अल बहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हुआ है। एमटी मोम्बासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं। इससे पहले अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन किया है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का दोबारा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी

0: मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में देश की खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में प्रस्तावित भंडारण नीति और निजी उद्यमी गारंटी PEG योजना की समीक्षा की गई। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 7 ओवर में बिना विकेट खोए 20 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India has expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. The Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the External Affairs Ministry, and a strong protest against these attacks was lodged with him. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers, among their combined crew of 46. The External Affairs Ministry said in a statement that of the 12 Indian nationals on board MT Al Bahia, one has lost his life and another has been injured. Of the 18 Indian nationals on board MT Mombasa, 9 have sustained injuries, including 2 who are reported to be seriously injured. The ministry extended condolences to the family of the deceased Indian national and wished speedy recovery to those injured. The Indian mission and post in the UAE are closely monitoring the situation and are in touch with the UAE authorities to ensure all possible assistance to the affected Indian seafarers. New Delhi has strongly condemned these attacks and acts of violence targeting seafarers and disrupting free and safe navigation through international waterways like the Strait of Hormuz. India has also reiterated deep concern on account of the resumption of attacks and escalation of hostilities in the West Asian region and called for immediate cessation of violence and a return to dialogue and diplomacy in the interest of peace, security and stability in the region. Meanwhile, India today summoned Iranian Deputy Chief of Mission Mohammad Javed Husseini following an Iranian missile strike on the 2 UAE-flagged oil tankers in the Strait of Hormuz, which killed 1 Indian national and injured several others. The Comprehensive Economic Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of the tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling the trade to $100 billion by 2030. More from our correspondent.
3: With the agreement coming into force, Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariffs on several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exports in the UK market, generate new opportunities for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. Indian service providers in IT and IT-enabled services, financial services, healthcare, education, engineering, telecommunications, and consultancy services will benefit from enhanced market access and greater regulatory certainty. With Dipendra Kumar, Akshit Vedyan, Akashwani News, Delhi.
2: Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution Prahlad Joshi today chaired a review meeting to strengthen the country's food grain storage ecosystem in New Delhi. In a social media post, Mr. Joshi said the meeting reviewed the proposed storage policy and the Private Entrepreneurs Guarantee Scheme. He said the discussions focused on addressing emerging challenges in food grain management, including regional storage imbalances, surplus stock management, optimization of storage capacity, and the need to revise storage norms in line with the current procurement trends. Benchmark domestic equity indices ended around 0.7 lower today. The Sensex fell 561 points to close at 77,055. The Nifty declined 159 points to settle at 24,052. In cricket, England were 37 for no loss in 8 overs against India in the first of the 3-match ODI series at Edgbaston, Birmingham, when reports last came in. Earlier, England's skipper Harry Brooke won the toss and opted to bat first. And in FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: experienced professionals for 36 executive posts on fixed-term basis. Vacancies include Executive ERP, Executive Civil, Executive HR Corporate Communications, Executive Security, Executive Law, Executive Safety, Executive Finance, and Executive Medical across different grades. Interested candidates can apply online through the career section. For detailed eligibility criteria, qualifications, and experience requirements is available on the official website. Kindly look up www.neepco.co.in. I repeat the website, it is www.neepco.co.in. The High Court of Delhi has invited online applications from eligible candidates for the Delhi Higher Judicial Services Examination 2026 under the 25% recruitment quota. A total of 27 vacancies are available, comprising 17 general, 5 SC, 5 ST and 5 ST posts. Selected candidates will be appointed in the Delhi Higher Judicial Service in the J5 pay level. The online application process will close on 15th July 2026. Candidates are advised to refer to the detailed notification on the official website, that is at www.delhihighcourt.nic.in, for eligibility criteria, examination pattern and important instructions and updates. The Indian Ports Association, IPA, has invited applications for several positions across its organization. The vacancies include Director Cruise on fixed term employment contract, Deputy Director on deputation, various positions in the PHRD vertical on deputation, and the post of a Secretary and Assistant Manager on deputation. The last date for submission of applications is 15th July 2026. Interested candidates can check the detailed eligibility criteria, qualifications, experience requirements, and application process on the official website. Do look up www.ipa.nic.in. I repeat, it is www.ipa.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन औषध अनुभाग आमंत्रित कर रहा है वैज्ञानिक अधिकारी के एक पद के लिए आवेदन। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट cdsco.gov.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट नेटवर्क और सिस्टम्स, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्ट, मैकेनिकल, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तथा केमिकल। इसके अतिरिक्त जूनियर असिस्टेंट हॉस्पिटैलिटी, जूनियर टेक्नीशियन सिविल मेंटेनेंस और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद की वेबसाइट। पता है www.iitism.ac.in। भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय भर्ती एवं प्रोन्नति विभाग कॉरपोरेट केंद्र मुंबई आमंत्रित कर रहा है परिवीक्षा अधीन अधिकारियों यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए आवेदन। कुल 1500 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनमें से 234 अनुसूचित जाति के लिए, 144 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 390, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 144 तथा सामान्य वर्ग के लिए 588 रिक्तियां उपलब्ध हैं। वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक की इस वेबसाइट से, जिसका पता है SBI

0: bank.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप करियर्स सेक्शन में करंट ओपनिंग्स को खोल सकते हैं। वहां आपको तमाम जानकारी विस्तार से प्राप्त हो जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आमंत्रित कर रहा है सांस्कृतिक प्रतिभा क्षेत्र से दो पदों को भरने के लिए आवेदन। एक पद सैक्सोफोन वादक का है और एक अन्य पद पश्चिमी शास्त्रीय पियानो वादक का है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के लिए सामान्य वर्ग के लिए होनी चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 33 वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के होने चाहिए। वेतनमान, योग्यता तथा अन्य नियम और शर्तों की जानकारी के लिए देखिए आधिकारिक वेबसाइट www.nfr.indianrailways.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: जो तो माँ जाते एक बार, हंस उठते पल में आद्र नयन, धुल जाता होंठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार, जो तो माँ जाते एक बार। जी हाँ, एक बार नहीं, हम हर रोज आते हैं ठीक इसी समय आपसे रूबरू होने। नमस्कार, महान कवयित्री महादेवी वर्मा की इन पंक्तियों के साथ आपका अभिनंदन। कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
2: हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका। Priyanka, let me start with an incredible piece of hearty news today. We made history at Lord's. For the first time ever, women played at a test match at the iconic Lord's. And Team India turned that historic moment into an unforgettable triumph. It was a record-breaking performance of skill, grit and never give up spirit by the girls, defeating England by 270 runs in their home ground.

0: And from Yastika Bhatia's memorable century to Kranti Gaur being scripted on the Lord's coveted honours board for her stunning 5-wicket haul, every moment reflected the dreams of countless women who dared to think cricket beyond boundaries. While Indian men took 54 years to win Test at Lord's, women did it at first shot. This was a headline in one of the most prominent newspapers today, and that was really very overwhelming. Cheers to Nari Shakti. History sometimes happens quietly. At a time when all of us were more focused on football, World Cup and Wimbledon, our girls made us proud in every way. A victory written by Indian women, remembered forever. What do you say, Priyanka?
1: बिल्कुल सही कहा आपने अनुजा. भारत की बेटियों ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में 142 साल के इतिहास में पहली बार खेला गया महिला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया. और 270 रन की जो इस रिकॉर्ड जीत के साथ हमारी बेटियों ने, जो कुछ दिन पहले इंग्लैंड के जो मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ पुरुष टीम का, और उसमें जो हमें हार मिली थी, तो उसके जख्म को भी भर दिया है.
0: एब्सोल्युटली. सो हार्टिएस्ट congratulations and best wishes for many more such achievements to them. Shall we start with the headlines now, Priyanka?
1: बिल्कुल. अब जानते हैं कि क्या ताजा तरीन खबरें हैं इस समय की. भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की. कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही को बाधित कर रही है.
0: India backs Palestine's bid for United Nations membership, reaffirms two-state solution to conflict between Palestine and Israel.
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा.
0: India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, begins in New Delhi to showcase country's growing leadership in textile sector.
1: बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना.
0: France to take on Spain in the first semi-final in FIFA World Cup tonight in Texas.
1: और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा.
0: And as always, time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Namaste Day.

0: अनुजा, ये जो पंक्तियां थी इतनी जानी पहचानी, क्योंकि सुबह सुबह जब एमसीडी की गाड़ियां आती हैं तो ये गाना आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये धुन सुनने के लिए आगे आ जाते हैं। और मेन जो इसका जो रहता है कि मकसद कि अपने घर का जो कचरा है उसे सही से निपटाया जाए।
1: Yes, Priyanka, yes. Today is 14th of July, a day that reminds us to express gratitude to the people who work tirelessly behind the scenes to keep our surroundings clean and healthy. And today, we observe Namaste Day.
0: बिल्कुल सही। हम में से कई लोग अपने दिन की शुरुआत साफ सुथरी सड़कों पर चलकर, साफ सुथरी सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करके और अच्छी साफ सफाई की उम्मीद करके करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो ये सब मुमकिन बनाते हैं?
1: Exactly. Namaste Day is dedicated to honoring our sanitation workers, those who clean sewers and septic tanks, waste pickers and former manual scavengers. Their work is essential to public health, yet it often goes unnoticed.
0: सही कहा। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी।
1: And the vision behind this initiative is simple but very powerful. To ensure that safety, dignity and well-being of every sanitation worker by replacing hazardous manual cleaning with safe mechanized methods.
0: सोचिए अनुजा, बिना सही उपकरणों के सीवर में उतरना पड़े, यह न सिर्फ मुश्किल है बल्कि बेहद खतरनाक भी। और ऐसे कई इंसिडेंट्स भी हमने सुने थे, लेकिन अब जब सही उपकरण मिलते हैं तो ये सुरक्षा की दृष्टि से कितनी अच्छी बात है।
1: Right, Priyanka. And that is why the Namaste scheme is working towards zero fatalities in sanitation work. It promotes mechanized cleaning, provides protective equipment, trains and certifies sanitation workers, and also strengthens emergency response sanitation units.
0: Emergency response sanitation units ke zariye personal active equipment aur suraksha upkaran uplabdh karakar ye yojana kaam karne ki surakshit sthitiyan sunishchit karti hai aur karmchariyon ko unke kaam se jode khatron se bachati hai.
1: It also supports workers through self help groups and entrepreneurship opportunities, helping them build a secure and a sustainable livelihood.
0: नमस्ते योजना कामगारों को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा देती है। स्वच्छता उद्यमी योजना जैसी पहलों के जरिए कौशल विकास और आजीविका में मदद देकर एक बड़ा बदलाव लाती है।
1: एब्सोल्युटली, द गोल इज नॉट ओनली टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस बट ऑल्सो टू एम्पावर सैनिटेशन वर्कर्स सोशली एंड इकोनॉमिकली। एंड दिस ईयर्स 2026 सेलिब्रेशन प्लेसेस स्पेशल एम्फेसिस ऑन एलिमिनेटिंग हैजर्डस मैनुअल scavenging through modern technology.
0: और इस पहल को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय मिलकर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के जरिए लागू करते हैं।
1: In fact, Priyanka, a major highlight this year is the main celebration

0: exhibition at Rabindra Sadan in Kolkata alongside the Divya Kala Mela, while urban local bodies across the country are also organizing awareness programs and events.
1: Aur ye bahut achhi baat hai kyunki badlav ka matlab sirf technology nahi hai, ye hamari soch badalne ke bare mein bhi hai.
0: Very true. Respect begins with recognition. Sanitation workers deserve appreciation not just on one day, but every single day.
1: हम अपने सभी सुनने वालों को ये कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप अपने पड़ोस में किसी सफाई कर्मचारी को देखेंगे तो क्या आप उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे, और देना भी चाहिए. नमस्ते जैसे इस योजना का नाम है, हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद करना चाहिए.
0: Right, you said, Priyanka, they are the unsung heroes of public health, protecting communities from disease outbreaks by managing our waste. A small gesture of respect can go a long way. After all, they work every day to ensure that our homes, streets, schools and cities remain clean and safe.
1: बिल्कुल, नागरिकों के तौर पर हम भी साफ सफाई बनाए रखकर, कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करके और सुरक्षित साफ सफाई के तरीकों को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करके योगदान दे सकते हैं.
0: And before we sign off, let's remember that a clean nation is built not only through policies and machines, but also through the dedication of thousands of sanitation workers who serve with commitment every single day.
1: बिल्कुल, और एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि एक साफ सुथरा शहर सरकार से नहीं बल्कि हम में से हर एक व्यक्ति से शुरू होता है.
0: You said it right, Priyanka. We can all make a difference by avoiding littering, using dustbins, segregating wet and dry waste, reducing single-use plastic and keeping our streets and parks and neighborhoods clean.
1: और अगर आपको कूड़ेदान भरे हुए या गंदगी दिखे तो उन्हें नजरअंदाज न करें. इस समस्या की जानकारी अपने स्थानीय नगर प्रशासन को दे. एक जिम्मेदार कदम कई और लोगों को प्रेरित कर सकता है.
0: And let's also remember to respect the hard work of our sanitation workers. The best way to thank them is by ensuring we don't create unnecessary waste or litter in public places.
1: और हम सब मिलकर रोजाना जो छोटी छोटी कोशिशें करते हैं उनसे सड़कें साफ सुथरी, समुदाय ज्यादा सेहतमंद और भविष्य ज्यादा हरा भरा हो सकता है.
0: Yeah, so we should keep our surroundings clean.
1: जी हाँ, साफ सुथरा हमें रखना चाहिए और सभी जो हमारे सफाई कर्मचारी हमारे आसपास उनका धन्यवाद करना चाहिए. इस नमस्ते दिवस पर आइए हम इन गुमनाम नायकों को सलाम करें और एक ऐसे सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक स्वच्छता तंत्र को बनाने के अपने संकल्प को दोहराएं जहाँ हर कर्मचारी का सम्मान हो, उसे सुरक्षा मिले और वो सशक्त बने.
0: So stay informed, stay responsible, and always value those who make our communities healthier and cleaner.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जुड़ने का.
0: So let's begin with Indie Hut. A celebration of India's rich handloom and handicraft heritage is being organized at the National Crafts Museum and Hastkala Academy in New Delhi. The festival features handcrafted and hand-woven products created by 48 artisans and weavers and 12 design-led handicraft and handloom brands from NIFT alumni. The carnival is being held till the 19th of this month. A report.
2: The special initiative has been thoughtfully curated by the National Institute of Fashion Technology to present India's finest craftsmanship in a contemporary and engaging manner. The crafts on display include gulabi meenakari, stone inlay, dokra metal craft, musical instruments, manuscript painting, bone inlay on wood, ustakala, pichwai art, sozni embroidery, malila clay craft, blue pottery of Jaipur, silver filigree and sherial painting. Visitors will also have the opportunity to witness live demonstrations of traditional craft techniques, offering an immersive experience of India's centuries-old craftsmanship. The event is interwoven with BharatTex 2026, India's largest global textile event, which will be held at Bharat Mandapam from today till 17th of July. Indie Hut is designed to showcase India's traditional artistry to an international audience. It aligns with the objectives of Atmanirbhar Bharat and Vocal for Local campaigns. With Aman Yadav, Soumya Sharan for Parikrama.
1: अनुजा, हमारे देश के जो कोने कोने की जो पारंपरिक विरासत है एक छत के नीचे जब मिलती है तो मन करता है जल्दी से जाया जाए और खूब सारी शॉपिंग करके उसको बटोरा जाए।
0: या दिस साउंड्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, यू मस्ट गो, वी ऑल मस्ट गो।
1: ठीक है, जाना चाहिए।
0: मूविंग ऑन प्रियंका, इंडियन स्टेट्स एंड देयर टेंपल्स रिचुअल्स वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द रीजन, द लोकल ट्रेडिशंस एंड द प्रिजाइडिंग डेटी देयर. But every temple has its own unique flavor, and today's reports from different states and regions gives us different flavors of our culture and tradition through the puja and the
1: rituals or jo hum
0: the temples there.
1: Temples.
0: So where are we beginning with?
1: सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो दो दिन बाद शुरू हो रही है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज है भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन हो रहा है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। क्या खास हो रहा है, अपने संवाददाता प्रकाश दास से जानते हैं।
3: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: And now from Orissa to a temple, a ritual of Meghalaya in the northeast area. Baidin Klam, the annual festival of the Panar, also called the Jantia community of Meghalaya, was celebrated earlier this month in Jowai town. We have a report on this.
4: Mainly celebrated by the followers of the Niyamtre, which is an indigenous faith, the 4 days of cultural celebrations offered prayers for health, prosperity and a bountiful harvest, while symbolically driving away disease and evil. According to the Niyamtre faith, the festival is also a symbolic reaffirmation of the community's resolve to overcome social evils and preserve harmony and righteousness. This year's celebrations witnessed thousands of devotees and visitors converging on Jowai to take part in the Baidin Klam festival. The most striking spectacle was the procession of the beautifully crafted rods, which are towering ceremonial structures made of bamboo and wood. The rods are carried through the town amid the rhythmic beats of traditional drums, and later they are immersed at the sacred pool, marking the culmination of the festivities. Another major attraction was the traditional wooden ball game played between teams representing different localities. The contest, which is deeply rooted in Jaintia tradition, is believed to herald prosperity and a good harvest for the winners. For Parikrama, Anumita Das, Akashvani, Shillong.
0: And now from Shillong to Andhra Pradesh, where the sacred cleansing ceremony Koil Alvar Tirumanjanam was performed with traditional Vedic rituals at the Tirumala Sri Venkateshwar Temple today, which is also known as the Balaji Temple there. And ahead of the annual Salakatla Anivara Asthanam Festival, which is to be observed on the 17th of July.
1: Anuja, Salakatla Anivara Asthanam, jo hai prasiddh Shri Venkateshwar Mandir Tirumala mein manaya jane wala ek pramukh varshik utsav hai, aur ye tyohar har saal July ke mahine mein dakshinayan ki shuruaat par vishesh roop se sankranti ke din manaya jata hai.
0: Ji.
1: To aaiye is par hamari samvaddata se jante hain kya khaas report hai.
5: Srinivasa Govinda. In temple tradition, Koil means holy shrine, Alvar means devotee, and Tirumanjanam refers to cleansing with aromatic ingredients. The Koil Alvar Tirumanjanam ritual is conducted 4 times every year before the major festivals of Ugadi, Anivarva Asthanam, Brahmotsavam and Vaikuntha Ekadasi to purify the temple before these important occasions. As part of the ceremony, the entire temple premises were thoroughly washed and cleansed with water. The purification covered the temple from the Ananda Nilayam to the Bangaru Vakili. Besides the subsidiary shrines, temple corridors, kitchen, walls, ceilings and all articles used for daily worship. During the ritual, the main idol of Lord Venkateshwara was completely covered with a cloth. After the cleansing, priests sprinkle a sacred fragrant mixture prepared with sandalwood powder, turmeric, kasturi, saffron, camphor and other aromatic ingredients throughout the temple. Later, special prayers and naivedyam were offered as per temple tradition. Darshan for devotees resumed after the ceremony. Allumurli for Parikrama, Akashwani News, Vijayawada.
1: अब अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं अनुजा। इंडस्ट्रियल जो दुर्घटनाएं होती हैं और जो वैश्विक टकराव है उनकी वजह से तेल के रिसाव की जो घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है असर पड़ रहा है। ऐसे में नदियों, झीलों और समुद्री तंत्र की सुरक्षा करना पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक तेल से दूषित पानी को साफ करने के लिए शाश्वत और पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं। पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही पर्यावरण अनुकूल जो तकनीक है उसे विकसित किया है। अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपनी संवाददाता माधवी का।
6: पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT के वैज्ञानिकों ने तेल से प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए पर्यावरण अनुकूल शैवाल आधारित यानी कि अल्गी बेस्ड तकनीक विकसित की है। DIAT में प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यन के नेतृत्व में यह प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के बारे में आकाशवाणी को अधिक जानकारी देते हुए प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यन ने कहा,
7: इनिशियल एक्सपेरिमेंट में जब डीजल और ऑयल को मिक्स करके हमने अब्सॉर्प्शन स्टडी किया था, उसमें हमको 20 मिनट में 10-20% का अब्सॉर्प्शन ऑफ ऑयल मिला था। देन हमने 2-3 दिन के बाद वो अब्सॉर्प्शन स्टडी किए, हमको 80-90% ऑफ अब्सॉर्प्शन मिला था। एंड अब्सॉर्प्शन के बाद हम उसको डिजॉर्व भी करते हैं, मतलब जो तेल जो अब्सॉर्ब किया है उसको हम निकाल भी सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं।
6: DIAT के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यह तकनीक पारंपरिक रसायन आधारित विधियों के विकल्प के रूप में अधिक पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ मानी जा रही है। परिक्रमा के लिए माधवी कुलकर्णी, पुणे।
0: And now we have another heartwarming news from Colombia. 5 Indian students recently won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held in Bucaramanga in Colombia. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Indian team, which delivered an exceptional performance this year. The 5 students were felicitated today at Mumbai's Homi Bhabha Center for Science Education, India's nodal center for Olympiad programs across disciplines. So let us go to our Mumbai correspondent to know more about this.
8: The Indian team, comprising Kanishk Jain from Pune, Riddhesh Bendare from Indore, Rishit Garg from New Delhi, Shresht Suraya from Mumbai and Swarit Joshi from Ahmedabad, performed exceptionally well this year in both the theory and experimental competitions, with all 5 students returning home with gold medals. To tell us more about this grueling competition and how the Indian team made its way to the top, we have with us the leader of the team, Professor Anvesh Mazumdar.
9: There were 85 countries with 381 students this year, and our students stood at the top of the medals tally along with 5 other countries. One exceptional thing this year was that all our students did very well in theory, achieving near perfect scores, but also in experiments, which is not something that is very much stressed upon in the school and the school education system. They did exceptionally well.
8: These 5 students have not only won gold medals to cherish for life, but have also set a benchmark for future teams. This is Ankit Apte for Parikrama from Mumbai.
0: And Priyanka, now let's go to the Causal district in Mizoram. You had something to say?
1: जी हाँ, मतलब जब अगर हम रिपोर्ट अपने संवाददाता से जानकारी ले रहे हैं और अपने श्रोताओं को बताने वाले हैं, तो आपको इस रिपोर्ट में ये मिलने वाला है कि नवाचार और आधुनिक कृषि पद्धतियां कैसे जो खेती बाड़ी है उसको और मजबूती प्रदान कर सकती है।
0: Yes, I was talking about this. The district has taken a step towards edible oil self-sufficiency with the launch of locally produced sunflower oil is extracted from crops cultivated by 120 farmers under the Centra's National Mission on Edible Oils, that oil seeds. This initiative demonstrated how innovation and modern farming practices can strengthen agriculture.
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां क्या हलचल है।
0: So, Delhi Chief Minister Rekha Gupta today unveiled the official mascot of the 22nd Commonwealth Table Tennis Championship in New Delhi, and the championship will be held from the 27th of this month till the 2nd of next month in Tyagaraj Stadium. And addressing the event, Ms. Gupta said that sustained efforts are being made by the Delhi government to strengthen sports and infrastructure.
10: हमारी सरकार का प्रयास है कि दिल्ली के खिलाड़ियों को, देश के खिलाड़ियों को हम दिल्ली राज्य में वो मौका दें जिसके वो अधिकारी हैं, ना केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके। और मुझे खुशी है कि आज जिस लेवल की प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है, जैसे 25 देशों से अनेकों खिलाड़ी यहाँ पहुंचेंगे।
1: और अब फुटबॉल के महाकुंभ का रुख करते हैं। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। और अब हम याद करेंगे जानी मानी हस्तियों को।
0: Right, and we begin with a humble tribute to Garimella Satyanarayanan on his birth anniversary. He was a poet and freedom fighter who influenced and mobilized the Andhra people against the British Raj with his patriotic songs and writings, for which he was jailed several times by the British administration. He himself used to sing a song which was a popular in the households of Andhra Pradesh during the Indian independence movement. It highlighted the poverty, exploitation and heavy taxation of the time.

0: ब्रिटिश काल के दौरान महान शिक्षाविद, समाज सुधारक, चिंतक गोपाल कृष्ण आगरकर का आज ही के दिन 1856 को महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। वे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, न्यू इंग्लिश स्कूल जैसे शिक्षा संस्थानों के सह संस्थापक रहे। लोकमान्य तिलक की केसरी पत्रिका के वे पहले संपादक भी बने। उसके बाद उन्होंने सुधारक नाम से अपनी अलग पत्रिका शुरू की। विधवा विवाह के समर्थक गोपाल कृष्ण आगरकर ने जातिवाद के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने का काम अपने लेखन और विचारों के माध्यम से किया। मात्र 39 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया था।
1: And we also pay tribute to B. Saroja Devi, the legendary Indian actress widely regarded as the first female superstar of South Indian cinema, passed away on 14th of July in the year 2025 at the age of 87. Over a prolific seven-decade career, she starred in over 200 films across Kannada, Tamil, Telugu and Hindi languages, earning the titles Abhinay Saraswati. And she worked in Telugu, Tamil, Kannada cinema, and she had many awards and accolades to her name. Her immense contribution to the arts were recognized at the highest levels by Padma Bhushan, Padma Shri and Kalaimam Mani Award from the state of Tamil Nadu, as well as the honorary doctorate from Bangalore University.

0: ठेले। And today we also pay tribute to the legendary Indian music composer Madan Mohan Kohli. Widely revered as the Ghazal King of Hindi cinema, known for his velvet-dipped timeless melodies, he seamlessly blended Indian classical music with cinematic expression to create enduring classics alongside iconic playback singers like Lata Mangeshkar, Mohammed Rafi and Talat Mehmood. The maestro of melody, Madan Mohan's compositions are celebrated for their rich harmonies, deep emotional resonance and sophisticated use of semi-classical roots.
1: बिल्कुल, मदन मोहन ने फिल्मी जगत को संगीत के बेहतरीन उपहार दिए और काफी समय तक वे आकाशवाणी के साथ भी जुड़े रहे। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म 1950 में आई आंखें थी, अंजाम, मेम साहब, भाई भाई, चिराग, अनपढ़, ही रांझा जैसी फिल्मों के गीतों को उन्होंने अपनी धुनों से सजाया।
0: Yes, so we have made a medley of his iconic masterpieces.

फिल्म दस्तक के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि उन्होंने 1948 में आई फिल्म शहीद और उसके बाद मुनीम जी जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया।

द्विवेदी। अब इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। प्रियंका अरोड़ा और अनुजा कुमार को दीजिए इजाजत कार्यक्रम यही संपन्न करने की। नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरम्भ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 5 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदननगर, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनक पुर, डकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा और उदयपुर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, असकला, दोरना, जरहाडी, मानपुर, महेशपुर, जगन्नाथपुर, लक्ष्मणगढ़, सस्कालो के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, दुलदुला, तपकरा, पत्थर गांव और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये बंदर चुहा, डोडा पानी, चूल्हा पानी, साजा पानी, गट्टी बुड़ा, करडेगा, हल्दी मुंडा, सिकीरमा, बिदुरपुर, गारीघाट, अंकिरा, टिकली पारा, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, झिक्की, परसाडाण, पेटा, कोडेग, सामरबार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्म जयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 97 है। ये महाराजगंज, बंगरसूता, कुड़ेकेला, बोजिया, सिंघीछा, बनहर, लोटान, कंचीरा, पोटिया, तेंदुमार, सीलिंगपारा, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कटकोना और जिलगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। कटघोरा वनमंडल के केंदई, एतमानगर और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भोड़ूपानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरीकादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सेमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, नागदरहा, पंडरीपानी, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, तालदादर, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
0: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

सबसे पहले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, आज रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8:15 पर लोक संगीत में कलाकार होंगे मेहतरराम साहू और साथी। रात 9:30 पर आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में हल्बी गीत के कलाकार होंगे सहदेव कश्यप और साथी। रात 10:00 श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का आनंद आप लेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रूप कुमार सोनी का सितार पर बजाया राग कौन सी कानड़ा आप सुनेंगे आज रात 10:30 पर। आज शाम 7:21 पर किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा हरियाली ले रोजगार पावन मानसून मां नर्सरी लगावन। 7:30 पर किसानवाणी में फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानवाणी का विषय है नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। जानकारी देंगी विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी की मनीषा खापड़े। संचालन करेंगी पूजा चंद्रवंशी। प्रस्तुतकर्ता होंगे शशि प्रकाश पांडे। आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आज शाम 5:10 पर युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी में अपन गोट का विषय होगा गांव लगलो जरूरत है प्रतिभा के और क्रम होगा सवाल जवाब और माटी के गीत का। चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे शाम 7:00 रात 8:00 और रात 9:15 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

और अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 8:15 पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा एक पूर्वावलोकन ये कार्यक्रम, और रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, और रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक प्रसारण सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। सुबह ही 8:30 पर आप सुनेंगे आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र। कल सुबह 9:00 गांधी चर्चा कार्यक्रम में महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ होगा। कल सुबह 9:40 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे संतोष दिवाकर। कल सुबह आप सुनेंगे 11:05 पर श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। दोपहर में 12:30 पर सुगम संगीत में फनकार होंगी ताहिरा सईद, और शाम 6:30 पर सुगम संगीत में फनकार होंगे मधुरानी और चंद्रमोहन वर्मा। हंसा नहीं आयो ये छत्तीसगढ़ी नाटक आप सुनेंगे कल दोपहर में 1:30 पर। लेखक श्री जीवन यदुराही, निर्देशक होंगे मिर्जा मसूद। कल शाम 5:10 पर यशोताओं के कार्यक्रम युववाणी में क्रम आजकल का विषय होगा विश्व युवा कौशल दिवस, और साथ ही क्रम पत्र मिला और यादें का आनंद आप लेंगे। कल शाम 7:21 पर किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल में पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिले से आप सुनेंगे, और साथ ही बहुवर्षीय चारा नेपियर घास के सफल उत्पादन इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। 7:30 पर आज की सलाह में घर को खूबसूरत बनाएं लैंडस्केपिंग अपनाएं इस विषय पर तोरण लाल साहू द्वारा दी गई जानकारी आप सुनेंगे, और साथ ही होगा आज का प्रश्न। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 5:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: अमावस के अंजोर खोजत अषाढ़ के पार आरोप आवत हवन, गांव के युवा मन संग मिल के नवा सपना ला सजावत हवन, माटी के महक और मेहनत संग सुरला जगमा पहुँचावत हन, युवाणी के संगी संगवारी बन के गोठियाए बर हमन आवत हवन। तेखे संग स्वीकार अपन संगी सुमित तिवारी
1: और नेहा चौहान के
0: राम
1: राम जय जोहार। सुमित, भारी कविता के सुर बांधत है जी।
0: भाई नेहा, जैसे बरसात आते तो माटी ह खुश हो जाते नहीं, वैसे महू हा ए मौसम आते ना तो खिल जाता हूँ, और तहाले मोर अंदर के कवि है जाग जाते।
1: फिर मोला ना भारी किचिर काचल लगते।
0: काबर भाई?
1: ये पानी बरसात हा सबो कोती चिखला और भुइया के ओगरन नानन प्रकार के कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु ला देख के कहत हूँ।
0: ठीक ठीक ठीक भाई, वो तो मोहन लगते, फिर कैसे करवे है? पानी बरसात है तो सबो के सबो ला बाढ़े के मौका देते।
1: सिर तो कहे सुमित, और अब तो जमाना बदलत है, गांव मा तको तकनीक अपनावत जावत है।
0: भाई गांव में कुछ चीज के कमी नहीं है संगी, कमी है ता जागरूकता के, कमी हवा ता आत्मविश्वास के, नवाचार के, और दिमाग लगाबो ना तो कमाए बर घर ले बाहर जाए के जरूरत नहीं पड़े, सब चीज ही डार मिल जाते।
1: खेती मा अतका आर्थिक संपन्नता है तेला नवाचार संग हम नहीं जोड़न।
0: सेतोन बात।
1: आओ अब संघार देबोन ता पारंपरिक खेती संग और आने आने खेती, डेरी, गोबर गैस असन कतकोन तकनीक के आगू बढ़ के।
0: बिल्कुल भाई, बार अगर युवा मन चाहे तो बहुत अकन गांव में भी मन है तकनीक निकाल सकते जेखर से उखर मन के रोजगार मिलते है ना भाई। पहले के जमाना में गांव के लड़का मन है कहाँ जावत रही ने, स्कूल ले घर, घर ले खेत, खेत ले तरिया और तरियल फिर वापस घर। फिर आज के बेरा में वही लड़का मन है स्कूल ले मोबाइल, मोबाइल ले रील और तहाँ गेम और तहाँ चार्जिंग सिरा के तहाँ फिर वाला मोबाइल में धर के बैठ जाते हैं। और यही बीच में प्रतिभा है ना रद्दम खड़े खड़े सोचा थे हैं कि भाई मोहल मौका दू तो मैं तुम्हें मंत्री आवा की के किसे।
1: गांव के समस्या ये नहीं है कि प्रतिभा नहीं है, समस्या ये है कि प्रतिभा ला पहचाने वाले कम मिलते।
0: सिरतोन कहे भाई तहें कई जन लेका गजब गाना गाते संगी, कोनो विज्ञान के प्रयोग करते तो कोनो खेल मागे थे, फिर वही कोनो कोनो लोगन मन कागे थे ये सब तो ला रहन दे रिंगी चिंगी ला, पहली बोर्ड के परीक्षा पास कर ले फिर दुनिया बदल भी की हैं।
1: संगी हो, प्रतिभा के जन्म तक गांव के माटी ले घलो होते।
0: सिरतोन भाई,
1: सिर्फ सुमित एक बात पूछा,
0: का पूछ भाई?
1: गांव के कोनो लड़का डॉक्टर बन जाते, कोनो इंजीनियर बन जाते, कोनो अफसर बन जाते, तब गांव वाले का कही थे?
0: गांव वाले मन का कि खुश हो जाते हैं, और कोनो कोनो छोड़ के भाई फिर हमारे गांव के मन हका के थे या ये लड़का हमारे गांव के नाम ला रोशन कर दी इसकी के।
1: और जेन गांव ओखर ऊपर गर्व करते का वही गांव ओखर बर जगह बना पाते?
0: ये ते हैं प्रश्न लबन भारी गंभीर प्रश्न करे स्नेहा। भाई आजकल ये हालात हो गए हैं संगी कि गांव के होनहार मन पढ़ लिख के शहर को भाग जाते और गांव खाली हुआ था वह और शहर भारी हुआ था वह।
1: एक समय रहिस जब गांव के चौपाल में ज्ञान के बात हुवत रहिस, किसान मौसम के चिन्ह बता देत रहिन, लोहार बिना इंजीनियरिंग पढ़े मशीन बना देत थे, बड़का बुजुर्ग बिना किताब पढ़े जीवन के विश्वविद्यालय रहिन।
0: फिर धीरे धीरे धारणा बन गए कि जेन पढ़ ली जाही वह शहर कोती जाही और गांव पढ़े लिखे मनखे बर बनेच नहीं है, इसे सब लोगन के गलत धारणा हो गई भाई।
1: एक झन लड़का हा गांव ले पढ़ के इंजीनियर बनीस, नौकरी शहर में लगीस, 5 बछर बाद गांव आईस, देखीस कि खेत में पानी के दिक्कत अभी घलो हवे, किसान अभी घलो बरसात के भरोसा में है। ओखर दिमाग में विचार आईस, मैं सोलर पंप के योजना बनाऊं, फिर गांव वाले कहीं बाबू तो नौकरी बढ़िया चलत है, ये झंझट में काबर पड़ा था, अब बस बात खत्म।
0: यही तो समस्या है कि गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है संगी हो, समस्या है ता प्रतिभा हा गांव ला अपनाए बर तैयार नहीं है।
1: गांव में प्रतिभा के जरूरत काबर है जानता सुमित?
0: काबर है भाई बता दे।
1: काबर के गांव केवल खेती के नाम नहीं है, गांव भविष्य के प्रयोगशाला है। ये खेती में ड्रोन चलत है, मोबाइल ले बाजार भाव देखत जाते, ऑनलाइन पढ़ाई होवत है, डिजिटल भुगतान होवत है, फिर ये सब ला गांव में कौन बढ़ाई?
0: गाँव के वही प्रतिभाशाली युवा मन कैसे
1: हाँ
0: नहीं भाई मोर गाँव में एक झन लेकर रही से नेहा मोबाइल सुधारा सुधारत इलेक्ट्रॉनिक सीख गए आवाज पूरा इलाका में न हो मशीन ल सुधारथे डिग्री नहीं है फिर प्रतिभा तो भरपूर आवे
1: प्रतिभा केवल किताब में नहीं मिले प्रतिभा अनुभव में मिलते मेहनत में मिलते समस्या के समाधान खोजे में मिलते
0: बिल्कुल भाई और आज के जरूरत है संगी हो कि गांव के युवा मन गांव के समस्या ला ना चुनौती समझे और ला दुरिहा बर प्रयास करे संगी हो गांव के प्रतिभा शहर के चमक में गुम हो जाते फिर गांव के प्रतिभा गांव में रह के ना हजारों जिंदगी ला बदल सकते एला सोचना चाहिए हमन ला है नहीं
1: संगी हो हमन अक्सर कही थन गांव पिछड़ गए है फिर सवाल ये है गांव ला आगे बढ़ा ही कौन
0: बिल्कुल भाई
1: शहर वाले मन नहीं आवे गांव ला आगू बढ़ाए बर बढ़ाई ता उही गांव के पढ़े लिखे समझदार और प्रतिभाशाली मन की मन
0: बिल्कुल भाई ये तो है पोट खे भाई काबर अपन कारज ला अपने करबे तो ज्यादा वह फलदायी थे है नहीं और ज्यादा सुघरा रूप ले करे जाते भाई कोनो भी किसान के बेटा हा वैज्ञानिक बनही और अपन ज्ञान ला गांव के किसान मन ला बताही मन के नवा तकनीक बताही तो किसान मन के तको आय हा दुगना हो सकत है कोनो शिक्षक है शिक्षा देवैया है तो गांव में गुणवत्ता ला बढ़ावा है शिक्षा के तो गांव के दर्जनों लइका मन के ना भविष्य बन सकते हैं इसने कतकोन उदाहरण हवा है जिंदगी जखर ले गाँव के परिवार मन की जिंदगी ना सुधर जाते
1: एकर मतलब ये नहीं है कि शहर जाना गलत है शहर जवाब सीखे बढ़ाओ फिर अपन गांव ला झन भुलाओ
0: बिल्कुल भाई हमला संगी हो जतका युवा मन है जिन शहर जावा था ना पढ़त लिखे बार ते मन आप मन जावाओ वहाँ शहर में सीखाओ पढ़ाओ गुनाओ फिर अपन जिन यहाँ नेवरगढ़ है ना तेर जगह भुलाओ झन वापस वहाँ आओ अपन जतका ज्ञान के पोटरी है ना तेल वहाँ बगरावाओ है काबर जी हाँ जन्म हुए है ना ते यहाँ हुई हमार गांव हमार पहचान है हमार संस्कार है और हमार जड़ हरे
1: जड़ मजबूत रही ता पेड़ घरो मजबूत रही
0: बिल्कुल भाई
1: आज गांव ला सड़क अस्पताल इंटरनेट के जरूरत ता हवे फिर संग मा सबले ज्यादा जरूरत है प्रतिभाशाली मनखे के
0: बिल्कुल भाई काबर की सड़क तो सरकार बना सकते मकान तको सरकार बना सकते फिर सपना विकास नेतृत्व एला गांव के प्रतिभाशाली लोगन मन ही बना सकते संगी हो है हमन तो रामराज के सपना तो देखथन फिर ओखर कहेला कहाँ मानथन भगवान राम कहे रही ना कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी माने सरग ले बड़का है अपन जन्मभूमि है और राम जी है एकर कहिस कि एकर बार सोन के लंका से ना कतकोन जिनिस के त्याग कर देना चाहिए कि के है नहीं
1: हम जिहा रहेबो जेन काम करबो अपन गांव बर जरूर करबो काबर कि गांव केवल खेती के मैदान नहीं है गांव भविष्य के मैदान है
0: और भविष्य तभी बनी संगवारी हो जब गांव में प्रतिभा रही प्रतिभा के सम्मान रही और प्रतिभा ला अवसर मिली तावा संगी हो अपन फर्ज ला निभावन और अपन गांव ला अपनावन।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चन ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: नेहा भाई, आज कौन सा वार है बता तू?
4: आज मंगलवार है।
3: और मंगलवार माने ज्ञान के खजाने के दिन है ना। और संगवारी मन अगोरा करा थे कि कब सुमित और नेहा हाँ ये दिन के सुघर अकन क्रम ला शुरू करती थी, माने क्रम सवाल जवाब ला। तो संगी हो आपके बेरा ला दुरियावत हवन और चलाओ शुरू करथन क्रम सवाल जवाब। तो नेहा पहली पाछू अंक में पूछे गए जिन सवाल से तेखर सही जवाब बता देथन है ना। तहाले फिर संगवारी मन जिन अपन जवाब पठो है तिन संगवारी मन के नाम ला पढ़ देवो है ना। तो संगी हो क्रम सवाल जवाब अंक 238 के पहली या सवाल ल जान लेथन और जवाब ल जान लेथन।
4: तीजन बाई, तो पहला सवाल है तीजन बाई पंडवानी के कौन से शैली में अपन प्रस्तुति देवे?
3: संगी हो एकर सही जवाब है कपालिक शैली। पंडवानी में दो प्रकार के शैली होते, वेदमती और कपालिक। वेदमती जेमा पंडवानी ला बैठ के गाए जाते और कपालिक जेमा पंडवानी ला खड़े होके प्रस्तुत करे जाते।
4: तो दूसरा सवाल है संगी हो, विश्व में कौन से संख्या हा अनुशासन और शांति पर काम करते?
3: संगी हो एखर सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र संघ। एखर स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुए रही से।
4: तीसरा सवाल है 7 जुलाई, तीसरा सवाल रहीस 7 जुलाई 1999 में कौन ती वीर सपूत अपन शहादत ले रहीस जिखर नारा रहीस ये दिल मांगे मोर?
3: और एक सही जवाब है संगी हो कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: चौथा सवाल है संगी हो, पीएम किसान योजना के तहत किसान मनखे मन ला एक बछर मा कतके राशि दे जाते?
3: एक सही जवाब है संगी हो 6000। और ये योजना के शुरुआत 1 दिसंबर 2018 मा लागू माने गए से, फिर 24 फरवरी 2019 मा इला अपनाई गई।
4: तो पांचवा सवाल रही संगी हो, ब्रिक्स मा एस कौन देश के प्रतिनिधित्व करत है?
3: संगी हो यंग खातिर सवाल रही से पांचवा सवाल रही से कि ब्रिक्स मा एस कौन से देश के प्रतिनिधित्व करते, जेकर सही जवाब है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स मा 5 देश के संयुक्त रिहावे संगी हो, जिमा है बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से भारत इंडिया और सी से है चीन और एस से है दक्षिण अफ्रीका, जेकर जेमा साउथ अफ्रीका ला 2010 में जोड़े गई रही हवे।
4: तो आखिरी सवाल रही संगी हो, छत्तीसगढ़ी जनौला करिया गाय कौड़ी खाए दूध ला छोड़ के मनखे खाए?
3: और संगी हो यंग ये सवाल के सही जवाब रही से चप्पल और पन्ही। तो संगी हो ये तरी से क्रम सवाल जवाब अंक 238 के सवाल औखर जवाब मन है। तब जान लेथन जिन संगवारी मन हमला सही सही जवाब पठो है तीन संगवारी मन के नाम ला, जिन मन 6 सही जवाब पठो है तीन संगवारी मन के नाम हवाए। गेंदा टोला ले वीरेंद्र कुमार, अंजलि, योगिता, गजेंद्र गुप्ता। बन बघेरा ले हवाए योगेश, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा मन। पुतकी कला कंवर्धा ले है राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, नयन, सुमांशु पांडे मन। डुमा टोला मंगचुआ बालोल ले संगवारी है भगवानी राम काटे, गोपिका, भावेश, माधुरी काटे मन। लोरमी चचिड़ी ले है कमलकांत मराबी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मराबी। बोरसरा नैला ले है प्रमोद, भीमा, वैभवी, विभूति साहू मन। परसा टोला ले है ओम प्रकाश, मसिया, सिलोचनी, तुषारणी, खुमेंद्र, मसिया मन। जवाहर नगर दुर्ग ले है आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी, विपुल कामड़े मन। नवागढ़ कटेले है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, शारदा, मयंक वर्मा मन। और दतरेंगी भाटापारा ले हवे नोखेलाल, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा मन। बंगला मटिया बालोर ले संगवारी हवे शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे मन। कुमारदा ले है ताराचंद साहू।

0: माही धर्मेंद्र साहू मही दही साजा लेहे हेमा देव विभु विशु साहू मन ह और देवर बीजा बिरला लेहे दिनेश सृजन रूपेश राजपूत मन सलोनी राजनांदगांव लेहे पुरानी राम साहू सीताबाई प्रियांशु गौरव साहू मन मड़ौदा जाल बांधा ले संगी हे पारकदास साहू किरण साहू रेशमा सोनू गुनीता साहू मन कोलिहा पुरी लेहे सूरजभान साहू कमलाबाई साहू सलोनी घुमका लेहे देवचरण हेमा वेदांत वैभव साहू मन लोडमी चचड़ी लेहे कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मन पोटिया कला दुर्ग ले हमार ये संगी मन है संजय सुजाता शशांक सीमा साहू सहा मालगी लेहे सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी पूनम चंद्रवंशी मन राणा टोला मोहला मानपुर लेहे रमेश कुमार पटेल दुष्यंत यशोदा देवी पटेल मन भाटापारा लेहे बचकामल मोतीलाल यादव प्रसंत भृगु विनय ठाकुर चुवाराम वर्मा मन छोटे मुड़पाल खरसिया रायगढ़ लेहे किरण सिन्हा सिद्धि विनायक सिन्हा मन और कागदेही समुदाय लेहे रोहित कुमार नंदिनी अमन साहू संगी मन
1: मजेवा महासमुंद से है जवाहरनाथ सिन्हा दीक्षा सिन्हा भूमि गेमर नारायण लाल जगौती सिन्हा खल्लारी भीम खोजले जी एल सरोज छोटी पिंकी साहू देहान बंधा बाजार राजनांद गांव से हरिओम रेवाराम रानू सरस्वती प्यारी राम साहू परामंद साहू
0: बागभारा भदरसी लेहे पन्ना लाल खुशबू तारा कौंसल सेन मन देतरिंगी भाटापारा लेहे द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक झवेंद्र कुमार वर्मा मन सहसपुर लोहारा दनिया लेहे गुनीराम राजपूत संतोषी हेमप्रभा पुष्पराज सूरज राजपूत मन अमलीडी कंवरधा लेहे संतोष राजपूत हेमप्रभा पूर्वी गौरव राजपूत मन और चांदनी चौक गंडई पंडरिया लेहे पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविंद्र रौनक सेन मन आवरा डबरी लेहे श्यामलाल साहू मोंगरा संगीता केसरी चिंकी साहू मन पिपरलोड सरगांव लेहे दीपेश पूनम ज्योति शिवांश वर्मा मन भीमखोज तरपोंगी लेहे संतोष गुप्ता हितेश होमेश लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता मन भानपुरी मुसरा लेहे आत्माराम यादव सुखदेव विदेशी होमेश्वर मनेश्वर लाक्षी तुलसी यादव संगी मन गुड़ा राज लेहे मनोज साहू चित्ररेखा देवेंद्र लवीना चंचल वासनी गरिमा साहू मन बाघामोड़ा कुमा खान लेहे प्रज्ञानंद देवांगन नंदिनी प्रकाश गायत्री यशवर्धन यशस्वी देवांगन मन साले भाटा लेहे जित्तू केवल किरण दिव्यांशी खेमुध्रु भदरसी लेहे घनाराम गीतेश दीपेश निर्मला सेन मन पलारी लेहे नितेश दुर्गा प्रसाद लखनलाल ईशांत देवांगन मन डोंगरगांव लेहे राष्ट्रपाल गजभिये बेबी अनिस्का तनमय गजभिये मन बिलाईगढ़ लेहे रोशनलाल कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन और रोहांसी लेहे मुकेश नंदिनी मनीष मयंक साहू मन दतरेंगी लेहे विश्राम यदु पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदुमन चरोदा पलारी बलोदा बाजार ले संगवारी हावे गेंद सिंह जयसवाल प्रेमीन राखी जयसवाल मन टिकरा पारा रायपुर ले लता देवी चौहान मन संतोषी नगर रायपुर लेहे छन्नू लाल यादव पुष्पलता अर्पिता अनुराग बलदाऊ राजेश्वरी आस्था अभिषेक यादव मन और अड़ा नानघाट लेहे माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा मन कोरासी भैसा रायपुर लेहे पवन कुमार क्रांति देवी पंकज सुस्मिता दीपिका साहू मन भड़गा कोदवा गोड़ान लेहे श्याम सिंह राजकुमारी रानी रजनी राहुल मरावी मन भंगी टोला लेहे ननका राम जामुनबाई फिरित राम मालती ध्रुवे आमा खोड़ा रेंगा खाल लेहे देवी सिंह राजेंद्र सिंह दक्ष प्रिया गीत सरगम नितामन बठेना पाटन ले बलकरण वर्मा अंजलि ज्योति निधि निखिल प्रयाण शिवम मनहरण वर्मा मन मेचका सोनहू लेहे श्यामलाल महेश्वरी यशवंत प्रेमेश्वरी साहू कोटना पानी डोंगरगढ़ लेहे कैलाश कुमार लीलेश्वरी रूपेश कुमार गरिमा नोनी छनिस्का औदादुमन सिंगाड़वाली घुटकू लेहे भगत राम पटेल किशन सोनम मानवी पटेल संगी मन
1: पथरिया भरवा से चंदूलाल नारायणी नोमेश नेहा वान्या सिरोल रागिनी रंगिनी से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा अमलेश्वर से डोमन सुमन ज्योति रेयांश ठाकुर मुंडा टोला डोमेंद्र कुंगेश्वरी चंचल कामेश माहिर नेताम
0: रिंगनी छत्तीसगढ़ ले संगवारी मन हवा दिनेश वर्मा करुणा मनवा मन और मेचका नगरी ले हवा भूपेश पूर्णिमा लिखिल तरुणदीप नागमन रानी गांव नगरी लेहे खिले चित्ररेखा शुभम सेजल साहू ढोंडरी घोटिया लेहे महेश रंभानारी निखिल नैतिक पुष्पांजलि स्वप्निल कुमार निषाद पालचुआ मुंगेली ले संगवारी हवा उत्तरा परमेश्वरी भानु प्रिया योगिता नितिन वंशिका देवाकर मन हटौत बाजार लेहे कमल नाथ राकेश कुमार समीन राजकुमारी पटेल मन बोगाटोला मोहला मानपुल्ले हवा मालिक राम सिन्हा तारामती मुनेन्द्र इंदु चांदनी सविता सिन्हा मन चंडोगरी पिपरिया लेहे दुर्गाराम अजय जय किशन इंद्राणी किशन कुमारी माया साहू मन डोंडी लोहारा बालोद लेहे देवशंकर अजय देव तुषार देव तामुरिया डॉली बेबी पूजा आरती प्रभा तामुरिया मन सैगा मगरलोड ले हवाए फनीस कुमार चंदन सावित्री मोहित देविका रानी गजेंद्र पाथ हिमांश चंदन मन यवत माल विदर्भ महाराष्ट्र लेहे संतोष खड़से विनोद खड़से मन उमर मेहर उमड़खेड़ महाराष्ट्र लेहे अभिजीत गंवाड़कर राही सरिता गंवाड़कर मन और बदलापुर मुंबई ले संगवारी हवाए सिद्धांत प्रणीता गंवाड़कर मन हजदा नंबर दो ले है कमलेश जितेंद्र दिलीप प्रवीण पायल लक्ष्मी गीतांजलि आकांक्षा पार्वती टिकेश्वरी नागेश्वरी तुलसाराम साहू मनहा और कांकेर संबलपुर ले है फागु राम ज्योति ओजस्वी यादव देवरी भाटापारा ले हवाए गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी गणेश राम मिस्त्री पुराना छुईखदान ले है धर्मेंद्र जंघेल संतराम लोधी नागेश्वर जंघेल और पगबंधी धमधा ले है प्रकाशमणि छेदैया पुष्पा कुमारी आंचल अंकुश हरिकेश छेदैया मनहा बुड़ेला राजा पड़पोड़ी लेहे रामेश्वर छेदैया नारायण मेरावी पंचू मेरावी मनहा सोना खान लेहे उमेन खेमलता कामेश हंसिका लकेश्वरी रुचि निमी पैकरा समडील नवा पारा लेहे मुकेश दीपक गुप्ता मनहा पिपरिया लेहे कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता संगी मनहा तो संगी हो ये तरी समर सही जवाब पठोया संगवारी मन के नाम हा तो नेहा जतका संगवारी मन अपन सही जवाब पठो है तीन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई तो संगी हो आपन सुघर अकन अपन जवाब ल पठोए हो तब आप मन अगोरा करत हो कि झटकुन आप मन ला अगला क्रम के सवाल ल बता देन की के फिर संगी हो बताबो अगोरा करत हो कन ओखर बीच मन आप मन पेन और कागज ला धर के तैयार हो और इस सुघर अकन गीत के आनंद लेवाओ

0: संगी हो, अपन अभी अपन सुनत रहे हो जिन गीत ला, तेरा अपन सुर में सजाए हुए लता खारपड़े राम शरण वैष्णव मन।
1: अवेल अपन अंतसले सुने बचाहरीन हमार ये संगी मन हा, जे मन है नवागढ़ कटेले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा, शारदा दामनी वर्मा मन, भाटापारा ले है दान सिंह रावत, दानू पद्मनी, शुभम सौरभ रावत मन हा, शीतला नगर दुर्ग ले है शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, और सिमगले संगवारी हावे रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव संगी मन हा। तो नेहा संगी मन हा पेन और कागज ला धर के तो गोरा करत है,
0: हाँ।
1: कब नेहा हा झटकून हमला अगला हमार क्रम के सवाल बता देते इसकी के, है ना। तो संगी हो चलो सवाल जवाब के क्रम, सवाल जवाब के सवाल लिखथन। तो क्रम सवाल जवाब अंक 239 के पहले यह सवाल ला नेह बता जाही।
0: तो पहले यह सवाल है संगी हो, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल के वैज्ञानिक नाम का है?
1: तो संगी हो क्रम सवाल जवाब अंक 239 के पहले यह सवाल हवा है, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल के वैज्ञानिक नाम का है?
0: दूसरा सवाल है संगी हो, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध गुफा मन के नाम बतावा।
1: यंग खातिर हमारा दूसरिया सवाल है संगी हो, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध गुफा मन के नाव बतावाओ।
0: हमर तीसरा सवाल है संगी हो, बैडमिंटन मा भारत के प्रसिद्ध पुरुष खिलाड़ी कौन हवे जेला अर्जुन अवार्ड से 2022 में सम्मानित करे है?
1: यंग खातिर हमारा तीसरा सवाल है संगी हो, बैडमिंटन में भारत के प्रसिद्ध पुरुष खिलाड़ी कौन हवा है जेला अर्जुन अवार्ड 2022 में सम्मानित करे गए रही से?
0: हमार चौथा सवाल है संगी हो, विश्व के सबले ज्यादा समय क्षेत्र टाइम जोन कौन देश के हवा
1: है? यंग खातिर हमारा चौथा सवाल है, विश्व के सबले ज्यादा समय क्षेत्र माने टाइम जोन कौन देश के हवाए?
0: हमार पांचवा सवाल है संगी हो, छत्तीसगढ़ी जनावला एक ठी महल 12 ठी कमरा हर कमरा मा 30-30 नौकर बताओ का है?
1: संगी हो यंग खातिर हमार पांचवैया और छत्तीसगढ़ी जनावला सवाल है जिन्हें नए प्रकार ले है, एक ठी महल 12 ठी कमरा हर कमरा मा 30 नौकर काय हरे बतावा।
0: हमार आखिरी सवाल है संगी हो, महाभारत मा नकुल के शंक के नाव का रिहिस?
1: संगी हो क्रम सवाल जवाब अंक 239 के छठवा और आखिरी सवाल है, महाभारत मा नकुल के शंख के नाव का रिहिस हवे? तो संगी हो ये तो रही से क्रम सवाल जवाब 239 के पूरा 6 सवाल मन है। अब आप मन है झटकून तैयारी में लग जाओ और एक जवाब ला खोजाओ। तो अपन जवाब ला पठोए बर हमार पता ला लिख लो संगी हो, चिट्ठी पाती के माध्यम से अपन जवाब पठोए बर हमार पता हवे, क्रम सवाल जवाब अंक 239 युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर, और संगी हो पिन कोड हवा 492001, और आधुनिक पाती माने ईमेल के माध्यम ले तको आपन हमल अपन जवाब ल पठो सकत हो, जेखर बर हमार ईमेल आईडी हवे AIRYOUTH9@gmail.com। तो संगी हो क्रम सवाल जवाब इहें तक, तो आवा सुनथन एकरे संग ए सुघरकन गीत ला।

0: संगीओ आप मन अभी सुनत रहे हो माटी के गीत ला जेला अपन सुघर स्वर में पिरोए है सोम ठाकुर और साथी मन
1: ओला अपन अंतसले सुने पर चाहरीन हमारे ये संगी मन हा जिन मन है पठेना ले बलकरण वर्मा अंजलि ज्योति रेखा धनेश्वरी मन वर्मा चटौदा सारागांवले सुजान सोहाद्रा आयुषी कृत वर्मा मन पोटिया कला दुर्गले संगी है संजय साहू सुजाता ससांग सीमा साहू और रिंगनी छत्तीसगढ़ है दिनेश वर्मा करुणा वर्मा संगी मन हा।
0: अषाढ़ के सुघर महीना चालू हो चुके हैं।
1: बिल्कुल भाई तो चारों कोती कतका सुघर सुघर हरियाली पसरे ना नेहा।
0: ऐसन सुघर मौसम मा जब ठंडा ठंडा हवा चलते तब मन और मति एकदम मगन हो जाते।
1: बिल्कुल भाई ये सुघर मौसम के प्रभाव है इसने है जी कि सब कोती ना हरियर बगरा जाते और ऐसे दिखते कि मानो भुइया के प्यास बुझ गया हवे तैसन सुघर सुघर गोड़ तो चलबेज करत रही। फिर चलो सुनथन संगी हुई सुघर अकन गीतला।

0: संगी हो, आप मन जिन गीत ला सुनत रहे हो तेला अपन सुर में पिरोए है गंगा दास मानिकपुरी और साथी मन।
1: अविला सुने पर चहरीन है बेमेतराले सुरेश कुमार साथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत ब्रिजेंद्र, बीरेंद्र कांत साथी मन, अमरदी खुर्दले है, अरमरी खुर्दले है, चुरामा लालवालडे, जैनी त्विष्टा, अक्षत वालडे मन और सिमगा लेहे लवकुश सेन, प्रहलाद, आदित्य, आशीष, प्रकाश सेन संगी मन। तो संगी हो झटकुन जान लेथन हन काली के कार्यक्रम के बारे में।
0: काली के कार्यक्रम है संगी हो हिंदी में जेमा क्रम आजकल में रही विश्व कौशल दिवस और पत्र मिला यादें।
1: संगी हो आज के कार्यक्रम आप मतलब कैसे लगी हमला अपन पाती लिख के जरूर बताऊ। तो यही विचार सन सुघर अपन संगी सुमित तिवारी
0: और नेहा चौहान के
1: दो विदा नमस्कार।

0: अभी आप युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, 6 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
2: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है, और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पर जो भी हमला हुआ वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की, लोगों की जान गई है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर 0 शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन

0: उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 32वें ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो।
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष प्रदेश में खातू और बीजा के मुद्दा उठाइन। प्रदेश में खरीफ मौसम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई ले पंजीयन के काम शुरू और राज्य शासन है राजीव नगर पंचायत ला नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दे है। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज शून्यकाल में खातू और उन्नत बीज के कमी लेके विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहने के खातू और बीजा पर किसान मन भटका थे। ये बच्छर वर्षा घलो कमती हो है जेखर ले बोनी पिछड़ गए है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंता कहने की डीएपी पोटास जैसन खातू मिलत नहीं है। अपन जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम कहने की प्रदेश में खातू और बीजा के कोनो कमी नहीं है। उमन बताइने कि प्रदेश में 14 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा के उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है जौन लक्ष्य के 90% है। उन्हें मांग के विरुद्ध 96% बीजा के भंडारण कर ले गए है। श्री नेताम बताइने कि खातू के 94 नमूना जिहा ले आमानक पाए गए है ओखर मन ऊपर कार्यवाही करे गए है। मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट विपक्षी सदस्य मन सदन में नाराबाजी करत गर्भगृह में पहुंच गए जेखर बाद उमन खुदे निलंबित हो गए। प्रश्नकाल में आज विपक्ष औद्योगिक दुर्घटना मन के मुद्दा ला उठावत शक्ति जिला के वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसा में निदेशक अनिल अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हुए ऊपर सवाल उठे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंता जानना चाहिए कि प्रदेश में हुए जम्मू औद्योगिक दुर्घटना में निदेशक ऊपर कार्यवाही करी जाही। जवाब में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन बताइए कि खतरनाक रसायन के निर्माण और भंडारण और जुड़े नियम के मुताबिक एक बार ग्राह एजेंसी ले सुरक्षा ऑडिट कराया जाही। अब तक प्रदेश के 32 कारखाना में ऑडिट करे गए है जिहां नहीं हुए है वहां कार्यवाही करे के घलो प्रावधान है। इमा नेता प्रतिपक्ष कहने की वेदांता पावर प्लांट में जौन हादसा हुए रहीस वहां सिर्फ 2 लोगन मन ला आरोपी बताए गए है। इमा मंत्री कहने की आने लोगन मन ला घलो आरोपी बनाए गए है। मंत्री कहने की पुलिस ये मामला के जांच फैक्ट्री एक्ट के तहत करत है। ओमन बताइने की कंपनी डहर ले आश्रित मल्ला 35-35 लाख रुपया के मुआवजा दे गए है। संगे संग मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 5 लाख रुपया और केंद्र डहर ले 2 लाख रुपया देबर कहे गए है। एकर बाद मंत्री के जवाब ले असंतुष्ट होके विपक्ष सदन ले बहिर्गमन कर दी। विधानसभा में आज विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करीस। एमा विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह कहने की सत्र के आखिरी दिन 17 जुलाई के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहने की राज्य सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव लाही। उमन कहने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इच्छा शक्ति ले प्रदेश ले नक्सलवाद की समाप्ति हो है। एकर बर विधानसभा में केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करे जाही। इमा नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत राज्य सरकार ऊपर शहीद मन के अनदेखा के आरोप लगावत कहने की धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं हुई। संगे संग ये प्रस्ताव के विरोध में सदन के बहिष्कार करे जाही। विधानसभा परिसर में एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रुद्राक्ष के पेड़ लगाई। उन्हें नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप समेत विधानसभा के जम्मो सदस्य मन वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण के संकल्प दोहराई। प्रदेश में खरीफ मौसम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई ले पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग प्रदेश के किसान मन ले 31 जुलाई तक धान मक्का सोयाबीन समेत 11 अधिसूचित फसल के बीमा कराए के अपील करे है। मौसम विभाग डहर ले अल नीनो के प्रभाव ले अनियमित या कम वर्षा के आशंका जताए के सेती कृषि विभाग ह कहे हे कि फसल बीमा किसान मन ला प्राकृतिक आपदा ले होय या नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्छा प्रदान करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बाढ़ माचे समाचार कोती। किशोरी मन ला सर्वाइकल कैंसर ले सुरक्षित राखे बर छत्तीसगढ़ में 13 ले 18 जुलाई तक विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह के आयोजन करे जावत हे। एखर तहत 14 बछर के आयु के जम्मो पात्र नोनी मन ला स्वास्थ्य विभाग डाहर ले निःशुल्क जीवन रक्षक HPV टीका लगाए जावत हे। राज्य टीकाकरण अधिकारी और उप संचालक डॉक्टर VR भगत हाँ बताइन है कि अभियान के तहत स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र स्वास्थ्य संस्थान और समुदाय स्तर में जन जागरूकता गतिविधि के आयोजन करे जावत है। डॉक्टर भगत हाँ अभिभावक मन ले अपील करे है कि अपन पात्र बेटी मन ला HPV टीका जरूर लगावें। राज्य शासन है राजीव नगर पंचायत ला नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दे है। नगरीय प्रशासन विभाग डहर ले ये बारे में अधिसूचना जारी कर दे गए है। एखर तहत राजीव नगर पंचायत के सीमा हा राजीव नगर पालिका के सीमा होही। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साह कहीने कि ये फैसला ले राजीव के सुनियोजित विकास ला नवा दिशा मिली और शहरी सुविधा के विस्तार पर ज्यादा संसाधन उपलब्ध होही। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के विशेष महानिदेशक दीपक कुमार हा आज बीजापुर जिला के दौरा करीन। ये दौरान ओमन CRPF के कई ठिन कैंप मन के निरीक्षण करके अधिकारी और जवान मन ले भेंट करीन। उखर संग छत्तीसगढ़ सेक्टर के CRPF के IG शालीन और DIG BS नेगी घलो मौजूद रहीन। ए मौका में श्री कुमार कहने कि बस्तर जैसन इलाका में काम करे बर अच्छा शारीरिक क्षमता सही प्रशिक्षण और सतर्कता बहुत जरूरी है। रायगढ़ जिला के हाथी प्रभावित धरमजयगढ़ वन क्षेत्र में नियम और मानक मन के उल्लंघन करके 33 KV लाइन विस्तार लल्ले के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करे गए है। कोर्ट हा केंद्र राज्य सरकार और बिजली कंपनी ला नोटिस जारी करके जवाब दे के निर्देश दे है। सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार डहाले उपस्थित अधिवक्ता मन हा नोटिस स्वीकार करीन जबकि निजी कंपनी ला नियमानुसार नोटिस जारी करे के निर्देश देगी। कोर्ट हा राज्य सरकार ला जवाब दाखिल करे बर एक हफ्ता के बेरा देहे। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत माय भारत के तहत दुर्ग जिला के युवा मन ला कौशल विकास इंटर्नशिप स्वयं सेवा और रोजगार के मौका ले जोड़े बर माय भारत पोर्टल में पंजीयन के काम शुरू कर दे गए है। एखर बाद जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आवेदक मन के सुविधा बर विशेष पंजीयन काउंटर खोले गए है। ये काउंटर में 15 ले 29 बच्चर के युवा मन के पोर्टल में निःशुल्क पंजीयन करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष प्रदेश में खातु और बीजा के मुद्दा उठाइन। प्रदेश में खरीफ मौसम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई ले पंजीयन के काम शुरू और राज्य शासन हा राजीव नगर पंचायत ला नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दे है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में, आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: पादयिष्यति येन निदाघ तप्तानां जनपदानां कृते कश्चन अनिर्वचनीयः आह्लादः सम्प्राप्स्यते। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायाः प्रथमोपान्त्यचरणस्य स्पर्धायाम् अद्य रात्रौ अमेरिकादेशस्य टेक्सस् राज्यस्य डलास् क्रीडाङ्गणे फ्रांस् दलं स्पेन् दलं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धेयं भारतीय समयानुसारं मध्यरात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
3: हेलो, नमस्कार दोस्तों, उड़ान कार्यक्रम में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा है आप अपने परिवार के साथ खुश और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आज का कार्यक्रम शुरू करें, आप हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है
2: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
4: यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए।
3: हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1।
4: श्रोताओं, आज के युग में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं। लोगों के रहन सहन, खाना पीना और पहनावे में बहुत परिवर्तन आ गया है, परंतु आज भी कुछ लोग पुराने सोच वाले हैं। श्रोताओं, अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारे समय में ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, अधिक शिक्षा की आड़ लेकर लड़कियां बिगड़ रही हैं। और ये तो जरूर ही सुना होगा कि ज्यादा पढ़ी लिखी बहू में संस्कार की कमी होती है, परंतु ऐसा नहीं है। आज शिक्षा ने नारी को इतना सशक्त बना दिया है कि वह बड़े से बड़े काम को बहुत ही सहजता से संपन्न करती है, घर की जिम्मेदारियों का पालन बहुत ही सही ढंग से करती है। परंतु कुछ ही पुरानी सोच रखने वाले लोग आज भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं और अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते। उनके अनुसार बहू और बेटी में बहुत बड़ा अंतर है। बहू को तो घर में रहकर सिर्फ घर के ही काम करने चाहिए। अगर घर की बहू बाहर जाकर नौकरी करती है तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच जाती है, जबकि बेटी को नौकरी करने और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने पर बल दिया जाता है। उनके अनुसार बहू और बेटी दोनों के लिए अलग अलग नियम है, परंतु आज उन पुरानी सोच रखने वाले लोगों को समझना होगा कि बहू और बेटी दोनों को शिक्षा और नौकरी करने का अधिकार है, परंतु पुरानी सोच रखने वालों के कारण ही नारी को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है। रीति रिवाज के नाम पर घर की चार दीवारी में बंद रखा जाता है, जिससे नारी के गुणों को उजागर नहीं किया जाता, परंतु शिक्षा पाकर महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान होता है। शिक्षा पाकर ही वे घर गृहस्थी में सहयोग दे पाती हैं। इस विषय पर हम आपसे कुछ बात करेंगे और कुछ सुनाएंगे, एक नाटक। पूनम एक पढ़ी लिखी और बहुत ही संस्कारी बहू है। वह सुलोचना जी मतलब अपनी सांस का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखती है। वह अपने घर का काम बहुत ही सलीके से करती है और पूरी कोशिश करती है कि उसकी सास को उसे किसी प्रकार की शिकायत ना हो। परंतु सुलोचना जी, जो पूनम की सास, बहुत ही पुराने विचार की है। वह पूनम के हर काम पर कड़ी नज़र रखती है। वह चाहती हैं जिस प्रकार उन्होंने अपनी सास के समय उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया, उसी तरह पूनम भी उनके हर एक फैसले को माने और हर काम को पूछ कर करे। वहीं समीर, जो पूनम का पति है, वह एक कंपनी में काम करता है। समीर पूनम और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता है, परंतु वह कभी भी अपनी माँ और पत्नी के बीच होने वाली बातों में नहीं बोलता। वह पूनम को ही समझाता है कि माँ की किसी बात का बुरा ना मानना अब पूनम भी सुलोचना जी का पूरा सम्मान करती है। सुलोचना जी की बड़ी बेटी श्रद्धा एक विवाहित महिला है। वह अपनी माँ के घर पर कुछ दिन रहने के लिए आई है। उसका एक 2 साल का बेटा है। वह एक ऑफिस में काम करती है। वह बहुत ही समझदार महिला है। वह अपनी माँ को भी समझाती है कि आजकल लड़कियाँ बहुत काम कर रही हैं, घर के साथ साथ ऑफिस में भी काम करती हैं। परंतु पुराने विचारों होने के कारण वह श्रद्धा की बात को अनसुना कर देती है और अपने विचारों को अहमियत देती है। वही पूनम अपनी सास और ननद का पूरा ध्यान रखती है और अपने काम में व्यस्त रहती है। वहीं सुलोचना जी के पति रामचंद्र जी बहुत ही शांत व्यक्ति हैं। वह सुलोचना जी को समझाते हैं, परंतु सुलोचना जी को समझाने के लिए तथा इस युग में बहु बेटी एक समान है ये बताने के लिए आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
5: अरे सुनती हो, अभी तक सुबह की चाय नहीं आई।
6: अरे क्या, अब तक चाय नहीं दी आपको? तभी बोलती थी ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाओगे तो यही होगा।
5: अरे इसमें पढ़ाई लिखाई कहाँ से आ गई? क्या पता बहू किसी काम में बिजी हो, तुम क्यों नहीं चाय बना लेती?
6: हाँ, घर में बहू के होते हुए अब मैं काम करूँ।
5: तो क्या हुआ, घर के छोटे छोटे काम करने से तुम थोड़ी छोटी हो जाओगी? अरे काम करने से तो शरीर फिट रहता है।
6: हाँ, मुझे तो घर की नौकरानी बना दो। पहले आपकी माँ की जी हजूरी की, अब आपकी बहू की जी हजूरी करूँ। तो सुन लो, ये सब मुझसे नहीं होगा।
5: तुम भी ना छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो।
7: सॉरी पापा जी, वो थोड़ी देर हो गई चाय देने में।
5: कोई बात नहीं बेटा।
7: माँ जी, क्या आपको कुछ चाहिए?
6: नहीं बहू, तुम जाकर समीर को नाश्ता देकर जल्दी से उसके ऑफिस का टिफिन पैक कर दो। और हाँ, सभी काम सफाई से और ध्यान से करना।
7: जी माँ जी, ठीक है।
4: परंतु पूनम को घर के सारे काम साड़ी पहन कर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए वह समीर से बात करना चाहती है, तो वह समीर के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में समीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। पूनम कुछ समय चुपचाप वहीं खड़ी रही और सोचती है कि किस प्रकार वह समीर से बात करे। तभी पूनम समीर से बोलती है।
7: समीर, समीर सुनो ना, कुछ बात करनी है मुझे आपसे।
8: हाँ बोलो, क्या बात है?
7: समीर, घर के काम करते समय क्या मैं साड़ी की जगह सूट पहन सकती हूँ?
8: अरे यार पूनम, तुमको तो पता है ना, माँ को तुम्हारा सूट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं।
7: पर समीर, मैं घर के बहुत से काम को साड़ी पहनकर नहीं कर सकती। प्लीज समीर, समझने की कोशिश करो। समीर, एक बार तुम माँ से बात करो ना।
8: देखो पूनम, मैं इस बारे में माँ से कुछ नहीं कहने वाला, और तुम भी जानती हो माँ नहीं मानेगी।
7: तो क्या मैं एक बार माँ से बात कर लूँ?
8: तुमको जो ठीक लगे वो करो, पर मैं तो माँ को कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ, पर मुझे तुम्हारे सूट पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं ऑफिस चलता हूँ।
4: इतना कहकर समीर गाड़ी लेकर जॉब पर चला जाता है और पूनम घर के काम में लग जाती है। वो किचन के काम कर ही रही होती है और अपनी सास से बात करने के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह से वह अपनी सास से साड़ी की जगह सूट पहनने वाली बात कहे। उसकी काम वाली शांता उसको देखकर पूछ लेती है, बीबी जी क्या सोच रही हो? तो पूनम बोलती है, कुछ नहीं बस वैसे ही। और तभी पूनम की सास सुलोचना जी वहाँ आ जाती है। अभी सुलोचना जी रसोई का जायजा ले रही थी, तभी पूनम हिम्मत करके उनसे पूछ लेती है।
6: हाँ क्या बात है, बोलो।
7: माँ जी, आप कहें तो मैं भी आपकी तरह घर में सूट पहनना शुरू कर दूं क्या? वो साड़ी में काम नहीं हो पाता है मुझसे।
6: खबरदार बहू, जो मेरे सामने तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो इस घर में तुम मेरी बराबरी करने चली हो।
7: नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस
6: मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन एक बात याद रखना बहू, जब तक मेरी सास जिंदा थी मैंने हमेशा ही साड़ी पहनी थी और साड़ी का पल्लू हमेशा सर से उतरने नहीं दिया। उनके गुजर जाने के बाद ही मैंने अपनी मर्जी से सूट पहनना शुरू किया था, उससे पहले नहीं। और तुम्हारी सास यानी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी तब तुम अपनी मर्जी से घर में जो मर्जी पहन लेना।
4: ये कहते हुए सुलोचना जी रसोई से बाहर निकलकर वापस जाने के लिए मुड़ी थी कि उनकी नजर अपनी बेटी श्रद्धा से टकरा गई। लेकिन आज अचानक अपनी माँ की ऊंची आवाज सुनकर वह सीढ़ियों से उतरकर

0: रसोई में आ पहुंची थी और अपनी माँ से इस तरह गुस्सा करने की वजह पूछती है।
1: क्या हुआ माँ, आप भाभी पर इतना नाराज क्यों हो रही हो? क्या बात हो गई?
2: अरे क्या बताऊं बेटा, आजकल की बहुएं ससुराल आते ही अपनी सास की बराबरी करने लगती हैं।
1: लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ।
2: तेरी भाभी को साड़ी पहनने से परहेज हो रहा है, इसका सूट पहनने का मन कर रहा है।
1: माँ सूट तो मैं भी पहनती हूँ, इसमें क्या दिक्कत?
2: मुझे दिक्कत है।
1: लेकिन क्यों माँ?
2: बेटा तेरे ससुराल में तेरी सास नहीं है और दामाद जी तुझे खुद बाजार ले जाकर तेरी पसंद के कपड़े दिलवाते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है।
1: माँ मैं कुछ समझी नहीं।
2: तेरी भाभी का सूट पहनना ना तो मुझे पसंद है और ना ही तेरे भाई समीर को।
1: लेकिन माँ समीर को भाभी के सूट पहनने से क्या दिक्कत है?
2: बेटा यह बात उसे अपने मुँह से कहने की जरूरत नहीं, मुझे जो पसंद है वही मेरे बेटे को पसंद है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
1: पर माँ
0: तभी एक चीख सुनाई देती है। ये चीख रोहित यानी श्रद्धा के बेटे की थी, जो अपनी माँ श्रद्धा के पीछे पीछे आने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर गया था और बहुत ही चीख चीख कर रो रहा था। उसके सिर पर चोट आई थी, बहुत खून निकल रहा था। तभी पूनम और काम वाली शांता भी वहाँ आ गई। सुलोचना जी घबरा कर रोने लगी और कहती है,
2: अरे अरे ये क्या हुआ, रोहित कैसे गिर गया? हे भगवान कितनी चोट आई है इसे। शांता जरा देख तो सही, पड़ोस वाले शर्मा जी घर पर ही हैं ना, जल्दी जा उन्हें बुला कर लेकर आ, रोहित को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जल्दी जा।
3: पर माँ जी अभी तो उनको मैंने ऑफिस जाते हुए देखा है, वो तो चले गए अपने ऑफिस।
2: अरे अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, घर में कोई आदमी भी नहीं है जो रोहित को हॉस्पिटल ले जाए। हे भगवान।
4: माँ जी समीर भी ऑफिस चले गए, घर पर नहीं है, आप कहो तो मैं उनको फोन करके बुला लूँ क्या घर?
5: अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे भाभी आपको तो स्कूटी चलानी आती है ना, आप तो स्कूटी से कॉलेज जाती थी ना। भाभी जल्दी से स्कूटी की चाबी ले आओ और रोहित को हॉस्पिटल ले चलो, भाभी प्लीज जल्दी करो।
4: पर दीदी
2: पर वर क्या, जल्दी कर बहू, ये ले स्कूटी की चाबी और रोहित को हॉस्पिटल ले जाओ।
5: जी माँ जी
0: ठीक है। साड़ी का पल्लू संभालते हुए स्कूटी चलाने के लिए बाहर की ओर चलती है। तभी उसकी सास सलोचना जी आवाज लगाती है,
2: अरे बहू रुक, पहले सूट पहन ले, साड़ी पहनकर स्कूटी कैसे चलाएगी, कहीं गिर गई तो।
5: पर माँ जी
2: पर वर कुछ नहीं, जल्दी कर जाके सूट पहन और रोहित को जल्दी ले जा हॉस्पिटल।
5: ठीक है माँ जी।
0: पूनम बहुत ही हैरान थी सास के ऐसे व्यवहार से। वो सास जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी कि मेरे मरने तक का इंतजार करो तब करना अपने मन की, और अब वो खुद ही बोल रही है कि सूट पहनकर और घर से बाहर जाने के लिए स्कूटी की चाबी दे रही है। स्कूटी की चाबी मिलते ही मानो पूनम की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, अब वह खुद को बहुत खुश और आजाद महसूस कर रही थी। पूनम ने जल्दी से सूट पहना और स्कूटी की चाबी ली और रोहित और श्रद्धा के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई, जिससे रोहित का इलाज समय पर हो सका और सुलोचना जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब सुलोचना जी अपनी बहू को हर वो काम करने को कहती जो उनकी बेटी करती है, फिर वो पढ़ाई हो या जॉब। अब तो सुलोचना जी खुद पूनम को मार्केट ले जाती और उसकी पसंद की ड्रेस दिलवाती है, और पूनम भी सुलोचना जी की बहुत सेवा करती है, अपनी माँ से भी ज़्यादा ध्यान रखती है, सारा दिन उनके घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है।

0: तो श्रोताओं, आपने इस कहानी के माध्यम से सुना कि किस प्रकार एक छोटी सी घटना ने सुलोचना जी की पुरानी सोच और रूढ़वादी सोच को बदल कर रख दिया और किस तरह उनकी सोच बदल गई। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आए हैं, जरूर हमें बताएं।
1: तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
2: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
1: अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रदेश में खाद बीज की कमी, औद्योगिक दुर्घटनाओं के साथ ही जल जीवन मिशन से संबंधित मुद्दे गूंजे। प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य शासन ने राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन किया। और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज शून्यकाल में खाद और उन्नत बीज की कमी को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खाद और बीज के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, इस वर्ष बारिश भी कम हुई है जिससे बोनी पिछड़ गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने कहा कि डीएपी पोटाश जैसे खाद नदारद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान कृषि विभाग के कुप्रबंधन का शिकार हो गए हैं।

0: अपने जवाब में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 14 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है, जो लक्ष्य का 90% है। वहीं मांग के विरुद्ध 96% बीजों का भंडारण कर लिया गया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य सदन में नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए, जिसके बाद वे स्वतः निलंबित हो गए। प्रश्नकाल में आज विपक्ष ने औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में हुए हादसे में निदेशक अनिल अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जानना चाहा कि क्या प्रदेश में हुई सभी औद्योगिक दुर्घटनाओं में निदेशक पर कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वेदांता पावर प्लांट में जो हादसा हुआ था, वहां केवल 2 लोगों को ही आरोपी बनाया गया है। जवाब में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, भैयालाल राजवाड़े, सुनील सोनी और राजेश मूणत ने अमृत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत रायपुर शहर में जल आपूर्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हर साल रायपुर के लोगों को भीषण जल संकट से जूझना पड़ता है। जहां पानी टंकी है, वहां भी टैंकरों से पानी की सप्लाई हुई है। इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि योजना पर काम किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि अभी 304 करोड़ रुपए का काम प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम सभी घरों तक पानी पहुंचाने में सफल होंगे। विधानसभा में आज विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सत्र के अंतिम दिन 17 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इच्छा शक्ति से प्रदेश से नक्सलवाद की समाप्ति हुई है। इसके लिए विधानसभा में केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष चर्चा में शामिल नहीं होगा। साथ ही इस प्रस्ताव के विरोध में विपक्ष द्वारा सदन का बहिष्कार किया जाएगा। विधानसभा परिसर में एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित विधानसभा के सभी सदस्यों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों द्वारा अपनी माताओं के नाम पर पौधारोपण किया जाना अत्यंत प्रेरणादायी पहल है।
1: माननीय हमारे देश के सुप्रिय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किए, और जिसके तहत लगातार 2024 से हम लोग हर साल पेड़ लगाते आ रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विधानसभा परिसर में आज एक पेड़ माँ के नाम से पौधा लगा रहे हैं।
0: प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से 31 जुलाई तक धान, मक्का, सोयाबीन समेत 11 अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की है। मौसम विभाग द्वारा अल नीनो के प्रभाव से अनियमित या कम वर्षा की आशंका जताए जाने के बीच कृषि विभाग ने कहा है कि फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। कृषि विभाग ने किसानों से फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना संबंधित विभाग, बैंक, बीमा कंपनी या टोल फ्री नंबर 1-4447 पर देने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन ने राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत राजिम नगर पंचायत की सीमाएं ही राजिम नगर पालिका की सीमाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि इस निर्णय से राजिम के सुनियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी तथा शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के लिए छत्तीसगढ़ में 13 से 18 जुलाई तक विशेष HPV टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 वर्ष की आयु की सभी पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जीवन रक्षक HPV टीका लगाया जा रहा है। राज्य टीकाकरण अधिकारी और उपसंचालक डॉक्टर VR भगत ने बताया कि अभियान के तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य संस्थानों और समुदाय स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर भगत ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी पात्र बेटियों को HPV टीका अवश्य लगवाएं। भारतीय सेना ने आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परीक्षा 1 से 12 जून तक राज्य के 10 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी अपना परिणाम भारतीय सेना के आधिकारिक भर्ती वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस रायपुर के सूचना पटल पर देख सकते हैं। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण सहित भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। हवलदार और जूनियर कमीशन अधिकारी पदों के लिए भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के तहत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज वेव्स के तहत एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनके कौशल को बेहतर बनाना और उन्हें सबके सामने लाना है। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल और दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की मेरा युवा भारत माई भारत के अंतर्गत दुर्ग जिले के युवाओं को कौशल विकास, इंटर्नशिप, स्वयंसेवा और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आवेदकों की सुविधा के लिए विशेष पंजीयन काउंटर स्थापित किया गया है। इस काउंटर पर कार्यालय में आने वाले 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन किया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट और रिकॉर्ड किए गए उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर लॉगिन करके अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के विशेष महानिदेशक दीपक कुमार ने आज बीजापुर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने CRPF के कई कैंपों का निरीक्षण कर अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और बीजापुर जिले के सरकंडा स्थित बाल संप्रेषण गृह में 4 बाल अपचारी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड की हत्या कर फरार हो गए हैं। ये चारों बाल अपचारी हत्या, दुष्कर्म, चोरी जैसे मामलों में बाल संप्रेषण गृह में निरुद्ध थे। वन्यजीव संरक्षण और वन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत 70 से 80 फीट ऊंचे टावरों पर पीयर टू पीयर मॉड्यूल और AI कैमरे लगाए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज प्रदेश में खाद बीज की कमी, औद्योगिक दुर्घटनाओं के साथ ही जल जीवन मिशन से संबंधित मुद्दे गूंजे। प्रदेश में खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 12 जुलाई से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य शासन ने राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन किया और भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं, लीजिए अब आनंद लीजिए चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म अनोखी अदा से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरूर सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दो रास्ते, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है आनंद बख्शी और मौसिकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आप सुन रहे हैं फिल्म आ पाए बाहर आई का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अब के बरस लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। समीर के लिखे गीत को संगीत से संवारा है अन्नू मलिक ने।

आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत आप रात 8 बजे भी सुन सकेंगे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। अब सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: पूजा दीदी राम राम
1: राम राम रश्मिकांत और संगे संग कार्यक्रम सुनैया हमर जम्मू संगवारी मन ला घलो हमर दुनू के राम राम, राम।
0: दीदी अब आषाढ़ महीना चला थे मानसून के संग में खेती किसानी के जोन काम बूता है वह बाढ़ जाते जम्मो काम बूता ला समय में हम करथन तो उत्पादन ज्यादा पा सकथन
1: बिल्कुल
0: और आर्थिक लाभ घमक कमा सकते
1: और देखना बुआई निंदाई सिंचाई खरपतवार और खाद प्रबंधन ये जम्मो काम हम बेरा में जब करथन ना तो एकर ले बेरा में फसल तैयार घलोक हो जाते और मौसम के वजह से हो या नुकसान या देरी के वजह से जो नुकसान होवैया है उत्पादन में जो नुकसान होवैया है वो लो वहू ले हम बांट सकते हैं।
0: हाँ फिर दीदी अब मानसून में वर्षा ऋतु में हम नर्सरी प्रबंधन भी सुघर ढंग ले कर सकथन। हाँ मानसून में वर्षा के जो फुहार शुरू होते ना तो धरती हरा भरा हो जाते
1: बिल्कुल
0: और नर्सरी के काम करैया संगवारी मन ला रोजगार के जो नवा अवसर है एला गढ़े के हमला संदेश देते।
1: जब हम मानसून के लाभ लेवत सही तरीका ले नर्सरी प्रबंधन करथन ना तो ये हर न सिर्फ पर्यावरण ला समृद्ध बनाथे फिर ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ भी ला मजबूत करथे।
0: फिर नर्सरी व्यवसाय ला मानसून के समय सही तरीका ले शुरू करते और वाला मुनाफा में बदले खातिर कुछ बात के हम ध्यान दे पड़ते है ना तो इस संबंध में गोट बात तो करबो फिर सुघर संदेश ला सुन लेते।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
1: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
1: 47 सालों से निरंतर सेवा में
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: दीदी, नर्सरी व्यवसाय के गोट करत रहे है ना, तो जिन संगवारी करते ते मतलब कुछ जिनिस के ध्यान रखेल पड़ते, जैसे स्थान के चयन और जल निकासी। नर्सरी खातिर थोड़ा ऊंचा जगह के चुनाव हम करथन जी, हाँ पानी झन जमे, काबर मानसून में जब खेती ले जुड़े कोनो काम बूता करथन तो सबले पहले बड़े चुनौती होते हमर तीर कि जल भराव होते, जेकर ले पौधा ओकर जड़ सड़े लगते।
4: बिल्कुल रश्मिकांत, आऊ देख खेत के चारों कोती निकासी नली जरूर होना चाहिए, है ना। अब हम गोट करत हन, जैसे अभी चर्चा करते हैं कि स्थान के चयन एकर संगे संग माटी और जो क्यारी नुमा उभार वाला जो जगह है ओकरो चयन के जरूरी हो जाते, ओकरो चयन है। एमा पौधा मन खातिर उठे हुए क्यारी बना लेवन, माटी में 50% सामान्य माटी तो 30% जैविक खाद, कंपोस्ट और केचुआ खाद, और एमा 20% रेती मिला लेवन, जेकर ले पानी आसानी ले छन जावे।
3: और फंगस और कीट ले सुरक्षा भी बड़ जरूरी है। तो मानसून में नमी कारण फंगस जोन कवा खवे है ना, ओकर खतरा सबले ज्यादा होते, तो एकर ले बचे खातिर माटी के जोन उपचार है ओला करना जरूरी है हमला। जेकर खातिर जैविक फफूंद नाशी के जोन उपयोग है ओला हम करके पौधा ला सड़न ले या कवक ले हम बचा सकथन।
4: और संगी हो एकर अलावा ऐसे पौधा तैयार करन जेकर मांग छत्तीसगढ़ के बाजार मा या सरकारी योजना मन में ज्यादा होते, जैसे कि मुनगा होगे, बांस, फलदार वृक्ष होगे, जेमा आम, अमरूद, नींबू, औषधीय पौधा ये नर्सरी हम तैयार कर सकत हन।
3: और सरकार के अलग अलग वन विभाग की योजना हरियर छत्तीसगढ़ जैसे अभियान के तहत बड़े पैमाना में पौधा के खरीदी करते, तो स्थानीय स्तर में नर्सरी तैयार करके सीधा स्व सहायता समूह और वन समिति मन के माध्यम ले हमें बेचथन तो हमला अच्छा दाम भी मिल सकते।
4: बिल्कुल सही गोट करा था लक्ष्मीकांत। हमें नर्सरी व्यवसाय के मुख्य लाभ के अगर हम गोट करबो ना, तो कम लागत में अच्छा मुनाफा है, जैसे कि फलदार या छायादार जो पौधा है या वृक्ष बोल सकत हन, सजावटी पौधा के मांग हमर मानसून में सबले ज्यादा होते, काबर की मानसून ही ऐसे बेरा होते जमा कोई भी पौधा आसानी लगते, और ओकर अगर थोड़ को भी देखभाल करन तो वह बहुत जल्दी अपन जो पौधा के रूप है, जो वृक्ष के रूप है वो ला ले लेते।
3: और दीदी, जैसे हम नर्सरी लगा गोट करत हन ना, तो निजी भूमि में भी हम नर्सरी या पेड़ लगावत हन, तो वन विभाग के जो नर्सरी जुड़े कई योजना चलते, जब हम आर्थिक अनुदान भी मिलते, और मानसून के मौसम ला पौधा के बढ़वार और कटिंग लगाए बर तो सबले उपयुक्त मानथन हम, है ना। तो मानसून के पहली जो बूंद हवा है माटी में सिर्फ नमी नहीं लावे भाई, बल्कि नवा जीवन के जो संभावना है ना वह लाते। तो पौधा जो हवा ओला हम लगाएं, है ना, तो ओकर देख रेख के संग संरक्षण भी हमरो जिम्मेवारी होते।
4: और भाई देख लक्ष्मीकांत, एला स्वरोजगार के रूप में भी अपनाए जा सकते थे। अगर भाई कई जन युवा मन हाँ पढ़ लिख लिए है तो नौकरी नहीं मिला थी, तो कई बार निराशा घलोक घेर लेते, तो एला स्वरोजगार के रूप में छोटे स्तर में भी चालू करे जा सकते थे। बहुत बड़े जगह की जरूरत भी नहीं है, और बहुत विशेष माटी या बहुत विशेष व्यवस्था की भी जरूरत नहीं है, तो एला आसानी से स्वरोजगार के रूप में अपना के एला आमदनी कमाए जा सकते।
3: और देख हम गोट करते ना कि एक पौधा हवाए वो है एक पेड़ के रूप ले सकते हैं ना, और आधुनिक तकनीक के गोट करते हैं हमारे खेती किसानी में, तो इसने सीड बॉल आजकल जो उपयोग करते हैं बीज ला गोबर या खाद में लपिटाए रहते हैं ना, और इसने मिलते हैं हमारे बाजार में, तो इसने मौसम के हिसाब ले व्यावसायिक लाभ खातिर हम नर्सरी लगाते हैं, फिर समाज ला हमारे पर्यावरण ला कुछ वापस देना है, ऐसे मान के भी हम कुछ करन, है ना, हमारे समाज ला कुछ वापस देना है, और मानसून स्थानीय देसी प्रजाति के जो बीज हवे ओकर हम उपयोग करन, हरियाली बढ़ाए खातिर अपन भागीदारी निभावन, और हरियर जोन भारत, हरियर छत्तीसगढ़ के जोन सपना है हमार सोच है ओला साकार करन। और देख गोड़ बात करत हमार बेरा हो गए हवे हमार आज के किसानवाड़ी के, है ना, प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

संगवारी हो, मंगलवार के हमर क्रम रथे किसानवाड़ी में, हेलो किसानवाड़ी के, जेन हर फोन इन कार्यक्रम हे। और एमा हमला सुघर हमर जोन समस्या रथे विषय ले जुड़े ओकर समाधान मिलते। तो आज के हमर विषय रही से नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। और हमर जोन शंका समाधान रही हवा ओला करत रहीन है मनीषा खापड़े, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं मत्स्यिकी के, कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी में। संचालन पूजा दीदी करत रहीन है, प्रस्तुत करता रहीन शशि प्रकाश पांडे।

0: फोन इन कार्यक्रम क्रम हेलो किसानवाणी में हमर जम्मो किसान भाई मन के स्वागत है। आज के फोन इन कार्यक्रम में विषय है नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। और ये विषय में हमर किसान भाई मन के समस्या के समाधान पर हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं मनीषा खापड़े जी। आप मन विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी ले हो। आज के हेलो किसान वाणी क्रम के प्रस्तुत करते हैं शशि प्रकाश पांडे जी हैं और संचालन करते हैं आपके कंपियर संगी पूजा चंद्रवंशी है। तो सबसे पहले तो राम राम मैडम, हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत है।
1: राम राम मैडम।
0: हमारे किसान भाई मन के फोन आवत है तेला हम ले लेथन सुन लेथन इखर का प्रश्न है। हेलो हेलो किसान वाणी, कौन बोला था भैया, वो कहाँ बोला था?
2: मैं अनंत कुमार साथ गांव से नुहाठ मंगलौर से बोला था
0: जी। जी भैया, कैसे हो आपन, का बूता चला थे?
2: सब बढ़िया है, खेती किसानी काम चला था भी।
0: अच्छा, तो का प्रश्न है आज आपके?
2: मछली बीज उत्पादन पर का बात के ध्यान रखना पड़ी, फिर बारे जानकारी देना।
0: तो ये विषय में आपन के प्रश्न के उत्तर दी हमारे विशेषज्ञ
1: जी। नमस्कार भैया।
2: नमस्ते मैम।
1: अभी आप मौसमी तालाब में मछली का बीज उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें आप स्पॉन स्टॉकिंग कर सकते हैं एक नर्सरी तालाब में। उसको आप 15 से 20 दिन रखने के बाद फिंगरलिंग करके आप बेच सकते हैं। और आपके तालाब जो मौसमी होगा ना, जिसमें पानी सिर्फ बरसात में रहता है, उस समय आप इस तालाब का उपयोग कर सकते हैं भैया।
2: धन्यवाद मैडम जानकारी।
0: हेलो किसान वाणी।
3: हेलो किसान वाणी
0: जी। भैया कौन बोला था, कहाँ बोला था?
3: मैं दानी राम चंद्रवंशी लखनपुर कवर्धर से बोला था दीदी।
0: जी भैया, क्या प्रश्न है आज आपके हमारे विशेषज्ञ के लिए?
3: ये मछली पालन के लिए बीज बनाए बर कैसे वो टंकी बनाए जाए और कैसे बीज बनाए जाए, कितने बार मैं लगाए हुआ दीदी पूछे बार।
0: हाँ भैया, आपके प्रश्न की उत्तर दी हमारे विशेषज्ञ।
1: नमस्कार भैया।
3: नमस्कार बहन।
1: आप मतलब मछली बीज उत्पादन करे बार एक तो आपका मौसमी तालाब होना चाहिए, जो न आपका नर्सरी तालाब 0.02 से 0.2 हेक्टेयर के आप तालाब कर सकते हो। और इसमें आप फ्राई डाल सकते हो, स्पॉन डाल सकते हो। और अगर आप स्पॉन डालोगे तो 15 से 20 दिन आपको रखना है और उसके बाद आपको फ्राई मिल जाएगा, ये मछली का बीज होता है। और अगर आपको फ्राइड से फिंगरलिंग करना है तो इसका जो साइज हो 20 से 25 मिलीमीटर का होता है और इसको आप भी 15 से 20 दिन में आप फ्राई कर सकते हैं भैया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। हेलो किसान वाणी।
4: हाँ दीदी, मोर माया भरे राम राम।
0: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ बोला था?
4: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था वहाँ दीदी।
0: जी भैया, क्या प्रश्न है आज आपके?
4: दीदी देख, हमन चौपाल के आस में बैठे रही था, जब ले चौपाल में हमारे सुघर जानकारी नहीं मिली तब तक तो हमार आस नहीं बुझावा, तो यही आस लेके आज मैं डॉक्टर मेरे फोन लगाए हवा। ये नर्सरी तालाब का होते जिसे हम लोग मछली पालन करना है और जैसे बीज के व्यवस्था करना है, तो हमन कैसन ढंग ले कर सकन, यही जम्मो बात ला पूछे बर फोन लगाए हूँ दीदी।
0: हाँ भैया, ये आपके सबो प्रश्न के उत्तर दी हमारे विशेषज्ञ।
1: नमस्कार भैया।
4: हाँ नमस्कार दीदी। राम राम।
1: राम राम, कैसे हो, बढ़िया सब?
4: हाँ दीदी, हाँ सब, आप मन के दया से और हमारे चौपाल विभाग के दया ले बढ़िया बढ़िया हवन दीदी। अभी थे गोट बात हो रही थे।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया आप मन के प्रश्न है की नर्सरी तालाब का होते करके। नर्सरी तालाब न भैया, मछली बीज उत्पादन करे बर एक तालाब होते जिला नर्सरी तालाब कहते। एमे ना तालाब में वैज्ञानिक पद्धति से आप मन मछली की बीज उत्पादन कर सकते हो। और नर्सरी तालाब में आप मन स्पॉन जो कि मछली के बीज कहलाते, और वे हम मिल ही आपला सरकारी हैचरी में, और एकर साइज होते 6 से 8 मिलीमीटर। और एला आप 15 से 20 दिन पालन करके फ्राई बना सकते हो और एला आप मन बेच सकते हो। तो यही हरे आप मन के नर्सरी तालाब।
4: हाँ दीदी, ठीक दीदी, बहुत सुधर जान कर दे, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो किसान वाणी।
5: नमस्ते दीदी जी।
0: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ बोला था?
5: राजेंद्र कुमार दामले गुठिया से सिरमुंडा ले मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला मा। ये समय भी बहुत अच्छा है, अभी बारिश के समय है और विषय बहुत अच्छा रखे हो।
0: हाँ।
5: तो हम ये जानकारी दे देते हो कि नर्सरी तालाब में प्रबंधन मत्स्य उपयोग बताते हो कि कैसन टाइप से हम मछली को उत्पादन करना हो, कैसे नर्सरी लगाने थोड़े बता देते हो।
0: हाँ भैया, ये प्रश्न के उत्तर दी हमारे विशेषज्ञ।
1: नमस्कार भैया।
5: नमस्ते जी।
1: आप मतलब नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन करे बर आप मतलब कुछ बातों का ध्यान रखने हैं तो किसे प्रबंधन आप मतलब करना है। सबसे पहले तो आप मतलब तालाब ले सुखाना पड़ी, अगर तालाब में पानी है ना तो तालाब ले सुखाल पड़ी वो बरसात के पहले हो जाते होगा। ओकर बाद सफाई करना है, फिर चूना डालना है और वो में कुछ भी दूसरा वो मछली हुई ना वो बाहर निकालना है। ओकर बाद खाद और उर्वरक डाल बे आप मन, हाँ गोबर की खाद भी डाल सकता। ओकर बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है आप मतलब स्पॉन जो की मछली के बीज कहलाते, वो मछली के बीज ला आप मतलब तालाब में डालना है नर्सरी तालाब में, जेकर आकार 0.02 से 0.20 हेक्टेयर के हो सकते हैं नर्सरी तालाब करते। एमे आप मतलब डालना है स्पॉन जेकर साइज हो 6 से 8 मिलीमीटर और एला आप मतलब 15 से 20 दिन रखे के बाद आप मतलब निकाल दो और वो आपके फ्राई कहलाही और वही आपके मछली के बीज कहलाही भैया। तो यही बात अपना ध्यान रखना है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद। संगे संग आकाश ने रायपुर पर वाला घर जम्मू
0: धन्यवाद भैया। हेलो किसान वानी।
6: किसान वानी
0: जी भैया कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
6: मैं हाँ ग्राम बुची पारा ले सुशील गंधर्व बोला था। ये कबीर धाम जिला में पंडरिया के आसपास है।
0: तो का पता चलत भैया?
6: अभी तो हमार मन के सब खेती किसानी चलत है।
0: हाँ भैया हाँ हाँ तो पानी वानी बने गिरे थो डर?
6: हाँ पानी गिरी से पहले।
0: हाँ
6: अभी कुछ 2-4 दिन है अभी थोड़ा सूखा है इसे टाइप में चलत है।
0: तो हमार आज विशेषज्ञ ले का प्रश्न करना चाहत हो?
6: तो आज के प्रश्न रही से के मछली वाले रही से।
0: हाँ मछली बीज उत्पादन,
6: मछली उत्पादन के लिए का एक हमार समूह बने हैं और तालाब लिए हैं हम लोग ने वही 1.5-2 एकड़ का लगभग है। तो उसमें कौन सा बीज डाले मछली का जिसमें अच्छा उत्पादन मिले और कौन सा उसमें चारा डाले ये बताने के ये करते हो?
0: हाँ भैया हाँ आपके सबो प्रश्न के उत्तर दिए हमारे विशेषज्ञ।
1: नमस्कार भैया।
6: हाँ नमस्कार नमस्कार।
1: आप मन के जो तालाब है भैया वो ग्रामीण तालाब है कि आप मन के प्राइवेट तालाब है जो अपन ले हो लीज पे?
6: ये प्राइवेट नो है, ग्रामीण तालाब है समूह से वाला उठाए गए हैं।
1: जी जी समूह से आप मन वाला उठाए, उसमें साल भर पानी रहते का?
6: हाँ ट्यूबवेल है।
1: जी बहुत बढ़िया। तो आप मन है ना उसमें कतला रोहू और मृगल मछली है ना
6: है।
1: आप मन 8,000 से 10,000 फिंगरलिंग आप मन में डाल सकते हो।
6: अच्छा,
1: और जी ओकर बीच आप मन मिली जो शासकीय हैचरी रहते ना वह छत्तीसगढ़ शासन के मछली पालन विभाग में वहाँ से आप मतलब बीज प्राप्त हो जही हैचरी से। और अभी तो बीज मन छोटे हो ही है ना काबर की जी जी छोटे हो ही आप मन अभी बीज। हाँ आप मन काबर की फिंगरलिंग साइज के मछली डालना है उम्मीद तो आप मतलब इंतजार करे लगी 15 अगस्त से सितम्बर तक आप मतलब बीज मिल जही। और आप मन हमार बात ला ध्यान रखो भैया 8,000 से 10,000 फिंगरलिंग प्रति हेक्टेयर आप मतलब उसमें संचयन करना है भैया।
6: एक बात और
1: से हाँ हाँ भैया बताइए बताइए।
6: ये तालाब है ज्यादा मिट्टी वाले नहीं रेत वाले है, मिट्टी ज्यादा नहीं है उसमें।
1: जी जी जी जी जी
6: हाँ तो वही आप मतलब बता दो
1: जी। तो आप मन में गोबर की खाद भी डाल सकते हो है ना?
6: अच्छा
1: हाँ, में 10,000 किलो अपन गोबर की खाद डाल सकते हो ओला सड़ा के ओकर से का हो ही ओकर जो प्राकृतिक भोजन रहते प्लवक ओकर उत्पादन हो ही और आप मन के मछली की वृद्धि बहुत अच्छा हुई भैया ओकर से।
6: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हेलो हेलो किसान वानी जी भैया कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
7: हाँ मैं मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला था।
0: जी भैया
7: राम राम जी।
0: राम राम भैया का प्रश्न है आज आपके हमारे विशेषज्ञ लिए?
7: हाँ तो ये बताते
0: हाँ?
7: नर्सरी तालाब में स्पान बर कौन से पूरक आहार देना चाहिए?
0: ये प्रश्न के उत्तर दिए हमारे विशेषज्ञ।
1: जी नमस्कार भैया।
7: हाँ नमस्कार।
1: हाँ आप मन अगर नर्सरी तालाब में मछली के बीज उत्पादन करत हो ओमे भैया पूरक आहार बर एक तो होते सरसों की खली और चावल की भूसी, ये दोनों लेना भैया एक एक अनुपात में। मतलब अगर 50 किलो सरसों की खली है तो 50 किलो अपन चावल की भूसी ला मिला के अपन दे सकते हो, और सरसों की खली अगर नहीं है तो ओकर साथ मूंगफली की खली और चावल की भूसी वो भी 1-1% एला दे सकते हो। दिन में 2 बार आप मतलब देना है, एक बार सुबह को और एक बार शाम को, और शुरू में ओकर मात्रा ले थोड़ा कम करना है 1% शरीर के भार के हिसाब से। ओकर बाद जैसे भी थोड़ा 10 दिन हो जाए ओकर बाद आप मन थोड़ा मात्रा ला बढ़ा सकते हो भैया।
7: अच्छा जानकारी दे बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया। हेलो किसान वाणी।
8: नमस्ते दीदी।
0: राम राम भैया कौन बोला था, कहाँ बोला था?
8: भाटा पारा जतरंगी ले हीरू राम साहू बोला दीदी।
0: ता आपके का प्रश्न है?
8: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार भैया। राम राम कैसे हो? बढ़िया।
8: हाँ सब बढ़िया बहन जी। दीदी वो मछली मन अब बीमारी हो दीदी हमारे तालाब मछली है मन मा।
1: हाँ
8: मछली मन अबड़ दीदी का कारण से दीदी?
1: अच्छा कब का है मछली आप कब डाले थे, कौन सा मछली का बीज डाले थे?
8: अब उसी समय डाले थे दीदी गर्मी समय डाले थे डालबो आने से फिर बीज
1: हूँ
8: तो जुन्ना मछली मन बार उखड़ उखड़ के मरा जा दीदी काक सती है तालाब साफ कर पड़ी का इसे थोड़ा जान के लेने रे सीधी छुप के धारे
1: पर। जी जी जी, आपका ग्रामीण तालाब है कि आपका प्राइवेट तालाब है?
8: नहीं, ग्रामीण है दीदी, पंचायत द्वारा है।
1: अच्छा, पंचायत डाला है। और कितने साल हो गए उसको साफ किया हुआ?
8: 2-3 साल हो गया दीदी।
1: 2-3 साल हो गया साफ किया हुआ। देखिए, इसमें दो तरीके का चीज होता है। एक तो आपका तालाब जो है ज्यादा मतलब सालों तक साफ नहीं हुआ रहता ना, तो नीचे मिट्टी में गाद बन जाता है, बहुत ही ज्यादा तो गाद बन जाता है ना, तो उससे हानिकारक बैक्टीरिया रहते हैं, उसकी वजह से मछली के मरने की संभावना बढ़ती है। दूसरा जो है, जब आप मछली का बीज लेके आते हैं परिवहन करके, है ना, दूर से लेके आते होंगे मछली का बीज, है ना, तो जब मछली का बीज लेके आते हो तो उसमें क्या होता है कि कुछ मछलियों को चोट पहुंच जाती है, तो ऐसे एक दूसरे मछली को चोट पहुंच जाती है, उसके बाद हम उस मछली के बीज को हम तालाब में डालते हैं ना, तो ये बीमारी एक दो मछली से हो जाती है। तो इसके लिए भैया अभी आप क्या करेंगे, जब आप इस मछली को पूरा निकाल लेंगे, और अभी क्या है मछली का बीज तो बन ही रहा है ना हैचरी में, अभी आप डालेंगे जुलाई से अगस्त के बीच में आप मछली का बीज डालेंगे, नया मछली का बीज, तो उस समय आप क्या, हाँ उस समय आप क्या करेंगे, जब परिवहन करके मछली का बीज लेके आएंगे ना, तो आप K-MNO4 से पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उसे आप ट्रीटमेंट या बाथ ट्रीटमेंट करके जब आप मछली के बीज को डालेंगे तो आपके मछली के बीज में बीमारी कम मात्रा या ना के बराबर होगी भैया, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। जी जी भैया,
8: थैंक यू दीदी।
0: और कुछ प्रश्न करना चाहो भैया?
8: अब हो तो गए बहन जी, जिसे 4-6 महीने मछली लगवो ये सब साफ करवो, कहा था 4-5 महीने बीज बता हमला।
1: हाँ, तो आप 4-5 महीने के लिए उसमें डालना चाहते हैं ना मछली का बीज?
8: ऐसा साफ करना है तालाब ना, ऐसा गर्मी सीजन में।
1: हाँ हाँ हाँ, गर्मी सीजन में साफ क्यों कि साफ करना है आपको, अभी तो बरसात लग गया है।
8: उसके बाद करना है ना, आने वाला साल में करना है ना।
1: अच्छा, आने वाला साल में करना है भैया, तो अभी आप कतला रोहू मृगल ही उसमें स्टॉक कीजिएगा, है ना, उसका 8,000 से 10,000 फिंगरलिंग प्रति हेक्टेयर की दर से आपको स्टॉक करना है। उसके बाद आप जब गर्मी में हार्वेस्ट करेंगे ना, उसके बाद आप उसको साफ करवाइएगा, तो उससे बहुत कम आपकी तालाब में बीमारी आएगी भैया।
8: हाँ
0: जी भैया, धन्यवाद। हेलो किसानवाणी।
9: हाँ, मैं बोला अपने मैडम, कनेरी से सनत कुमार यादव।
0: कहाँ पर थे भैया? यह
9: ये अपन बालोद जिला के गुरूर ब्लॉक।
0: तो का प्रश्न है आज आपके हमारे विशेषज्ञ ले?
9: मैं जानना चाहते हैं मैडम, जो मछली के छोटे बच्चे होते जो अंडा से निकलते जिला इस पान बताते हैं।
0: हाँ हाँ,
9: जो नर्सरी बनाया रहा था ना,
0: हाँ,
9: वहाँ कौन समय में वो छोड़ना है और खर्च तरीका का है?
0: हाँ, ये प्रश्न के उत्तर दिए हमारे विशेषज्ञ है।
1: राम राम भैया। हाँ, बहुत बढ़िया ये आप मन के ये प्रश्न हरे, काबर की अगर ये जो प्रश्न के उत्तर लगा नहीं जाने ना बहुत जन किसान मना, तो ओखर से क्या होते हैं मछली के मरे की जो संभावना है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते भैया। तो आप मन के प्रश्न बहुत अच्छा है। आप मल्ला जब नर्सरी तालाब में स्पॉन के संचय करना है, ओखर से पहली जब आप मनहा हैचरी लेके आओ मछली के बीज, है ना, तो जब मछली के बीज लेके आओ ना पॉलीथिन में भर के, उसमें गैस पैकिंग रहते हैं ऑक्सीजन के, तो ओला डालने से पहली क्या करना है, तालाब के ऊपर पॉलीथीन ला झिल्ली ला जो मछली के बीच है ओला इसने रख देना है भैया, है ना, ओला कथे क्लिमेटाइजेशन कथे ओला, है ना, तो ओखर से क्या होते कि हम दूर से लेके आते हैं मछली के बीज ला, है ना, वहाँ के तापमान और ऑक्सीजन की मात्रा अलग रहते, और हमारे जो तालाब है उसमें तापमान और ऑक्सीजन की मात्रा अलग रहते, तो धीरे से हम अल्लाह का करना है, पहली तालाब के ऊपर झिल्ली इसने रख देना है 5-1 मिनट तक, है ना भैया, ओखर बाद थोड़ा सा खोलना है ओकर जब मन बांधे रहते ना झिल्ली ओला, और धीरे धीरे करके ओला मछली के बीज ला उसमें डालना है, एकर से क्या होते मछली के मरने की संभावना बहुत कम हो जाते, काबर की दूर से जब हम लेके आता ना तो ओलाओ में थिराए और एक मौका मिल जाते भैया, तो मछली ला ज्यादा शौक नहीं लगे और बढ़िया सोमे वहाँ रह सकते भैया। जी,
9: एक तो जानना
1: है। हाँ हाँ भैया बताइए।

0: মানে তালাব তৈরি করছে না, তো মহুয়া খালি ডালে যাচ্ছে, তো এখানে কাবার ডালে যাচ্ছে।
1: আচ্ছা, মহুয়া কে খালি এ বীজ বনো হে, হ্যাঁ না? যাব বড়ে তালাব মে মহুয়া কে খালি ডারতো ওকে মে বতাতো। মহুয়া কে খালি দো প্রকার কে কাম করতে ভাইয়া, এক তো ও কীড়া আর যে অবাঞ্ছিত মছলি রথে না ওলা মারে কাম করতে, হ্যাঁ না? ওকর বাদ পহলি তো এ কাম করতে মহুয়া কে খালি ডালথন তো ঠিক হে। দূসরা কা হোথে, জব মহুয়া কে খালি কে যে জহর ওয়ালা প্রভাব খতম হো যেতে না দো ডেড় সে দো মহিনা বাদ, ওকর বাদ ও না খাত কে কাম করতে। ওকর বাদ না এক তো শত্রু কীটলা আর মছলি অবাঞ্ছিত মছলি লা মারে কাম করতে, আর দূসরা জব জাদা দিন হো যেতে না তো এ খাত কে কাম করতে। খাত কে কাম করতে মতলব মিট্টি কে উর্বরা শক্তি বড়িয়া বড়াতে, যেমে বড়িয়া ব্যাকটেরিয়া বিকশিত হোথে, প্লাবক বিকশিত হোথে, আর ও না মছলি কে প্রাকৃতিক ভোজন বনতে ভাইয়া। তো এ দো তরিকে সে কাম করতে মহুয়া কে খালি হ্যাঁ। ठीक है भैया, धन्यवाद।
2: फोन तो हमर करा बहुत ऐसे किसान भाई मन के समस्या और प्रश्न बहुत कन ऐसे, फिर यहू आपसे हम जानना चाहबो कि जल के गुणवत्ता का होना चाहिए मछली पालन बर या मछली स्पॉन नर्सरी तालाब बर, पानी के गुणवत्ता का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम ये, काबर की मछली जो है वो पानी में ही रहते और सबसे ओकर जो अच्छा चीज है वो पानी ही है। जल की गुणवत्ता बढ़िया अच्छा रही ओकर से मछली के स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ते, मछली स्वस्थ रही और जितना अच्छा मछली स्वस्थ रही उतना अच्छा उत्पादन मिली, और जितना अच्छा उत्पादन मिली उतना हमन किसान भाई मल्ला पैसा मिली। तो जल की गुणवत्ता पर हमन ला कुछ ध्यान में रखना हो, जैसे कि तापमान, तापमान हाँ 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए मछली पालन पर। पीएच भी हमन देखते हैं, पीएच जो है वो 7 से 8.5 तक ओकर पीएच होना चाहिए। घुलित ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन जो मछली है पानी के अंदर में जो घुले हुए ऑक्सीजन ला ओकर से वो सांस लेते, ओकर मात्रा होना चाहिए 5 mg प्रति लीटर होना चाहिए। साथ ही पारदर्शिता, पानी की जो पारदर्शिता है वो 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ओकर साथ महत्वपूर्ण चीज है अमोनिया, अमोनिया जो है वो 0.02 mg पर लीटर होना चाहिए। तो ये बात ला ध्यान में किसान भाई मन रखे कि ये तब आंकड़ा ही होना चाहिए, अगर एक से कम या ज्यादा होते तो मछली थोड़ा समस्या हो जाते, ओकर हिसाब से ला मेंटेन करे लगते। और साथ ही ओमे प्रबंधन भी हमन ध्यान में देते हैं, आवश्यकता अनुसार ताजा पानी, अगर पानी ज्यादा मटमैला हो गया है तो ताजा पानी भी उसमें डाल सकते हैं। और ऑक्सीजन अगर कम हो जाते बरसात के समय में या बादल छाए रहते ओकर समय में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाते, तो ओकर बर या तो मोटर पंप है वहां से पानी डाल दी तो पानी हिल ही तो ऑक्सीजन बढ़ी, या फिर एरेटर्स भी मिलते, एरेटर्स भी अगर तालाब में अपन लगा थो तो ओकर से भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छा बढ़ते। अब अगर हमारे पास एरेटर्स भी नहीं है और मोटर पंप भी नहीं है, पानी अगर तैरते ओमे भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़िया सा बढ़ जाते। और अत्यधिक जो खाद की मात्रा है और भोजन की मात्रा है बोला थोड़ा बरसात के समय में और ठंड के समय में थोड़ा सा कम करना चाहिए, एकर से मछली खाई नहीं ना तो पानी खराब हो सकते,
2: गंदा हो जाए,
1: गंदा हो जाए। तो ये मतलब थोड़ा सा बात ला ध्यान में अगर रखी किसान भाई मन तो निश्चित ही मछली के उत्पादन ही बहुत अच्छा हो।
2: तो मैडम ये तो बहुत अच्छा जानकारी आप मन हमारे किसान भाई मन ला दे हो, और हम बेरा बेरा में इसने ही जानकारी देवत रिथन, मौसम अनुसार जानकारी देवत रिथन कि भाई अगर खरीफ के फसल लेवत है, धान लेवत है या खरीफ में कोई दूसरा फसल लेवत है तो एक साथ में दिगर फसल की भी उत्पादन हम कर सकते हैं, माने दिगर फसल में हम मछली पालन और यही ढंग के अलग अलग हम फसल के बारे में बताते थे, ये मछली पालन भी एक फसल ही हरे। तो यही विषय में आज आप मन हमारे बहुत जन किसान भाई मन के प्रश्न के उत्तर दे और बहुत विस्तार ले जानकारी दे, ये खातिर बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

संगवारी हो किसानवाड़ी क्रम हेलो किसानवाड़ी में सुघर हमर समस्या के हमला समाधान मिलत रही से हमर विषय रही से नर्सरी तालाब में मत्स्य बीज उत्पादन और प्रबंधन। हमर विशेषज्ञ रहीन है मनीषा खापड़े, विषय वस्तु विशेषज्ञ मत्स्यिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी ले। संचालन पूजा दीदी करत रहीन है, प्रस्तुत करता रहीन शशि प्रकाश पांडे।

0: है भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
1: औ लक्ष्मीकांत, अब बेरा है कृषक प्रश्न मंच के। हमर संगवारी मला अगोरा होते आज के प्रश्न के, त क्रम कृषक प्रश्न मंच में आज के प्रश्न है, बीज उत्पादन खातिर कोन प्रकार के तालाब सही माने जाते, ओकर मानक क्षेत्रफल कतका होते। प्रश्न एक गांव फिर दोहरा देता हूँ, बीज उत्पादन खातिर कोन प्रकार के तालाब सही माने जाते, ओकर मानक क्षेत्रफल कतका होते। और एकर सही जवाब हमर संगवारी मन हमर मेल आई डी में भेज सकते हैं, मेल आई डी तो जानते छे, फिर एक गाँव वो बता देता हूँ, राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। और ये तो रही से हमर मेल आई डी। अब बेरा है पांचों हफ्ते के प्रश्न होकर सही उत्तर के। तब पांचों हफ्ते के प्रश्न रही से, दूषित पानी पिए ले पशुधन ला कौन से बीमारी होते, एकर सही उत्तर है लेप्टो स्पायरोसिस नाम के बीमारी होते। और सही जवाब भेजे है हमारे संगवारी मन के नाम बता दे लक्ष्मीकांत।
3: सही जवाब भेजे हैं संगवारी मन बिलाईगढ़ ले रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन, कोका भिलाई ले हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंघेल, कांकेर संबलपुर ले हैं फागुराम यादव, ज्योतिव ओजस्वी यादव, तेंदू भाठा मगरलोड जिला धमतरी ले हैं उमेन कुमार निषाद, महेश्वरी देविका पोषण नूतन, सुरेंद्र यशस्वी भास्कर और किशन निषाद, गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र और राकेश साहू, मदनपुर कवर्धा ले हैं संगवारी मन श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, बठेना पाटन जिला दुर्ग ले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, मुरली वर्मा, अजीत और अमित वर्मा, लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, पथरिया भरेवा ले हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचिनी मसिया, खुमेंद्र और तुषारणी मसिया, भान बेड़ा मुंगवाल ले हैं भारत राम पडोटी, जयंती, हेमंत, उमंग, मोक्ष पडोटी, डोंगरगांव ले हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। संगवारी हो, आप मन चिट्ठी भेजाओ, आप मन जोन प्रश्न के सही जवाब भेजे हो, एकर खातिर आप मन लगाड़ा गाला बधाई।
1: आओ श्रोता संगी हो, एक ठन सूचना है, सूचना क्रम हेलो चौपाल खातिर है कि शुक्रवार माने 17 जुलाई 2026 के प्रसारित होने वाला हेलो चौपाल में विषय हो ही खरीफ में दलहनी फसलों की खेती और फसल चक्र परिवर्तन। और आप मन अपन समस्या और जिज्ञासा के समाधान बर हमर स्टूडियो में उपस्थित हो ही विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर, विभागाध्यक्ष शस्य विज्ञान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। और संगी हो, आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए बर हमला फोन कर सकत हो। हमर पहली फोन नंबर है 4003482, 4003483 और तीसरा फोन नंबर है 4003484 और रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग शुक्रवार को ही भिन्या बेरा माने 17 जुलाई के भिन्या बेरा 11:30 ले 12 बजे तक के करे जाही। और कार्यक्रम के प्रसारण शुक्रवार के ही संझा बेरा 7:30 में करे जाही। त हमला आपन के फोन कॉल के अगोरा रही, सूचना ई मेल समाप्त हुआ थे।
3: दीदी देख, हम सुघर गोड बात भी करे हन और हमर संगवारी मन के समस्या के सुघर समाधान घलो मिल गए।
1: बिल्कुल।
3: और संगवारी मन ला आज के प्रश्न भी बता देहिन, सूचना भी बता देहिन। अब गीत संगीत बिना हमर जोन कार्यक्रम अधूरा लगे लगते है ना, तो सुघर एक गीत ले सुन लेथन जिनला गावत है लक्ष्मण मसूरी हाउ संगवारी मन हा।

0: लक्ष्मण मस्तुरिया अउ संगवारी मन ले सुघ्घर गीत ला सुनत रहिन। ए रहिस किसानवाणी प्रायोजक रहिन कृषि अउ किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अउ एकरे संग होगे जाए के बेरा, त जाए के पहिली बता देथन काली के कार्यक्रम। काली संझा गोट बात संग क्रम आज की सलाह में घर को खूबसूरत बनाए लैंडस्केपिंग, ये विषय में जानकारी सुनू हमर विशेषज्ञ डॉक्टर तोरण लाल साहू जी ले। आप मन सहायक प्राध्यापक हो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा पाटन दुर्ग ले। और संग में कृषक प्रश्न मंच और गीत संगीत तो होबे करी। तदेव विदा और स्वीकार पूजा चंद्रवंशी
0: और लक्ष्मीकांत के
1: राम राम।

अभी आप किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं चित्रपट संगीत बनफूल। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में इस फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए

0: मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान, ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

0: पहले तुम।
1: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

आप सुन रहे हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

किशोर कुमार की आवाज़ में लीजिए, अब सुनिए बॉम्बे टू गोवा फिल्म का गीत। राजेंद्र किशन के लिखे बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत है।

आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत आप रात 9:15 पर भी सुन सकेंगे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब समय है लोक संगीत का। कलाकार हैं महतर राम साहू और साथी। सबसे पहले सुनिए अमरनाथ और साथियों के सरों में ये आंचलिक गीत।

ना सुनिए श्रोताओं, शनिवार 18 जुलाई 2026 को कार्यक्रम घर आंगन में प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी फोन इन फरमाइश कार्यक्रम जोहार बहनी के लिए श्रोताओं के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बुधवार 15 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 12:30 तक की जाएगी और इसके लिए हमारे फोन नंबर इस प्रकार हैं 400-3482, 400-3483, 400-3484। रायपुर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0771 लगाना ना भूलें। तो श्रोताओं, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें कलाकार हैं महतर राम साहू और साथी। अब सुनिए ईश्वरी राम और साथियों के स्वरों में ये आंचलिक गीत।

लोक संगीत में आज कलाकार थे मेहताराम साहू और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंगम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज रात 12:30 बजे से फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंडर 19 वर्ग में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश किया, 6 ने कांस्य पदक जीते। ताजा जारी ITTF विश्व रैंकिंग में मानव

0: मानुष शाह की भारतीय डबल्स जोड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया और जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से टोक्यो में शुरू हुआ। पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं इंग्लैंड में चल रही भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला से, जहां पहला मुकाबला आज बर्मिंगम में खेला जा रहा है श्रृंखला का और मेजबान इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 259 रन का लक्ष्य दिया है, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने तय समाचार मिलने तक 10 ओवर में 2 विकेट खो करके 56 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इंग्लैंड की पूरी टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बना करके ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने सर्वाधिक 76 रन की नाबाद पारी खेली, उनके अलावा लियम डॉसन ने 68 रन बनाए और बेन डेकेट ने महत्वपूर्ण 43 रन का योगदान दिया था सलामी बल्लेबाजी करते हुए। और भारत की तरफ से अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार ने 2-2 विकेट लिए। लंबे समय बाद वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे के हाथ एक एक सफलता लगी और इस एक सफलता के साथ ही जसप्रीत बुमराह भारत के लिए 150 विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए हैं। और गेंदबाजी के अलावा भारतीय टीम ने फील्डिंग में भी आज काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और अगर अभी की बात कर ली जाए तो भारतीय टीम ने 57 रन बना लिए हैं। 11वां ओवर का खेल जारी है। इस समय रोहित शर्मा 11 रन और विराट कोहली 5 रन बना करके पवेलियन लौट चुके हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल 29 रन और श्रेयस अय्यर 5 रन बना करके क्रीज पर डटे हुए हैं। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में और अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जहां पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज रात 12:30 से फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाना है। ये मैच टेक्सस के डलास स्टेडियम में होना है। दोनों टीमें अब तक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में मोराको को और स्पेन ने बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: आज रात से फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल का दौर शुरू हो जाएगा, जहां से हर टीम फीफा विश्व कप की ट्रॉफी से मात्र 2 कदम दूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस 2 कदम की छोटी मगर बेहद रोमांचक दूरी को कौन सी टीम सफलतापूर्वक पूरा कर पाती है। आज पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। विश्व कप की ये दोनों फेवरेट टीमों में से किसी एक का सफर आज रात समाप्त हो जाएगा, जबकि कोई एक टीम खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर लेगी। ये मैच विश्व कप के सबसे रोमांचक मुकाबले में से एक होने की उम्मीद है। दोनों टीमों के विश्व कप में अब तक के सफर पर नजर डाली जाए तो फ्रांस फीफा विश्व कप 2026 में कोई भी मुकाबला नहीं हारा है। फ्रांस ने खेले गए 6 मैच में से 5 मैच जीते हैं, जबकि एक ड्रॉ रहा है। इस दौरान फ्रांस ने कुल 16 गोल दागे हैं और केवल 2 गोल खाए हैं। टीम की मुख्य ताकत उसका आक्रामक खेल है, वहीं टीम की दूसरी मुख्य ताकत 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में टॉप पर बने हुए किलियन एम्बाप्पे हैं। उस्माने डेम्बेले भी 5 गोल कर चुके हैं और लोगों की नजर सबसे अधिक असिस्ट करने वाले माइकल ओलिसे पर भी है, जबकि दूसरी तरफ स्पेन की टीम है जिसको अपने डिफेंस पर भरपूर भरोसा है। पूरे विश्व कप के दौरान अब तक स्पेन ने मात्र 1 गोल खाया है। स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से, प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से और राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया था। डिफेंस शानदार होने के साथ साथ टीम के पास मिडफील्ड में रोड्री, पेड्री और ओल्मो जैसे खिलाड़ी हैं। अटैक लाइन पर मिकेल ओयारजाबल 4 गोल के साथ टीम में लीड कर रहे हैं। अगर दोनों टीमों के आमने सामने के मुकाबले की बात की जाए तो हाल के समय में दोनों के बीच हुए 38 मैच में 18 स्पेन के और 13 फ्रांस के नाम रहे हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे। आंकड़ों में दोनों टीमें बेहद मजबूत हैं, लेकिन फ्रांस का अटैक उसको स्पेन के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभावी बनाता नजर आता है। ऐसे में देखना होगा कि आज सेमीफाइनल मुकाबले में कौन सी टीम फाइनल की ओर अगला कदम बढ़ा पाती है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: ग्यारह जून 2026 को जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो 48 टीमें थी और 104 मुकाबले खेले जाने थे। आज 4 टीमें बची हैं, 4 मुकाबले बचे हैं जो तय करेंगे कि विश्व कप का विजेता कौन होगा, उपविजेता कौन होगा, तीसरे स्थान पर कौन होगा और कौन सी टीम चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाएगी। और अब बात करते हैं मुक्केबाजी की, जहां भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 20

0: स्त्री मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जकार्ता में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया है और सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद अंडर 19 वर्ग में भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है जबकि 6 ने कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: अंडर 19 महिला कैटेगरी में सभी 8 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। चाहत ने 60 किलोग्राम में चीनी ताइपी की पे चुनतसाई पर 5-0 की शानदार जीत हासिल की। वहीं 75 किलो वर्ग में अंशिका ने पहले राउंड में चीनी ताइपी की एन चीत सिंह के खिलाफ रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट से जीत दर्ज की। वियतनाम की अपनी प्रतिद्वंदी के मुकाबले जारी न रख पाने के कारण मेघा श्योकंद 80 किलो वर्ग में आगे बढ़ गई हैं। वहीं प्राची टोकस ने 81 किलोग्राम से अधिक के वर्ग में चीनी ताइपी की शू शियन वांग के खिलाफ पहले राउंड में आरएससी जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई। पहले से जीते हुए बॉक्सर्स के साथ भारत ने अंडर 19 महिला कैटेगरी में सभी 8 फाइनलिस्ट पक्के कर लिए। वहीं अंडर 19 पुरुष कैटेगरी में 2 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। 55 किलोग्राम वर्ग में आदित्य ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कोरिया के ह्योन मिन ली को दूसरे राउंड में आरएससी से हराया जबकि शुभम राजपूत ने 90 किलोग्राम में किर्गिस्तान के एतबेक बर्दी मुरातोव के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल की। सेमीफाइनल में हार के बाद 6 भारतीय मुक्केबाजों ने कांस्य पदक भी अपने नाम किए। इससे पहले अंडर 23 वर्ग में भारत के 8 मुक्केबाज फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं जिनमें 5 महिला और 3 पुरुष शामिल है। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो अंडर 19 और अंडर 23 दोनों वर्गों के फाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे और कुल 18 भारतीय खिलाड़ी इन दोनों वर्गों के महिला और पुरुष कैटेगरी में गोल्ड मेडल्स के लिए अपने अपने स्वर्ण पदक के लिए दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। और अब बात करते हैं टेबल टेनिस की जहां भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज जारी की गई ताज़ा ITTF विश्व रैंकिंग में भारत की 3 डबल्स जोड़ियों ने शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। भारतीय डबल्स जोड़ियों की अगुवाई मानव ठक्कर और मानुष शाह कर रहे हैं जो पुरुष डबल्स रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं और ये किसी भी भारतीय डबल्स जोड़ी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभांकर मयूर का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कोचिंग सुविधाओं में सुधार करने और खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
2: दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए विशेष रूप से हमारी सरकार ने आने के बाद जिस तरीके से काम किया, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्राइज मनी की बात हो, फैसिलिटीज की बात हो, कोचेस की बात हो, हम हर एक विषय जो उनसे छूता हुआ है उस पे काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि दिल्ली के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को वो मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जिससे कि वो ना केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके।
0: मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि कई राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी चैंपियनशिप में भाग लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इस आयोजन के लिए सभी आवश्यक मदद और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी।
2: ऊर्जा उत्साह को बताने वाला, हर वक्त अपनी मुस्कुराहट के साथ, अपनी आवाज के साथ चहकाने वाले मयूर के साथ जोड़ा गया है इस कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस इवेंट को। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ सभी साथियों को जिन्होंने इस इवेंट को सफल बनाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
0: और इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली को देश के खेलों की राजधानी के रूप में विकसित कर रही है।
3: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम खेलों के इकोसिस्टम को तैयार करें, हर स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारी करने वाले, स्टेट की तैयारी करने वाले लोगों, विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हमने साधनों की व्यवस्था की है, उनको खेलने के लिए अवसर देने के लिए उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। दिल्ली में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले लोगों को देश में सबसे ज्यादा इनाम राशि घोषित की है। हम दिल्ली को खेलों की राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
0: तो कह सकते हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़े आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है जहां 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप यानी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होगी और इसके बाद दिल्ली एक और बहुत बड़ी

0: प्रतियोगिता की मेजबानी करता हुआ नजर आएगा, जो कि होगी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन की, जो कि 17 अगस्त से शुरू होगी और 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी अरीना में नई दिल्ली के चलेगी। तो कह सकते हैं कि एकाएक एक के बाद एक कई बड़ी प्रतियोगिताओं की मेजबानी दिल्ली को मिलती हुई नजर आ रही है। और बात करते हैं कुश्ती की, जहां हरियाणा ने अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में तीनों टीम खिताब जीत लिए हैं। हरियाणा की टीम ने पुरुषों की फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिलाओं की कुश्ती में पहला स्थान हासिल किया।
1: हरियाणा ने पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी में 200 अंक के साथ खिताब जीता। इसके बाद ग्रीको रोमन में 195 अंक हासिल किए और तीन दिन तक चली इस प्रतियोगिता के आखिर में महिलाओं की कुश्ती में 183 अंक के साथ क्लीन स्वीप किया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पुरुषों की दोनों कैटेगरी में उप विजेता रही। वहीं महिलाओं की प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 160 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पुरुषों की फ्री स्टाइल में पंजाब, ग्रीको रोमन में उत्तर प्रदेश और महिलाओं की कुश्ती में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहे। पदक के अलावा इस चैंपियनशिप का चयन के नजरिए से भी काफी महत्व था। इस प्रतियोगिता के विजेताओं के आगामी अंडर 23 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जबकि 18 से 20 वर्ष की उम्र के बेहतरीन पहलवानों को आगामी सिलेक्शन ट्रायल के नतीजों के आधार पर अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेलने का अवसर मिल सकता है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कुश्ती की बात तो, हरियाणा कोई खिताब ना उठाए ये बिल्कुल असंभव सा लगता है। जिस प्रकार का बुनियादी ढांचा कुश्ती को लेकर के इस राज्य ने विकसित किया है और देश को लगातार समय समय पर एक से दिग्गज एक पहलवान दिए हैं। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। आज खेले गए मुकाबलों में पीवी सिंधु तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। सुनते हैं आज खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
2: जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता भारत के लिए आज का दिन मिला जुला साबित हुआ। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने मलेशिया की वोंग रिंग शिंग को 21-14 और 21-11 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी ने स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डून और जूली मैकफर्सन को 21-16 तथा 21-14 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं रोहन कपूर और ऋत्विका गद्दे को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी को एक सेट के बाद ही मुकाबला बीच में छोड़ना पड़ा, जबकि हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी भी पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गई। प्रतियोगिता में कल कई अहम मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें पुरुष सिंगल्स में शानदार फॉर्म में चल रहे आयुष शेट्टी को अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड के कुल्लावत विटिडसरन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, जबकि लक्ष्य सेन जापान के कोकी वितानबे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा अपने पहले मैच में चीनी ताइपे की हुआंग यू हसुन का सामना करेंगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब कार्यक्रम में चलते चलते एक बार वापस बर्मिंघम में खेले जा रहे एक दिवसीय मैच के स्कोर बोर्ड की तरफ नजर घुमा लेते हैं। भारत ने 13 ओवर खत्म होने पर 2 विकेट खोकर के 70 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 34 और श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर के क्रीज पर डटे हुए हैं और दोनों खिलाड़ियों ने 22 रन की पार्टनरशिप कर ली है। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता

0: सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
4: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
5: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष

0: अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document, reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani, and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कुछ यादें अतीत की।
2: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
1: कुछ बातें वर्तमान की।
3: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
1: कुछ सपने भविष्य के।
4: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
1: कुछ किस्से अनकहे।
5: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
1: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
6: चश्मे बद्दूर, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत अली जफर और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा और संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

आप सुन रहे थे चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, नीति मोहन की आवाज़ों में। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया था विशाल शेखर ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 हुए हैं। अब सुनिए आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा। आज इसमें हल्बी गीत के कलाकार हैं सहदेव कश्यप और साथी।

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक। महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोकसुधा। आज इसमें हल्बी गीत के कलाकार हैं सहदेव कश्यप और साथी।

अभी आप आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा सुन रहे थे। आज इस महल भी गीत के कलाकार थे सहदेव कश्यप और साथी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 10 बजे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु साहू का नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म दुल्हा दुल्हन से, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। इंदिवर के लिखे बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनना चाहा है हथेनी पारा भाटापारा से दुलारी बाई चुवाराम वर्मा, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, काजल साहू, पूर्वी साहू, शहीद नगर खमतरई रायपुर से हीरा साहू, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, खलारी भीमखोज से जीएल साहू, सरोज साहू और पिंकी, डोंडीलोहारा बालोद से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया, नेवई उतई से विक्की देवांगन, उर्वशी देवांगन, जतीन, जयंत, कुनिका देवांगन, बागबहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन, कौशल सेन, रानीगांव नगरी धमतरी से खिलेश कुमार साहू, चित्रेखा, शुभम और सेजल साहू, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना, रानू, खुशी और प्रवीण कुमार साहू, इकबाल कुरेशी, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, वैभव और विपुल कांबड़े, भलेसर महासमुद से बलराम सेन, इंदु सेन, छगन सिन्हा और देव नारायण सिन्हा, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी, देवपुरी रायपुर से ऋषभ शारवा, वेदा शारवा, मनीषा शारवा और दिनेश शारवा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

अगला गीत है फिल्म छाया से, तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं राजेंद्र किशन और संगीतकार हैं सलील चौधरी। सुनना चाहा है सहसपुर लोरमी से बुट्टी साहू, कमलाबाई साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद, बटुक साहू, अश्वनी और छोटुक साहू। दुर्रा बांधा बाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार और युवराज साहू। आमा खोड़ा रेंगाखार से देवी सी नेताम, राजेंद्र सी नेताम, दक्ष प्रिया, गीत सरगम नेताम। दुर्रा बांधा बाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन और युवराज साहू। रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू। भीम खोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानमल, अनिता मोटवानी, राजेश, रेशम, अनिल राज मोटवानी। झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका, सुशीला दादी। निजामाबाद आंध्र प्रदेश से वासुदेव सावलानी, अशोक कुमार सावलानी। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती बघेल। अडार नानघाट से राहुल गोपी वर्मा। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनय, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, अनुराग, अभिषेक, डुग्गू और कान्हा यादव। गेंदरटोला बाजार चौक राजनांदगांव से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, गजेंद्र, अंजलि और योगिता गुप्ता। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय, संध्या और शिवम कोलाम। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

जमाने को दिखाना है। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत शैलेंद्र की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत में पिरोया है आरडी बर्मन ने। सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सब। दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रवीणा यदु, रीना और लक्ष्मीना यदु, कुमरदा राजनांदगांव से ताराचंद साहू, ओम साहू, माही और धर्मेंद्र साहू, पिपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा, रोहासी पलारी से चेतन साहू, गायत्री, खुशी, रेशमा और वर्षा साहू, भूत कचार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना, मनकी लोरमी से नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार और समीर खांडे, कोल्हापुरी दुर्ग से सूरजबान साहू, कमलाबाई साहू, साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार साहू, घटारानी अंचल फुलझर से योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी यामिनी मुस्कान साहू, पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, लखनलाल देवांगन, सावित्रीबाई ईशान, तनुजा देवांगन, सौंगा मगलोर से मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, हेयांश कुमार चंदन, महादेव घाट अमलेश्वर से मिथिलेश ठाकुर, तालनी ठाकुर, सूरज और सुजला ठाकुर, भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय ठाकुर। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

गीत को संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने और सुनना चाहा है हमारे इन श्रोताओं ने। सौंगा मंगलोट से फणीश कुमार चंदन, सावित्री देवी गजेंद्र कुमार चंदन, सेहा मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी चंद्रवंशी, आकाश, प्रतिमा, पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, हसदा नंबर दो से पार्वती साहू, टिकेश्वरी और नागेश्वरी साहू, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोथेलाल वर्मा, बठेना पाटन से बालकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा, लोरमी ग्राम चचेड़ी से मोहन सिंह मरावी, सविता मरावी, रिशा मरावी, तनु सिंह मरावी, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोंडवानी, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से अखिलेश कुमार यादव, ज्योति यादव, अंकित, श्रद्धा, सौरभ यादव, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष, नंदनी जंगेल, हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू, मुंडा टोला डोंडी लोहारा से डोमेन नेताम, गंगेश्वरी नेताम, देव प्रसाद, सविता और चंचल नेताम, कुई ग्राम भंगी टोला से ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई धुर्वे, फिरतराम धुर्वे और मालती धुर्वे, देवरी भाटापारा से फणेश्वर रजक, उमेश रजक, गनुलाल रजक, पुनेश्वर रजक, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिये, मड़ौदा जाल बांधा, राजनांदगांव से पारक दास साहू और किरण साहू।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म दबंग 2 से राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत लिखा है समीर ने और इसकी धुन तैयार की है साजिद वाजिद ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। थान कमरिया बेमित्रा से कन्हैया राजपूत, दुर्गा राजपूत, युवराज राजपूत, हठोत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर, राजकुमारी पटेल, भाटापारा से दानसी रावत, दानू, पद्मनी रावत, शुभम, सौरभ रावत, परसदा खट्टी से टिकम देवांगन, दुर्गा, रितेश, कामना देवांगन, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अंबाकड़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, करमा चौक लोहारीडी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लेलेश्वरी खुशांत निशांत साहू, लोरमी ग्राम तिलकपुर से चंद्र कुमार मारावी, चंद्रेश कुमार मारावी, मालती और मयंक मारावी, बम्बूरडी बावनकेरा से डिगेश महिलांग, रमाकांत चंद्रकांत महिलांग, इच्छा महासमुद से अदालत दास वैष्णव, मानस दास वैष्णव, सतीश रीचा गायत्री वैष्णव, खमरिया बिलासपुर से साबित खान और धर्मेंद्र प्रजापति, बागमुड़ा कुमा खान से प्रज्ञा नंदेवांगन, नंदनी देवांगन, प्रकाश गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, देवरी भाटापारा से पीताम्बर साहू, सुशांत साहू, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव, देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक, हव्या रजक, युवान, तन्नु, नित्या रजक, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा, महासमुद से भीषम दास, नर्मदा हिरवानी, दीपक और लक्ष्य दास, ग्राम डोंगरिया मलाजखंड से जिला बालाघाट से मध्य प्रदेश से डॉक्टर मुन्नालाल पटले, माधुरी पटले, याचना पटले और दीपांशु पटले।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद से अब दीजिए मधु को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रूप कुमार सोनी का सितार पर बजाया राग कौनसी कानड़ा में, आरंभिक आलाप के बाद विलंबित और मध्यलयगत, जो कि 3 ताल में निबद्ध है। तबले पर संगतकार हैं मुकुंद भाले।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप रूप कुमार सोनी का सितार पर बजाया राग कौन सी कान्हड़ा सुन रहे थे। तबले पर संगीतकार थे मुकुंद भाले। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों

0: समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और यूएनसीएलओ के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth-level officers or BLOs will now visit house-to-house in both the states till the 24th of this month, which was earlier scheduled till the 14th of July. It added that the draft electoral roll will be published on the 31st of this month. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said, "Bharat Tex is the vision of the Prime Minister." He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textiles sector. The Enforcement Directorate, ED, has arrested a private software and fintech firm chairman in connection with the alleged Mahadev online betting app linked money laundering case. The agency had recently attached assets worth over 940 crore belonging to the chairman, his family members and entities allegedly owned and controlled by him. In cricket, chasing a target of 259 runs set by England, India were 239 for 4 in 42 overs in the first of the three-match ODI series at Edgbaston, Birmingham, when reports last came in. Earlier, electing to bat first, England were all out for 258 runs in 47.5 overs. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, US tonight. And that is the end of this news bulletin.
0: Medium wave 305.81 meter, that 981 kilohertz, or frequency modulation 102.8 megahertz per. आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब समाप्त होते हैं। कल प्रातः 5:53 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ इसी मीटर और इसी फ्रिक्वेंसी पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।